आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797065575।
10: श्रोतागण प्रणाम, सुप्रभात। रोज की तरह आज भी राउर रेडियो दोस्त दीपाली हाजिर बड़ी घरेलू नुस्खा के सिलसिला लेके, कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल में। नुस्खा से राउर स्वास्थ्य होई बढ़िया और रहम रहुआ तंदुरुस्त। तो चली आज के ये घरेलू नुस्खा के सिलसिला शुरू करी हम। आप बताई कुछ उपयोगी नुस्खा। तो दोस्त लोग, आज हम बतावे जात मानी सबसे पहले सौंफ के बारे में। लोग, सौंफ के गुण ई होला कि ई आयुर्वेद में सौंफ के लघु, हृदय खातिर हितकारी, सिनग्ध, रुचिकारक, विपाक में चरपरी, स्वाद में मधुर, अग्नि के प्रदीपन करे वाला, गर्भ स्थापन करे वाला, वात रोग और ज्वर नाशक, कफ दूर करे वाला मानल गइल बा।

छह बावसीर रक्त पीत और मोटापा में भी लाभकारी होला। मुख्य रूप से सौंफ के कार्य पाचन संस्थान होला। ई मूत्र के बाहर निकाले में मदद करेला। सौंफ ग्राही और अनुलोमक होला। फेफड़ा और गुर्दा

गर्मी शांत करेला। यूनानी मतानुसार सौंफ आंत के गुदा में फसल मल के कड़ा टुकड़ा के तोड़ेला, पेट के वायु निकालेला और खूब डकार लागेला। पेट में जमा होकर दूषित और चिकन पदार्थ के नाश करेला, प्रसूता महिला के स्तन में दूध बढ़ावेला, ई दस्त बंद करेला और ई कब्ज पैदा करेला यदि भून के एकर सेवन कइल जाए तो। यदि एकरा के पीस के पेट पर लेप कइल जाए तो पेट के संचित वायु निकल जाए। ई कई दवा के साथ अनुपान के रूप में भी लिहल जाला। जौन दवा स्वादहीन होला ओकर ई स्वाद बढ़ावेला। तो आई जानल जाओ सौंफ के रोग उपचार के बारे में।

पेट के भारीपन मिटावे के होके तो सौंफ के योगर्ट करके ईगो हथेली भर रोजाना सुबह शाम ले। अतिसार दूर करे खातिर थोड़ा सा सौंफ के तवा पर भून के हल्का लाल या भूरा रंग होके तक सेकी। फिर उसमें बराबर के मात्रा में कच्चा सौंफ मिला के उसमें मिश्री भी मिलाई। सब की बारीक पीस के या बिना पीसल होकर एक दो चम्मच के मात्रा में गाय के लस्सी के साथ दिन में 3 बार सेवन करें। इसे अतिसार दूर हुई। अधिक प्यास, पेट के दर्द और ज्वर में एक सिर पानी में 5 से 10 ग्राम सौंफ योगर्ट करके डाली। जब पानी आधा बाकी रह जाए तो उसके छान के उसमें 5-10 ग्राम मिश्री मिला के 2-3 चम्मच

की और इसुत की समान होला, ई जीजुनम की शैलेश्मिक कला में चिपकल होला। रोगी के खून पिएला, एके कारण पैर में सूजन, कमजोरी, पीलापन, कभी दस्त, कभी कब्ज तथा पेट में अफरा आदि रोग के लक्षण पैदा हो जाला। सौंफ के तेल के 5 से 10 बूंद और वयस्क के 30 से 60 बूंद शक्कर के साथ देवे से उक्त सब उपद्रव में लाभ पहुँचेला। ई प्रयोग 3 से 4 दिन तक करी और बाद में 5 से 15 मिलीलीटर तेल पिला दी। ऐसा करे से हुकवर में जिंदा या मुर्दा शौच के जरिए बाहर निकल जाए। दिन के बाद कीड़ा पुनः पैदा हो जाला, यही से 45 दिन के अंतराल पर यह प्रयोग आवश्यकता पड़े पर दोहरावल भी जा सकेला। साथ ही व्यक्तित्व स्वच्छता की भी ध्यान रखी। नेत्र रोग में सौंफ कमजोर नजर, दुखद और लाल आंख और सूजन खातिर लाभकारी है। पत्ता के उबाल के ऊ जल के ठंडा कर ली और ई जल से आंख धोई, ऐसा करे से नेत्र रोग में लाभ हुई। श्रोता लोग, अबे हमनी के जननी हसन सौंफ के बारे में, तो अब चली जान ली हल जाओ शंख पुष्पी के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर में सुबह शाम 2-2 चम्मच के मात्रा में शंख पुष्पी के पंचांग के काढ़ा कुछ समय तक लगातार सेवन करे से उच्च रक्तचाप सामान्य हो जाए। पागलपन में 4 चम्मच के मात्रा में कुछ समय तक रोजाना शंख पुष्पी के पंचांग के रस के सेवन करी, तो ऐसे पागलपन की शिकायत दूर हुई।

लीटर यानी 4 चम्मच के मात्रा में नियमित रूप से सेवन करे से लाभ हुई। गला के बैठे पे शंख पुष्पी के ताजा पत्ता के रस चूसे से स्वर की गुणवत्ता में सुधार हुई और बैठल गला ठीक हो जाई। स्मरण शक्ति बढ़ावे खातिर शंख पुष्पी के पंचांग, गिलोय के सत्व, वायविडिंग, कुठ, वच, शतावरी, अपमार्ग के जड़ और हरण, सबके बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बनाई। आ 1 चम्मच के मात्रा में सुबह शाम ये चूर्ण के सेवन गाय के दूध के साथ करी। गाय के दूध के साथ करे पर स्मरण शक्ति बढ़ेला। जे लोग दिमागी काम अधिक करेला वो लोग खातिर ये चूर्ण बहुत लाभकारी होला।

कौनो भी तरल पदार्थ के सेवन न करी। सुबह शाम शंख पुष्पी के पंचांग के आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ मिला के बच्चा के दे। व्यस्क खातिर ई मात्रा दुगुना कर दी, परंतु 4 से 8 सप्ताह तक ई प्रयोग अवश्य जारी रखी। दोस्त लोग, अब घड़ी के सुई ई कर रहल बा इशारा कि अब समय हो गइल बा ई कार्यक्रम से हमरा विदा लेवे के।

0: हंसी खुशी के साथ आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के अनुमति आ रखी रहुआ आपन सेहत के ख्याल आजमाई ई सब नुस्खा के। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87894 18744।
6: ठक ठक।
7: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव महाराज अपने अंदर के अच्छाइयों को जागृत करता है, अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मा को जगाता है। अब आगे
11: क्या हुआ, कौन हो तुम लोग, क्यों मार रहे हो मुझे?
12: चौधरी साहब ने भेजा है हमें, समझा?
13: क्या रे, प्यार से समझाया चौधरी साहब ने तुझे कि जमीन उनके नाम कर दे, समझ में नहीं आया तुझे?
14: ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, ये ले, ले।
11: भाई जी आप लोग समझने की कोशिश करो, मैं गरीब, ये जमीन मैं चौधरी साहब को दे दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? ये खेत और यहाँ बनने वाले अनाज से ही तो मेरे और मेरे परिवार का पेट भरता है।
13: सुन भाई, हमें मत बता ये सब, चुपचाप इस कागज पर अंगूठा लगा वरना।
11: भाई जी ये सही नहीं है,
12: ये तो ऐसे नहीं मानने वाला, ढीट कहीं का, मारो इसे, मारो।
11: छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो भाई जी, जाने दो।
13: ये ले, ये जमीन के कागज है, इस पे लिखा है कि ये जमीन आज से तेरी नहीं चौधरी जी की है, इस पर अंगूठा लगा, अपना सामान उठा और चलता बन यहाँ से।
11: ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया, सजा मिलेगी आप सबको, तुम्हारे चौधरी जी को देखना भगवान माफ नहीं करेगा, गरीब की बद्दुआ लगेगी उन्हें, देखना तुम।
14: हाँ हाँ निकल चल।
12: ये लीजिए चौधरी साहब, काम हो गया आपका, हुकुम कीजिए और क्या कर सकते हैं आपके लिए।
15: अरे बहुत बहुत धन्यवाद, जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। ये गरीब किसान लोग इन जमीनों पर काम करते करते भूल जाते हैं कि वो किसान है, वहाँ के मालिक ना बन गए।
12: हाँ सही बात कह रहे हैं आप चौधरी जी।
15: अरे इन लोगों को इनकी जगह याद दिलाना जरूरी है, और फिर ये लातों के भूत हैं, बातों से ना मानते, इनसे प्यार से बोल लो तो सही गलत का पाठ पढ़ाने बैठ जाते हैं ये हमें तो।
14: बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी साहब आप।
12: अरे क्या हुआ चौधरी साहब, अरे आप चीख क्यों रहे हैं चौधरी साहब?
14: अरे अरे क्या हुआ,
16: अरे कुछ करो, यू क्या काट खाया मुझे?
14: अरे बाप रे, कोई कोई कीड़ा काट गया लगता है।
16: अरे हटो हटो हटो, क्या हुआ?
12: अरे कोई कीड़ा काट गया चौधरी साहब को, क्या करें?
16: अरे ये कोई कीड़ा नहीं, सांप के काटने के निशान है।
12: अरे बचा लो,
16: आप लोग ऐसे खड़े खड़े सोच क्या रहे हैं? कोई एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। अरे ये जहरीला सांप हो सकता है।
11: उनके कर्मों का फल काट खाया उन्हें।
12: अबे तू क्या कर रहा है यहाँ, चल जाए यहाँ से।
11: मैं तो चला जाऊंगा पर तुम अपने चौधरी साहब को बचाओ।
16: अरे आप लोग ये सब कर क्या रहे हैं, कोई बुलाएगा एम्बुलेंस को?
14: हाँ, आ रही है एम्बुलेंस, थोड़ा टाइम लगेगा, पास वाले गांव से आ रही है।
16: लेकिन ये जहर तो इनकी बॉडी में फैलता जाएगा, मैं कुछ करता हूँ, ये कपड़ा बांध देता हूँ, इससे खून बहना बंद हो जाएगा।
11: अरे भाई जी आप क्यों इसके पापों का फल भुगत रहे हो, इसे तो इस गरीब की बद्दुआ लगी है, बद्दुआ, इसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए।
12: अबे तू जा यहाँ से, वरना तेरी तो मैं।
16: चौधरी साहब मेरी बात सुनिए, आप सो नहीं सकते, अगर आपकी आंखें बंद हुई तो सही नहीं होगा। मैं आपसे बात करता रहूंगा, ठीक है?
15: ठीक है, मैं बात करने की हालत में तो ना हूं, पर तुम ही कोई बात बता दो मुझे, मैं सुन लूंगा।
16: ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? आप सोइए मत।
15: भाई भगवान की कहानी सुनाना, ऐसे दर्द में हूँ, भगवान को याद करूँगा तो शायद वो मुझे बचा ले।
16: मैं आपको शिव की कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले अहिल्या नाम की एक कन्या थी। ब्रह्मदेव ने उसे जब बनाया तो उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे संसार में हो रहे थे, किंतु ब्रह्मदेव ने उसका विवाह ऋषि गौतम से करवाया। लेकिन इंद्रदेव इससे संतुष्ट नहीं थे और वो चंद्रमा के पास गए।
10: आइए इंद्रदेव।
6: चंद्रमा, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है।
10: मेरी? कैसी सहायता?
6: कल सुबह ऋषि गौतम और अहल्या के आश्रम में रात ढलने से पहले ही सुबह होने का संकेत देना होगा।
10: मैं कुछ समझा नहीं, मैं क्या करूं?
6: चंद्रमा, तुम्हें केवल ऋषि गौतम को सुबह होने का संकेत देकर उन्हें जगाना होगा।
10: किंतु क्यों? क्यों उठाना है उन्हें?
6: मैं कई दिनों से ऋषि गौतम और अहल्या को देख रहा हूँ। ठीक सूरज उगने से पहले गौतम ऋषि आश्रम छोड़कर नदी में स्नान और प्रार्थना करने जाते हैं।
10: मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ इंद्रदेव, उन्हें समय से पहले उठाकर क्या मिलेगा?
6: चंद्रमा, गौतम ऋषि आश्रम छोड़ेंगे तो ही तो मैं अहल्या से मिल सकता हूँ।
10: इंद्रदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप किसी और की पत्नी से रात के एकांत में मिलना चाहते हैं?
6: हाँ चंद्रमा, मैं अहल्या से मिलना चाहता हूँ।
10: किंतु इंद्रदेव, ये तो अनुचित है, और अहल्या जैसी पवित्र स्त्री आपसे नहीं मिलेगी।
6: इसीलिए मैं ऋषि गौतम के भेष में जाऊंगा और इसीलिए मुझे सहायता चाहिए तुम्हारी।
10: ये महापाप है इंद्रदेव, ये अनुचित है, आप ऐसा नहीं कर सकते।
17: चंद्रमा, तुम ये भूल रहे हो कि तुम स्वर्ग राज से बात कर रहे हो और मैं वर्षा का देव इंद्रदेव हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें सदा के लिए बादलों के पीछे छुपा सकता हूँ और ये धरती चंद्रमा को भूल भी सकती है।
10: क्षमा इंद्रदेव, क्षमा करें, मैं वही करूँगा जो आप चाहते हैं।
18: इतनी शीघ्र सवेरा हो गया? ओम सूर्याय नमः।
10: इंद्रदेव, ऋषि गौतम नदी की ओर चले गए हैं।
6: तुमने अच्छा किया, अब मैं चलता हूं।
18: अहिल्या, अहिल्या, उठो।
19: ऋषिवर, आप इतना शीघ्र लौट आए, कुछ भूल गए थे आप?
18: नहीं अहिल्या, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ।
19: मेरे लिए?
18: हाँ, मैं तुम्हें देखने आया हूँ।
19: ये क्या कह रहे हैं, अभी तो गए थे आप।
18: हाँ, पर आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उस चांद से अधिक रोशनी है तुम्हारे चेहरे पर।
19: ये आज आपको क्या हो गया है ऋषिवर?
18: आज प्रेम हुआ है मुझे अहिल्या, इधर आओ मेरे पास, मेरी बाहों में आओ।
10: ये क्या, ये नक्षत्र अभी तक है?
18: इसका अर्थ तो ये हुआ कि अभी तक सुबह हुई नहीं है, तो वो संकेत?
10: हे ईश्वर, कहीं कोई छल तो नहीं है, मुझे मेरे आश्रम लौटना होगा।
18: कैसा लग रहा है तुम्हें?
19: आपकी भुजाओं में कितना सुख है।
18: यदि तुम चाहो तो ये सुख तुम्हें हर दिन मिल सकता है।
17: अहिल्या!
19: ऋषिवर, यदि आप वहां हैं तो ये कौन है? ये क्या हो रहा है?
6: मैं इंद्र हूँ अहिल्या, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ।
17: चुप करो,
20: तुमने एक देव होकर, वो भी स्वर्ग राज होकर, एक पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से देखा। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार इंद्रराज, तुमने घोर पाप किया है और तुम्हारा पाप ऐसा है जिसके लिए तुम्हें क्षमा कभी नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं।
6: किंतु ऋषि,
20: बस और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है इंद्रराज, और मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता। मैंने स्वयं देखा है अपनी आंखों से आपका छल इंद्रदेव, पर अब बस, अब मैं कहूंगा और आप सुनेंगे। मेरे श्राप का फल भोगेंगे अब आप। मैं ऋषि गौतम तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा पूरा शरीर सहस्त्र योनि से भर जाएगा।
19: ये क्या? नहीं, नहीं, नहीं।
20: और तुम्हारे इस छल में तुम्हारा साथ देने वाले चंद्रमा को भी इस घोर पाप का फल भोगना होगा। चंद्रमा, तुम इंद्र की सहायता करके इस गुनह के भागीदार बन गए हो। तुम कलंकित हो चुके हो इस पाप के कारण, इसलिए आज से सदा के लिए उज्ज्वलित होते हुए तुम्हारे मुख पर काले दाग लगेंगे। पूरा संसार तुम्हारे इस मुख पर काले धब्बे देखेगा, काले धब्बे। और अहिल्या, तुम अपने पति को भी नहीं पहचान पाई। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सहस्त्रों वर्षों तक ना किसी के सामने आ पाओगी और ना ही इस आश्रम से बाहर जा पाओगी, क्योंकि तुम इस आश्रम में पत्थर बन के रह जाओगी। और तुम्हें श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ सत्यवादी व्यक्ति का स्पर्श तुम्हें प्राप्त हो।
0: महादेव, मुझे बचा लीजिए। महादेव,
21: इंद्रदेव, तुमने जो किया वो एक महापाप था, इसीलिए मैं ऋषि गौतम का श्राप नहीं तोड़ सकता हूँ।
0: मैं इस हाल में कहीं नहीं जा पाऊंगा महादेव, क्षमा करें, मैं अपने कर्तव्य भी पूरे नहीं कर पाऊंगा।
21: तो ठीक है, तुम्हारे शरीर पर जो सहस्त्र योनि है वो सहस्त्र आंखें बन जाएंगी। मैं इससे अधिक सहायता नहीं कर सकता हूँ तुम्हारी।
0: धन्यवाद महादेव, धन्यवाद।
16: इसीलिए हमें भी हमेशा सच की राह पर चलना चाहिए, चाहे झूठ या धोखा आसान लगे, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सच किसी ना किसी दिन सामने आ ही जाता है, और झूठ किसी ना किसी दिन पकड़ में आ ही जाता है। सच बोलने वाले को उसकी सच्चाई के लिए हमेशा सराहा जाएगा, और झूठ बोलने वाले को उसकी सजा मिलेगी।
22: भाई नील, यो तुमने आज मुझे कैसी कहानी सुना दी। ऐसा लग रहा है जैसे आज तक मैं झूठी जिंदगी जीता रहा। मैंने सारी जिंदगी छल, कपट, धोखा, जोर जबरदस्ती के अलावा कुछ ना किया। उस गरीब किसान की जमीन छीन ली मैंने, उसकी सजा मिल रही है मुझे। मैं माफी मांगना चाहता हूँ उससे, मैं माफी मांगना चाहता हूँ।
16: अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो मांगिए माफी, और उसे उसकी जमीन भी वापस दे दीजिए। उस जमीन से ही तो वो अपना पेट भर रहा था।
11: चौधरी साहब,
23: अबे तू फिर आ गया यहाँ, चल भाग यहाँ से, बोला ना।
11: चौधरी साहब, क्या आप सच में मेरी जमीन मुझे वापस देना चाहते हैं?
22: हाँ मेरे भाई, भाई माफ कर दे मुझे, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ।
16: अरे एम्बुलेंस आ गए।
11: रुके, मैं मदद करता हूँ, मैं चलता हूँ चौधरी साहब के साथ।
16: हाँ हाँ, आप जाइए साथ, इनका इलाज करवाइए। मैं चलता हूँ, मुझे आगे जाना है।
11: अरे भाई, लेकिन आप हो कौन?
16: मेरा नाम नील है।
22: शुक्रिया भाई, जब मैं अस्पताल से वापस आ जाऊंगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा।
11: हाँ, मैं भी।
16: हाँ हाँ जरूर, पर आपको मुझसे मिलने अमरनाथ आना होगा।
22: एक बार ठीक हो जान दे, फिर दुनिया के किसी भी कोने में मिलने चलाऊंगा मैं।
16: ठीक है, हर हर महादेव।
11: हर हर महादेव।
24: पराया धन पराई नारी पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये, आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके फूके फूके रे। याद है ना बड़ू, पच्चन सावर किशोरदा का ये सुपर हिट गाना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, जिसके लिरिक्स लिखे थे अनजान साहब जी ने। ये गाना नहीं है बड़ो, फिलोसफी है, फिलोसफी। बहुत सीरियसली सोचने लायक बात है बाबा, खुद काबिल बनो, खुद कमा के खाओ और सब हासिल करो। याद रखना बड़ो, दूसरे का माल जी का जंजाल, बेईमानी का पाप से मेहनत का जाप हमेशा सरस होता है बिड़ू, क्योंकि शिव बेईमानी से दूर रखना सिखाते हैं, शिव मेहनत करना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
25: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
26: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
25: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
26: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
25: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
26: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दिशा की बैठक में विकास कार्यों का हुआ निरीक्षण, तो वहीं भविष्य की योजनाओं पर बनी रणनीति। शहर के एक निजी होटल में पुलिस ने की छापेमारी, देह व्यापार की सूचना पर की गई कार्रवाई। खुद के अपहरण का साजिश रचकर फिरौती मांगने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में 2 आरोपियों को अलग अलग जगहों से पुलिस ने पकड़ा। और सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज गोपालगंज के समाहरणालय के सभा कक्ष में दिशा की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने की। इस दौरान विद्यालय निर्माण, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य, बिजली, सिंचाई और NHI जैसी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में विधान परिषद के सदस्य राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू, विधान परिषद के सदस्य वीरेंद्र नारायण यादव, विधान सभा के सदस्य राम सेवक सिंह, विधान सभा के सदस्य मनजीत सिंह, जिला परिषद के अध्यक्ष अमित कुमार, जिलाधिकारी समीर सौरभ और उप विकास आयुक्त गौरव कुमार तथा जिला स्तरीय सभी विभागों के सदस्यगण तथा दिशा के नामित सदस्यगण भी इसमें उपस्थित हुए। इस दौरान बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गई, तो वहीं आने वाले भविष्य में गोपालगंज के विकास कार्यों को किस स्तर से और कैसे करना है, इस पर भी रणनीति बनाई गई। इसको लेकर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया
3: कि आज जिला विकास निगरानी एवं समन्वय समिति की बैठक, जिसे दिशा कहते हैं, संपन्न हुई और जो भारत सरकार की 42 योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। और इसमें मुख्य रूप से रेलवे था, नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे 27 और 531 दोनों की समीक्षा की गई। हम लोगों का डुमरिया पुल पर जो सुपर स्ट्रक्चर बनना है उसकी समीक्षा की गई। उसमें आया कि दिसंबर तक उसको पूरा कर देना है, काम शुरू होने वाला है, क्योंकि पानी के चलते काम नहीं शुरू हो पा रहा है। इसके अलावा रेलवे में समीक्षा हुई, रेलवे की समीक्षा में कुछ ट्रेनों की आवश्यकता थी, ट्रेन के ठहराव की आवश्यकता थी, कुछ RUV की आवश्यकता थी, उस पर समीक्षा की गई और रेलवे विभाग को निर्देश दिया गया। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस था, कृषि था, फिर आपका PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था, हम लोगों का सभी एयरपोर्ट भी था। लगभग 42 योजनाओं की समीक्षा हुई है और उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो काम हो चुके हैं वो ठीक है और जो काम बाकी पड़े हैं, जो कुछ काम प्रोसेस में है, जो प्रोसेस में है उसको ये निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जो प्रोसेस में नहीं है उसको सरकार से जल्द स्वीकृति ली जाए। और
4: कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
3: महत्वपूर्ण फैसलों में हम लोगों को NH का था, रेलवे का था, डुमरिया पुल का था, सभी एयरपोर्ट का था। हाँ, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है NH 27 और NH 531 का, दोनों को विशेष रूप से ये निर्देश दिया गया कि वो रोड एम्बुलेंस रखें और जहां जहां भी पॉट होल हैं उसको भरते चलें और इसकी परमानेंट व्यवस्था करें, विभाग द्वारा वो व्यवस्था कराएं। अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो समिति को बताएं, दिशा को बताएं, हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे।
4: अल्टीमेटम भी दिया गया समय सीमा की?
3: अल्टीमेटम उनको ये लास्ट वार्निंग थी, इसके पहले दो बार कहा जा चुका था, ये कहा गया कि इस बार का जो निर्देश है वो लास्ट है, इसके बाद आप नहीं करेंगे तो विभाग को हम लोगों को मजबूर होकर लिखना होगा।
4: एयरपोर्ट निर्माण चल रही
3: है? एयरपोर्ट का काम तो ग्रेजुअली क्रमशः आगे बढ़ रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा, हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो रिक्वायरमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मांगी गई थी वो रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भी प्राप्त हो गई है और स्टेट गवर्नमेंट उसको भारत सरकार को भी भेज चुकी है और वो चैलेंज मोड में इसको लिया जा रहा है। चैलेंज मोड में सरकार इसको करेगी और बिहार सरकार इसकी अनुमति दे दी है भारत सरकार को और अभी से लेकर दिसंबर के बीच में इसकी बिडिंग होनी है। बिडिंग में एयरलाइंस के पार्टिसिपेशन के बाद जो कहा गया कि चैलेंज मोड में ये काम होगा, उस चैलेंज मोड में वो काम शुरू हो जाएगा।
2: गोपालगंज शहर के जादोपुर रोड में स्थित अंकिता होटल में आज पुलिस की छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नगर थाना क्षेत्र के इस होटल में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी। इस दौरान बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन युवक युवतियों को और होटल के स्टाफ को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ संदिग्ध सामग्री बरामद होने की भी सूचना मिल रही है। सभी से पूछताछ जारी है और जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर हालांकि अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मीडिया खबरों में चल रही जानकारी के अनुसार इस छापेमारी से दूसरे होटल संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। आज जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक व्यक्ति खुद के अपहरण की साजिश रचकर अपने ही परिवार वालों से 2 लाख की फिरौती मांग रहा था। परिवार के लोगों को अपहरण की जब सूचना मिली तो परिवार के लोग चिंतित हो गए, पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस को आवेदन देकर जानकारी दी। पुलिस ने मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगाते हुए टेक्निकल जांच पड़ताल शुरू किया। जांच पड़ताल के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि आरोपी खुद के ही घर से 2 लाख रुपए वसूलने के लिए अपने खुद के ही अपहरण का स्वांग रचा रहा था। इसको लेकर आज पुलिस के तरफ से लाइन डीएसपी सुबोध कुमार ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने इस पूरे कांड को लेकर जो जानकारी दी वह आप भी सुनिए।
5: सर बताया जाए,
6: कल दिनांक 1 सितंबर 2026 को
5: जी
6: थाना को सूचना प्राप्त हुई थी, श्रीपुर थाना को, कि एक व्यक्ति जिनका नाम लाल बाबू सिंह है, उन्होंने कंप्लेन किया था कि उनके छोटे भाई छोटे लाल सिंह के अपहरण हो गए, जिसके संबंध में हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छानबीन किया, टेक्निकल टीम का सहयोग लिया। टेक्निकल टीम के सहयोग से हम लोगों को पता चला कि वह व्यक्ति घोड़े थाना अंतर्गत किसी जंगल में छुपा हुआ, वहां हम लोगों ने छापेमारी की, जहां से वह व्यक्ति जंगल में छुपा हुआ मोबाइल के साथ बरामद हुआ, जिसे लाया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ से यह पता चला कि वह व्यक्ति अपनी अपहरण का झूठा स्वांग रच रहा था और अपने परिवार से 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था, तो जिसकी जांच पुष्टि हुई और इनके आसपास के लोगों द्वारा बताया गया, तो इन पर फिर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जो भी सुसंगत धारा है इन पर लगाई जा रही है। और यही मेरा कहना है कि किसी भी तरह का झूठा कृत्रिम अपराध का स्वांग रचकर किसी भी तरह की पुलिस को धोखाधड़ी देने की कोशिश ना करें। ऐसे जो भी व्यक्ति पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
5: सर इस कुछ कारण भी स्पष्ट हो पाया कि आखिर स्वयं वो क्यों किया इस तरह का बात, कुछ पूछताछ में?
6: एक्चुअली अपने भाई से
5: जी
6: 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, तो जिसका रिकॉर्डिंग इनके भाई ने दिया भेज है कि 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है,
5: जी,
6: तो वही पैसा प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा झूठा स्वांग रच रहा है।
5: धन्यवाद।
2: विजयपुर थाना क्षेत्र से आज 2 मामले आए, जिसमें एक दुष्कर्म का मामला और एक किशोरी के साथ अश्लील फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया। इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की तरफ से

एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। इस मामले में भी पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। विधि सम्बद्ध अनुसंधान करते हुए एफएसएल की टीम के माध्यम से भी जांच की गई और पीड़िता को हॉस्पिटल में जांच के लिए भेजा गया। साथ ही नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करते हुए कांड के आरोपी सिराज अंसारी, पिता रियाजुद्दीन अंसारी, साकिन रतनपुरा थाना विजयपुर को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान और पीड़िता के परिजनों से पूछताछ में यह मामला सामने आया कि 25 अगस्त को पीड़िता का भाई कबड्डी खेलने के लिए घर से बाहर गया था। इसी दौरान पीड़िता को फोन कर उसके भाई के साथ बेरहमी से पिटाई किए जाने की बात कहकर एक स्थान पर उसे बुलाया गया। पीड़िता के बताए गए स्थान पर पहुँचने पर पूर्व से घात लगाए अभियुक्त सिराज अंसारी और उसके 3 अज्ञात सहयोगियों ने पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म की। इस आरोप के आधार पर अब मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही अन्य उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। अब उसके बयान पर पुलिस अन्य आरोपियों को भी पकड़ने के लिए छापेमारी में जुट गई है। भोरे थाना क्षेत्र के जगतौली ओपी के रामपुर गांव में 2 ट्रैक्टर आपस में ओवरटेक करने लगे। सड़क पर दोनों के बीच आगे निकलने की होड़ मच गई। दोनों ट्रैक्टर चालकों ने एक गांव के सिंगल रोड पर ट्रैक्टर को आगे निकालने के लिए ओवरटेक शुरू किया। इसी दौरान सामने से आ रही एक बाइक सवार ट्रैक्टर के चपेट में आ गए, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक स्थानीय तैया दीक्षित गांव के राम तपेश्वर तिवारी के 52 वर्षीय पुत्र संजय तिवारी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने एक ट्रैक्टर को जब्त किया है, जबकि दूसरे ट्रैक्टर पर आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर सवार होकर फरार हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और लोगों ने मृतक को आवश्यक मुआवजा और आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग शुरू की, जिसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को समझाया बुझाया और फिलहाल इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसके चालक की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर सड़क हादसों पर प्रशासन सख्त है। ब्लैक स्पॉट सुधारने का निर्देश दिया गया। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर तत्काल सुरक्षा उपाय करने और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में हीट एंड रन मामलों में भी मुआवजा भुगतान, सड़क संकेतक, लाइटिंग और यातायात व्यवस्था की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों को दुर्घटना संभावित स्थानों का स्थलवार विश्लेषण कर ठोस कार्य योजना बनाने का भी निर्देश दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्या और शिकायतें रखी। पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से सभी की फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं कुछ मामलों का ऑन द स्पॉट भी निवारण किया गया। इधर कटिया थाना की पुलिस ने आईटी एक्ट में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी महेश यादव, पिता नागेंद्र यादव, साकिन भोपतपुर थाना कटिया का निवासी है। इस पर पहले से ही मामला दर्ज था, पुलिस इसे ढूंढ रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इसे पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पर एक युवती का फोटो वीडियो वायरल करने का आरोप है और इसी मामले में अभी से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास कांड में फरार चल रहे एक अप्राथमिकी अभियुक्त सचिन सिंह को गिरफ्तार किया। यह बलुआ टोला के संतोष सिंह का पुत्र है और जादवपुर थाना क्षेत्र का ही निवासी है। मानवीय सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विधिवत आरोपी को गिरफ्तार कर आज इसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस पर हत्या के प्रयास का मामला पुलिस ने दर्ज किया था, तभी से यह फरार चल रहा था। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई, जिसमें 5 लोग जख्मी हैं। घायलों में चंद्रमा राय, कलावती देवी, रानी देवी, श्याम कुमार, कोयला देवी इत्यादि का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस आवेदन मिलने के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दिशा की बैठक में विकास कार्यों का हुआ निरीक्षण, तो वहीं भविष्य की योजनाओं पर बनी रणनीति।
शहर के एक निजी होटल में पुलिस ने की छापेमारी।

0: देह व्यापार की सूचना पर की गई कार्रवाई। खुद के अपहरण का साजिश रचकर फिरौती मांगने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में दो आरोपियों को अलग अलग जगहों से पुलिस ने पकड़ा। और सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: अब बेटा, बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: बॉलीवुड के सितारों की अनसुनी दास्तान
11: जारी रहेगी।
12: सौ साल पूरे कर चुकी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 1942 में एक ऐसा इंसान बतौर निर्देशक आया जिसके खानदान ने आने वाले सालों में बॉलीवुड के सोचने और समझने का ढंग बदल दिया। पोरबंदर गुजरात से आए नाना भाई भट्ट ने बॉलीवुड में भट्ट खानदान की नींव रखी। इस विरासत को बड़ी मेहनत से आगे बढ़ाया बेटे महेश और मुकेश भट्ट ने, और उनके बाद बेटी पूजा भट्ट और नेफ्यू इमरान हाशमी ने, और फिर आई इनके खानदान की सबसे छोटी सदस्य आलिया भट्ट, जिसने अपनी पहली ही फिल्म से ये साबित कर दिया कि वो भी भट्ट खानदान में किसी से कम नहीं। ये है मेरी कहानी में आज हम बात करेंगे।
13: हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट और ये है मेरी कहानी।
14: बचपन से ही मैं जुहू में घर है हमारा, आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन जुहू, और जमनाबाई नर्सरी स्कूल है, मैं वहाँ जूनियर KG से पढ़ती गई। उसके पहले मैं बेसेंट मॉन्टेसरी में थी फॉर नर्सरी, और बचपन से मैं जमनाबाई नर्सरी में थी। कॉलेज भी मैंने जमनाबाई नर्सरी में ही किया। 11th-12th स्टैंडर्ड मैंने इंटरनेशनल बैकलोरियट IB डिप्लोमा कोर्स, और मैनी पीपल मे थिंक के प्रॉब्ली माई चाइल्डहुड बहुत ही मेरा बचपन आई थी प्रॉब्ली बहुत पॉलिश था, या मैं एक स्पॉइल्ड ब्रैट थी और मुझे चांदी की प्लेट में खाना मिलता था। ऐसा था नहीं, आई वॉज अ वेरी नॉर्मली ब्रॉट अप चाइल्ड। पॉकेट मनी मिलता था, ज़्यादा पर्क्स नहीं मिलते थे, डेडलाइन थी मेरी, पढ़ाई करना पड़ता था, पास होना था। बट वन थिंग आई हैड कि मुझे ऑलवेज पता था कि मैं क्या बनना चाहती थी लाइफ में, तो ये टेंशन नहीं था कि मुझे मैथ्स में इतने परसेंट लाना है, साइंस में इतना ही करना है, क्योंकि आई हैड नो प्रेशर ऑफ एक्सीडिंग एज अ यू नो एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि जो प्रोफेशन में चूज करना चाहती हूँ वो एक्टिंग थी, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स थी. तो स्कूल में मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा करती थी, एनुअल डे फंक्शंस में हिस्सा लेना, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स, सिंगिंग, डांसिंग, एलोक्यूशन, रेसिटेशन, ड्रामा, स्पोर्ट्स भी, ऑल ऑफ दैट मेरे लिए स्टडी से ज्यादा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था.
12: ये है मेरी कहानी में आलिया भट्ट के साथ, बस थोड़ी ही देर में सुनिए.
14: इट वॉज ऑलवेज क्लियर इन माई हैंड कि मेरी फैमिली की सिचुएशन क्या है. माई फादर, उनकी एक पहली वाइफ थी, अब दूसरी वाइफ है, दूसरी वाइफ की बेटी मैं. इट वॉज वेरी सिंपल. और हम ऐसे, हमारी फैमिली ऐसे वेरी ओपन ऑनेस्ट और बहुत ही ब्लंट पीपल है, तो वी हैव वेरी ऑनेस्ट रिलेशनशिप्स.
12: महेश भट्ट की निजी जिंदगी किसी से छुपी हुई नहीं है और इसकी झलक टाइम टू टाइम उनकी फिल्मों में भी दिखती रही है. महेश भट्ट की दूसरी शादी सोनी राजदान से हुई. आलिया महेश और सोनी की बेटी है. आइए जानते हैं आलिया खुद अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को कैसे देखती हैं.
14: मुझे एक्चुअली अभी हमेशा पता था, बट फॉर मी वो मेरे लिए महेश भट्ट नहीं है, वो मेरे लिए यू नो मेरे फादर है. सो फॉर दैट, जब वो महेश भट्ट का टैग तब से आने लगा, जब मुझे रियलाइज हुआ कि वो बहुत बढ़िया फिल्म बनाते हैं और ही इज अ वेरी वेल नोन डायरेक्टर, तो आई थिंक वो तो जब मैं शायद 7-8 साल की थी तभी पता चल गया था. ऑब्वियसली आई वॉज वेरी प्राउड अबाउट इट, क्योंकि उनकी सारी फिल्म्स जब वो डायरेक्टर थे हैव बीन लव्ड अ लॉट, और पीपल और लोग मुझे आके कहते कि यू नो हम आपके डैड की फिल्म्स के बहुत बड़े फैन हैं. एंड ऑब्वियसली मैं थैंक यू कहती थी, पता नहीं क्यों मैंने क्या किया है, बट आई वुड से थैंक यू. बट वो प्रेशर नहीं था, पीपल मे फील के यू नो ग्रोइंग अप महेश भट्ट डॉटर के वो उनके यू नो शैडो में टू ग्रो अप एंड यू नो फील दैट प्रेशर ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फिल्मी फैमिली, वो कभी नहीं था, क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी थी. आई वॉज लिविंग इन माई ओन लिटिल बबल और वो बबल बहुत ही अच्छा था. फाइनली इट ब्रोक वन डे और वो तब टूटा जब मैं फिल्मों में आ गई.

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 9765665750।
9: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
11: कहानी दे हमेरी कहानी।
12: It was always clear in my head कि मेरी फैमिली की सिचुएशन क्या है। माई फादर, उनकी एक पहली वाइफ थी, अब दूसरी वाइफ है, दूसरी वाइफ की बेटी मैं हूँ। इट वॉज वेरी सिंपल, बहुत ही साइंस की जैसे टेक्निकल चीज था। और हम ऐसे, हमारी फैमिली ऐसे, वे वेरी ओपन, ऑनेस्ट और बहुत ही ब्लंट पीपल है। तो वी हैव वेरी ऑनेस्ट रिलेशनशिप्स। तो पूजा के साथ भी, सनी के साथ भी, राहुल जो मेरे भैया है, इवन आंटी किरण जो मेरी स्टेप मदर है, उनके साथ भी वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप। इट्स अ हेल्दी फैमिली क्योंकि माई फादर हैज ऑलवेज बिन ऑनेस्ट। उनकी सच्चाई हमेशा रही है उनकी रिलेशनशिप्स को लेकर। वो हमेशा सच्चे दिल से बात करते, एंड हिज स्टोरी ऑल्सो ही डजंट हाइड, ही इज वेरी आउट देयर विथ हिज लाइफ। तो हम शाहीन और मैं, मी एंड माई सिस्टर, वी ऑलवेज न्यू कि हमारी फैमिली की सिचुएशन क्या है, एंड देयर वाज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, क्योंकि घर घर में ही यही होता है। द डिफरेंस इज इन सम हाउसेज के हर घर में लोग इतने ऑनेस्ट नहीं होते, यू नो, दे हाइड जो भी होता है। बट इन आवर फैमिली इट्स बीन वेरी ऑनेस्ट एंड आउट देयर, वी हैव नो एम्बैरेसमेंट अबाउट इट।
13: ये है मेरी कहानी में आलिया भट्ट के साथ। ये है मेरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं।
12: हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट और ये है मेरी कहानी।
13: आइए अब जानते हैं आलिया के मजेदार बचपन, उनकी स्पीच इश्यूज और स्टार स्ट्रक होने के बारे में।
12: आई वॉज बॉर्न, मैं 8 pounds की थी जब मैं पैदा हुई थी। लोग मुझे लड़का समझते थे, मम्मी को बोलते थे what a cute boy, he's not a boy, she's a girl. तो मैं बचपन से, मैं आलू, लोग मुझे बुलाते, मैं आलू ही पैदा हुई थी और मुझे आलू का बहुत बड़ा शौक है, खाना खाने का बहुत शौक है। और आई थिंक ऑल माई लाइफ में मम्मी को कहते थे कि मुझे डाइट दो, मुझे पतला होना है। तो आई फील लाइक शी ऑलवेज न्यू कि मैं अभी एक्ट्रेस बनने वाली हूँ कभी ना कभी, तो उस टाइम पे डाइटिंग करना पड़ेगा। तो आई थिंक शी सेड खाओ बेटा, खाओ, जितना खाना है अभी खा लो, बाद में नहीं मिलने वाला।
11: कहानी, ये है मेरी कहानी।
12: बहुत तेज बोलती हूँ, आई स्पीक वेरी फास्ट, तो उसकी वजह से मैं आधे से मतलब ज्यादा शब्द खा लेती थी, और कोई ओनली माई बेस्ट फ्रेंड्स कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग। तो इसलिए मैं जब मैं रेसिटेशन कॉम्पिटिशन्स करती थी वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता था, क्योंकि आई टू स्पीक स्लोली और कोहेरेंटली, बट वो मुझे वो पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। Honest starstruck person. Obviously शाहरुख खान को देख के सलमान खान को देख anybody will get starstruck. But जब मैं बचपन में मैं एक बार remember बिपाशा बासु और जॉन एब्राहम से मिली थी जब वो जिस्म की शूटिंग कर रहे थे, और मैं ऐसे जॉन को देख रही थी स्माइलिंग है, तो बिपाशा मुझे देखी थी, ओह सो क्यूट सो क्यूट, तो वो मुझे अटेंशन बहुत अच्छा लगता था, सब ऑब्वियसली ट्राई टू बी क्यूट इन फ्रंट ऑफ पीपल ताकि वो कहे कि आप बहुत क्यूट हो। कैन वी गो आउट विद हर ऐसे, क्योंकि वो ऐसा हमारा वेस्टर्न कल्चर नहीं है, बट माई फादर इज प्रोटेक्टिव, पर वो बहुत जैसे आई सेड ही इज अ वेरी ऑनेस्ट लिबरल पर्सन, तो वो समझते हैं कि ऑब्वियसली यू नो यू आर अ यंग गर्ल, यू आर गोना हैव अ बॉयफ्रेंड, यू आर गोना हैव फ्रेंड्स कमिंग ओवर, बॉयज गर्ल्स जो भी है, एज लॉन्ग एज वी आर ओपन अबाउट इट और एज लॉन्ग एज हम कुछ हाइड ना करें, देन इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज वी आर लाइक ऑनेस्ट अबाउट इट।
13: ये है मेरी कहानी में आलिया भट्ट के साथ, बस थोड़ी ही देर में सुनिए।
12: मैंने बोला एक टाइम फ्रेंड्स को कि मेरे जिस्म में एक स्पेशल पार्ट है, ऑब्वियसली दे गॉट वेरी कंफ्यूज।
13: ये है मेरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं।
0: हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट और ये है मेरी कहानी।
13: कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। आलिया बतौर चाइल्ड एक्टर संघर्ष फिल्म में पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर दिखी थी, और शायद उनके मन में तभी ये क्लियर हो गया था कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। तो आइए जानते हैं आलिया की संघर्ष से स्टूडेंट ऑफ द ईयर तक की कहानी।
12: उस टाइम पे हम शूटिंग कर रहे थे और खाना रखा था शॉट में, एक खाने का प्लेट रखा था टेबल पे, और दादी माँ वो सपोज टू बी फीडिंग मी दैट खाना, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी शॉट के लिए क्योंकि मुझे खाना खिलाने वाली थी, तो वो खाने का वो जो एक्साइटमेंट था तो वो शॉट में खिला नहीं रही थी। मैं बहुत कंफ्यूज हो कि आप खिला क्यों नहीं रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बस शो के लिए रखा है। तो मैं बहुत अपसेट हो गई कि क्या पूरी लाइफ मुझे ये करना पड़ेगा, प्रिटेंड करना पड़ेगा, मुझे तो खाना है खाना। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली द मोटिव वाज टू ईट द फूड नॉट टू डू द शूट। आई वुड टेल फ्रेंड्स दैट मैंने फिल्म में काम किया एंड आई वुड लाई समटाइम्स। मैंने बोला एक टाइम फ्रेंड्स को बोला कि मेरे जिस्म में एक स्पेशल पार्ट है, ऑब्वियसली दे गॉट वेरी कंफ्यूज, बट हाँ। एक्चुअली हैपेंड निरंजन अयंगर जो डायलॉग राइटर थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की, ही सजेस्टेड माई नेम टू करण, क्योंकि वेन दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू गर्ल। शानू शर्मा ऑल्सो द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ यशराज कॉल माई मदरा बिकॉज शी नोज माई मम वेरी वेल। उन्होंने कहा कि करण आलिया से मिलना चाहते हैं। आई वेंट, मैं करण से मिली, उन्होंने कहा कि आप पिक्चर्स में बहुत अच्छे दिखते हो बट इट पर्सन यू इवन मोर चार्मिंग, तो मैं आपसे ऑडिशन करवाऊंगा, यू डू एन ऑडिशन एंड वी विल सी। तो मैंने ऑडिशन किया, टॉप 10 की लिस्ट में मैं शॉर्टलिस्ट हो गई, और आफ्टर दैट करण रियली लाइक माय ऑडिशन, और उन्होंने कहा कि फोटो शूट कर लेते हैं टू सी हाउ आई लुक विद द बॉयज, क्योंकि द बॉयज वर ऑलरेडी ऑन बोर्ड। दैट्स हाउ इट हैपेंड।
13: ये है मेरी कहानी में आलिया भट्ट के साथ, बस थोड़ी ही देर में सुनिए।
12: माय ग्रेट ग्रैंडफादर वो हिटलर के अगेंस्ट एक अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर चलवा रहे थे। जब हिटलर को पता चला, ऑब्वियसली वो खुश नहीं थे क्योंकि अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर अगेंस्ट हिटलर, तो उन्होंने उन्हें एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला फॉर 2 years।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: आप सुन रहे हैं
9: ये है मेरी कहानी,
8: ये है मेरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं।
10: हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट और ये है मेरी कहानी।
8: बहुत कम लोग जानते होंगे कि आलिया का जर्मनी से बड़ा गहरा रिश्ता है। आइए जानते हैं उनके खानदान के जर्मन कनेक्शन और फेमिनिस्ट एटीट्यूड के बारे में।
11: माय ग्रैंडमदर एक्चुअली माय नानी व्हिच इज माय मॉम्स मॉम, शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बर्लिन एंड शी हैड टू लीव बर्लिन बिकॉज़ उनके जो पिता थे, माय ग्रेट ग्रैंडफादर, वो हिटलर के अगेंस्ट एक अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर चलवा रहे थे। सो जब हिटलर को पता चला, ऑब्वियसली वो खुश नहीं थे क्योंकि था अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर अगेंस्ट हिटलर, तो उन्होंने उन्हें एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला फॉर 2 ईयर्स। ही टॉर्चर्ड माई ग्रेट ग्रैंडफादर फॉर 2 ईयर्स और फिर क्योंकि वो बट बिकॉज माई ग्रैंडफादर वॉज जर्मन, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, यू नो हिज ऑब्वियसली हिज फाइट वाज अगेंस्ट द ज्यूज, तो उन्होंने उनको वहां से निकाल दिया, बर्लिन से निकाल दिया। सो दिस टाइम व्हेन आई वेंट टू बर्लिन, जब मैं बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए गई थी, माय ग्रैंडमदर वाज सो एक्साइटेड। जब मैं वहां गई और जैसे मैंने लैंड किया, आई कॉल्ड हर अप एंड शी वाज लाइक हैड टीयर्स इन हर आईज क्योंकि आई एम गोइंग बैक टू हर प्लेस व्हेयर शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप। और मैंने वहां बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में कहा भी ये कहानी कि मेरी कनेक्शन बर्लिन से बहुत स्ट्रांग है, एंड ऑल ऑफ देम वर लाइक वो, क्योंकि आई स्पोक अबाउट हिटलर एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स अ वेरी टची टॉपिक।
9: कहानी ये है मेरी कहानी।
11: हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज मी माई मदर माई सिस्टर एंड माई स्टेप सिस्टर पूजा हमारे ओपिनियंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही वैल्यूबल है हमारी यू नो सो वी फील लाइक सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी का जो डिफरेंस होता है ना मेन और वुमेन के बीच में वी फील वेरी स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट दैट सो वे ऑलमोस्ट लाइक पूजा तो ऑफकोर्स फुल फेमिनिस्ट है आई एम ऑल्सो अ पार्ट फेमिनिस्ट यू नो बिकॉज आई फील लाइक आई बिलीव इन द पावर ऑफ द वुमेन और मुझे एक क्या बोलते हैं घिन आती है जब यू नो मेन से दैट बिकॉज यू आर अ वुमन यू कैन डू दैट सो आई रियली स्टैंड अप अगेंस्ट दैट
9: बॉलीवुड के सितारों की अनसुनी दास्तान
12: जारी रहेगी
13: कहानी
8: ये है मेरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं
10: हाय मैं हूँ आलिया भट्ट और ये है मेरी कहानी
8: बॉलीवुड में स्टार बनना कई लोगों के लिए एक ड्रीम है ऐसे में शायद ही कोई यकीन करेगा कि स्टार्स खुद भी डे ड्रीम करते हैं बाकियों का तो पता नहीं पर आलिया बेशक डे ड्रीम करती हैं उनकी कई ख्वाहिशें हैं जो वो पूरा करना चाहती हैं तो जाते जाते आइए जानते हैं आलिया के सपनों और एनिमल लव के बारे में
11: क्लास में ऑलवेज मैं फ्लाइट लेती हूँ थोड़ा आई एम सिटिंग विद यू राइट नाउ बट मेरा दिमाग कहीं और है तो 5 मिनट का फ्लाइट लेती हूँ फिर वापस आती हूँ डे ड्रीमर तो ऑब्वियसली आई ऑनेस्टली कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आई हैव टू मेनी ड्रीम्स क्योंकि आई हैव वेरी पैशनेट अबाउट बीइंग द मोस्ट लव एक्टर इन द कंट्री मेरा ड्रीम है शाहरुख सलमान आमिर का वो मुकाम तक पहुंचना एंड दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजिशन टू रीच और मेरा एक अल्टीरियर ड्रीम भी है कि मुझे सिंगर भी बनना है तो आई वॉन्ट सिंग आई वॉन्ट कट माई ओन एल्बम आई वॉन्ट पीपल टू हियर माई वॉइस मुझे लंदन में घर खरीदना है मुझे यहाँ घर खरीदना है मुझे यहाँ करना है वो करना है आई हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स आई हैव टू सी विच मेक्स मोस्ट सेंस इवेंचुअली बट डेफिनेटली एज आई सेड आई एम अ बिग ड्रीम adopted a lot of pets and animals and of course in buildings mein hamare jo bhi dogs hai we put 4-5 dogs in the buildings we feed them every day unka jo bhi problem hota hai we take them to the vet you know make sure abhi haali mein you know one of our dogs has infected her ear very badly and we were just talking about how we're supposed to take them because me and my sister and my mother are very passionate animal lovers my sister is the most sabse zyada wo to I think pichle janam mein I think wo shayad billi thi because wo bahut hi passionate animals ko lekar so I think probably I've also always been like that So anything to do with animals and cruelty towards animals, मैं बहुत sensitive हो जाती हूँ।
8: तो सुनते रहिए, ये है मेरी कहानी।
14: Hey baby,
15: control.
14: Oh, Raji.
15: Wait a minute.
14: Hey Raji.
16: Oh. सलाम ले जाता हुआ, उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: दौरान मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: जागिए श्रीमती जी, आंखें खोलिए।
3: क्या चाहिए?
2: अरे भाई देर हो गई।
3: तो मैं क्या करूं?
2: कॉफी, कॉफी चाहिए।
3: कॉफी, कॉफी और मैं।

0: चार पांच छह
1: सात आठ नौ
0: दस ग्यारह

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आए और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाए और बनाए अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 47 बड़े पुलों और 55 राज्य उच्च पथों पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, भागलपुर और मुंगेर समेत 15 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में। और शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 38 शिक्षकों का हुआ चयन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 47 बड़े पुलों और 55 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि टोल के दायरे में आई सड़कों और पुलों से गुजरने वाले वाहनों की संख्या जानने के लिए यातायात सर्वे होगा। सर्वे के आधार पर प्रत्येक सड़क और पुल के लिए टोल प्लाजा की जगह तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि टोल वसूली में फास्टैग की सुविधा भी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों तक विस्तारित करने का फैसला किया है। श्री चौधरी ने बताया कि योजना के तहत पहले की तरह 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
2: बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों वित्तीय वर्ष 26-27 से 30-31 तक विस्तारित करने तथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया एवं व्यवस्था को पूर्ववत लागू रखे जाने की स्वीकृति दी गयी।
0: अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2030-31 के लिए विस्तारित कर दी है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती और अमर शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के माध्यम से राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने पटना में पत्रकारों से कहा कि इस योजना की अवधि विस्तार से शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों में तेजी आएगी तथा शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
3: अगले 5 वर्षों में जो बिहार में 264 नगर निकाय हैं, उनमें लगभग 9,169 करोड़ की राशि की स्वीकृति आज मिली। अब इस राशि को जो अर्बन बॉडीज हमारी बेटर परफॉर्म करेंगी या अपने रिसोर्सेज को भी मोबिलाइज कर सकेंगी, वो अधिक राशि के लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब बिहार में अगर हम आने वाले समय में अगर हम अपने शहरीकरण का या जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके एरिया को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसमें 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति के आधार पर एक तरह से इंसेंटिव जो प्रीमियम है अर्बनाइजेशन का वो हम लोग को प्राप्त हो सकेगा।
0: प्रदेश के नगर निकायों को 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत केंद्र सरकार से 9,169 करोड़ रुपए की राशि मिली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। इस राशि से राज्य के नगर निकायों में बुनियादी शहरी सुविधाओं और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। श्री चौधरी ने बताया कि पटना नगर निगम को 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने इस राशि के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए 38 शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूची में विभिन्न जिलों के प्राथमिक, मध्य, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक शामिल हैं। इन सभी को 5 सितंबर को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्मानित किया जाएगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 480 किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके स्थापना में 24 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने पटना में कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को उनके क्षेत्र में ही ड्रोन आधारित कृषि सुविधाएं सुलभ कराई जाएंगी। श्री सिन्हा ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग से बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र NCL अब हर साल बनवाने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि पुराने प्रमाण पत्र के साथ केवल एक स्वयं का शपथ पत्र लगाने पर ही उसे आगे भी पूरी तरह वैध माना जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि NCL जारी करने के लिए अलग से जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र मांगने की अनिवार्यता नहीं है। अभ्यर्थी सीधे NCL प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, भागलपुर और मुंगेर समेत 15 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा, सोन, पुनपुन, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और घाघरा नदी खतरे के निशान से कई स्थानों पर ऊपर बह रही है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पटना जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान से 127 सेंटीमीटर, दीघा घाट पर 61 सेंटीमीटर, जबकि पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर में लाल निशान से 2 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है।
1: जिले में गंगा नदी के रौद्र रूप से विभिन्न स्थानों पर कटाव और जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। नदी का जल स्तर पिछले 12 घंटों में 10 सेंटीमीटर तक बढ़ा है। इसके कारण राघोपुर दियारा क्षेत्र के कई नए भागों में पानी घुस जाने से परेशानी बढ़ गई है। इस्माइलपुर बिंद टोली में कई घर कटाव के कारण नदी में समा चुके हैं। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम राहत और बचाव के कार्य में लगी हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से कुमार।
0: पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जिले के कई भागों में कटाव से काफी नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। आज सुबह 7 बजे 1,52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा, मंगलपुर, चमुखा और जरलपुर में तेज कटाव के कारण सैकड़ों एकड़ में फैले खेत नदी में समा चुके हैं। वहीं बगहा के मंगलपुर में भी कटाव से काफी नुकसान हुआ है। जिला अधिकारी तरनजोत सिंह ने बताया कि हालात पर नजर रखी जा रही है और लोगों को सावधान किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार।
0: खगड़िया, समस्तीपुर और कटिहार जिले के तटवर्ती गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वैशाली जिले के 4 प्रखंडों के 16 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। भोजपुर जिले के उत्तर प्रदेश सीमा से सटे खासपुर गांव में गंगा नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। इधर हमारे रोहतास संवाददाता ने बताया है कि बाणसागर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कैमूर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिले से होकर गुजरने वाली दुर्गावती और कर्मनासा समेत पहाड़ी नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी जा रही है। जल संसाधन विभाग ने सभी तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है और बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत और बचाव कार्य भी चलाया जा रहा है। झारखंड के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। औरंगाबाद के ओबरा में सबसे अधिक 135.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज अररिया, किशनगंज, कैमूर, गया, रोहतास और सीवान जिले में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर आंधी और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है।
3: 3 सितंबर को राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, भभुआ, गया, किशनगंज, रोहतास एवं सिवान जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में अब भी जुटे हैं। भोटेकाशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी इस आपदा को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष मजबूती से उठाए जाने की आवश्यकता है। इस आपदा में 583 विदेशी नागरिक लापता हैं। नेपाली सेना और सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर और जमीनी मार्गों से अब तक लगभग 12,000 लोगों को बचाया है। पूर्णिया जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न दुकानों, भोजनालयों, होटल और रेस्टोरेंट से खाने की चीजों के सैंपल इकट्ठा किए गए। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलोनी गांव के पास एक मोटरसाइकिल सवार ने बिजली के खंभे में टक्कर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। भागलपुर के मीरन चौक इलाके में रेशम अपशिष्ट के उपयोग को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरा रेशम मेरा अभियान 2.0 के तहत अपशिष्टों के वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दी गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, 6 करोड़ लोगों की घर घर स्वास्थ्य जांच होगी। दैनिक जागरण ने बाढ़ की खबर पर लिखा है, सोन और गंगा उफान पर राजधानी तक पहुंचा बाढ़ का दबाव। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा संभालेंगे राम मंदिर ट्रस्ट। प्रभात खबर ने पटना नगर निगम से जुड़ी खबर पर लिखा है, शहर में 3 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और 15 बहुउद्देशीय भवन बनेंगे, 791 करोड़ होंगे खर्च। आज अखबार की सुर्खी है, हर 5 साल पर होगा शिक्षकों का तबादला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 47 बड़े पुलों और 55 राज्य उच्च पथों पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, भागलपुर और मुंगेर समेत 15 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में। और शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 38 शिक्षकों का हुआ चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी के दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
13: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
12: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
13: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
12: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
13: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
14: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
12: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
15: Now pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
16: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो
17: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
18: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब?
17: सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
18: हेलो
19: जी, नमस्ते।
18: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
19: थैंक यू, मैं अनिल बोल रहा हूँ सिवान से, छोटपुर से।
18: जी जी, क्या हाल चाल है अनिल जी?
19: बढ़िया है, अपना बताइए।
18: जी मेरा भी बढ़िया है।
19: चलिए अच्छा सा ही काम है। और एक चीज, आप तो जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं।
18: जी जी, और आपको भी।
19: जी और बताइए।
18: जी सब बढ़िया है, सब क्या हो रहा है?
19: अभी काम पे हूँ, सोचा फोन कर लूँ, तो फोन मिलाया तो लग गया, 4-5 बार ट्राई किए हैं उसी में लग गया।
18: वैसे क्या करते हैं?
19: हम मेडिसिन शॉप पे काम करते हैं। जी, साथ में आपका रेडियो बहुत सुनते रहते हैं क्योंकि नजर छिपा कर सुनना पड़ता है ना। मान कर चलिए कि ऑनर साहब सुनेंगे या देखेंगे तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा ना, उनको कि बस ये गाना सुन रहा है या मोबाइल चला रहा है, तो इसलिए सब देख के चलना पड़ता है। बट रेडियो का इतना लगाव है कि हम छोड़ते नहीं है, हर चीज सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत सुन भी करते हैं।
18: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। फिर आपकी फरमाइश करा दीजिए।
19: गाना हमको सुना दीजिएगा आशिकी फिल्म से, सांसों को जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक कदम चाहिए, यही वाला।
18: ओके, और गाना सुनवाना भी चाहते हैं किसी को?
19: पहले आपको और आशीष सोनी जी को और मनोरमा जी को, सोनू सर को, प्रमुख भाई को, इरफान भाई को, थाने से रामा जी भैया को, खेड़ा से भोला भैया को, और सरिया वार्ड नंबर तो याद नहीं है, आमद अभी जुड़ते हैं उनको, और बाकी जितने लोग छूट रहे हैं सभी को।
18: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
19: जी थैंक यू।
18: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
19: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया।
1: क्या हो रहा है
0: वैसे? कुछ नहीं, आप लोग से बातें हो रही हैं।
1: सब तो बढ़िया है।
0: जी जी सब बढ़िया है।
1: नमस्ते। चल रही है।
0: और आपका हुआ?
1: हम तो सोए हुए थे।
0: अच्छा जी,
1: अभी गेस्ट आप आए तो लगा।
0: वैसे आपका नाम?
1: सुरभि कुमारी।
0: अच्छा जी, तो सुरभि जी आपकी तबीयत सही तो है ना?
1: जी सही है।
0: अच्छा,
1: आप कैसी है? आपका भी ठीक तबीयत खराब है ना?
0: मुझे पहचान नहीं है आप। अच्छा,
1: नॉर्मल है।
0: जी जी
1: सही ना?
0: हाँ
1: सच में।
0: सच में कैसे पहचान गई?
1: आपका आवाज थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है आज।
0: अच्छा जी,
1: अच्छा जी बोलती है ना, यही से पहचान आपकी।
0: अच्छा, आवाज से पता चलता है।
1: अच्छा जी बोलती है। पता है बोरिंग से आप कॉल भी नहीं लगा रहे थे।
0: क्यों?
1: आप नहीं आ रहे थे इसलिए।
0: नहीं नहीं, इससे पहले भारती भी रिकॉर्ड कर रही थी।
1: और कितने दिन के बाद तो आपसे बात हो रहा है?
0: जी जी आज बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं।
1: वैसे आती थी लेकिन बात नहीं होता था। मैं कॉल आपके लिए लगाती थी।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है। वैसे आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: बता दीजिए। आई लव यू लव मी।
0: जी
1: गाना का बोल है गाना आई लव यू लव मी।
0: क्या गा के बता सकती है मुझे दो लाइन?
1: दूसरा गाना गा सकती है? नहीं।
0: अच्छा तो दूसरा ही गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए ही गा दीजिए।
1: कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है बस तुमसे। अब ये प्यार न होगा मेरे रंग से। हेलो
0: जी
1: मैम।
0: आज आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है मुझे।
1: सही लग रही है? तो बहुत आपसे बात करके मेरा तबीयत सही हो गया है।
0: अच्छा जी, ये बात है। तब तो हम आपसे डेली बात करेंगे ताकि आपका तबीयत हमेशा सही रहे।
1: और हम भी डेली कॉल करेंगे ताकि आपसे बात हो।
0: जी जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है
0: जी। और आपकी दीदी ठीक है?
1: हाँ मेरी दीदी ठीक है।
0: और घर में बाकी लोग भी कैसा है? लोग
1: सब कोई मम्मी पापा भैया सब कोई अच्छे
0: हैं। बढ़िया।
1: आपके फैमिली में सब कोई है ना?
0: यहाँ पे भी सब कोई बढ़िया
1: है।
0: जी तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू
0: जी। आपसे तो बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन अभी दूसरा कॉल आ रहा है तो उन लोगों को भी तो देखना पड़ेगा।
1: हाँ ये तो जरूरी है ना, वहाँ देर कर रहे हैं आपके।
0: जी
1: ठीक है मैम, प्ले कर दीजिए।
0: ठीक है, तो गाना डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: आपको, भारती मैम को, सोनू सर को और डायरेक्टर सर और मेरे पूरे फैमिली को, जितने लोग सुन रहे हैं सभी को।
0: ओके, तो सुरभि जी प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ठीक है मैम, थैंक यू।
0: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
8: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
8: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
11: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो नमस्ते।
12: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 एफएम में।
13: मैं लाल बाबू कबेरवा से।
12: जी जी, कैसे हैं आप?
13: ठीक है, अपना बताइए। बारिश हो रहा है कि नहीं?
12: बारिश तो नहीं हो रही है, मौसम बना हुआ है।
13: चलिए ठीक है। एक शिकायत है आपके।
12: जी,
13: दो तीन बार कॉल लगाए थे, 12 बजे वाला भी शुरू चलता है।
12: जी जी,
13: उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। फिल्म का नाम है जीगर।
12: जी
13: हेलो, जीगर जीगर
12: अरगाने की बोल।
13: आए हम बराती बरात लेके, आए हम बराती बरात लेके।
12: ओके, सर गाना डेडिकेट भी है
13: और श्रीजी है, गुड़िया है, सूरज, रंजीत और आप हैं अरगती।
12: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
13: नमस्ते।
12: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगम 90.4 FM।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM। वालेकुम अस्सलाम जी। बढ़िया बा, अपन बतावल जाओ। ठीक है, के काम बा? वैसे का होता अभी?
0: बस रहो, इंतजार होता की बात होई कि ना आज।
1: चलो बात ठीक बानी, अपन बताई।
0: हम ठीक है, बात होते हैं, खराब चलता।
1: हाँ, तो बा मौसम की वजह से
0: बुखार बहुत रहा, तो दवाई खा रहा हूँ, तो फिर भी ना खा फिर बुखार आ जाए। कहाँ कहाँ तन जीरो से बातें चल रही रहे हो?
1: ए जी का करी, भारती जी की अभी रिकॉर्डिंग चलो तरला, तो यहाँ के करत रहनी है के।
0: बहुत दिन से इंतजार कर दिन करो, नहीं किया बातें में को अपनी बानी हूँ के काम करता नहीं।
1: चलिए आज बात हो गई, वैसे रोज से बात करके बड़ा अच्छा लगे हमके।
0: अच्छा जी। ये बात तो हमू कह रहे हैं कि मैम से बात करके ठीक लगे, मैम ने से बातें नहीं हो जल्दी।
1: चलिए आज भाई,
0: आज बहुत दिन बाद बात भाई, तब नाश्ता से पहले बनी हूँ।
1: हाँ भाई, लहराओ
0: नाश्ता से हो जाएगा। अब जाओ सुबह में दाल खा के, थोड़ा मिया हल्का ला लो, तो खाना बैठे नहीं है, लेकर आ जाएगी स्कूल। चावल खाली बनाओ कर लो, सब्जी रोटी बना लो, नहीं तो खाली सफर बनाए तो खाई लो।
1: चलिए ठीक है, सबके बढ़िया बा। तो आज की फरमाइश बता दी।
0: आज की फरमाइश बता देते, हम भूल चुके रहे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले।
1: कई दो लाइन गा के बता सकते नहीं?
0: गा तो तेरे को लेकिन तबियत सही नहीं गला।
1: अरे आवाज ठीक आवा, सुना दी तनी, हम खुश हो जाए आवाज।

0: मेरा मगर तेरा प्यार नहीं भूले।
1: सुना नहीं?
2: बड़ा निमन गावे नहीं लेकिन।
1: हाँ निमन गावे नहीं।
2: हम जब भी रघुआ से बात करे नी, हम गाना के फरमाइश जब रघुआ करे नी ना, तो हम गवाइये के मैंने पूछे
1: नी। सब लोग हंसी के बकलो लगे गावत ना।
2: ना ना केहू नहीं के बोल सकत ऐसा, जेकर आवाज अच्छा लोग से गावा नहीं सुनने के।
1: तो चलो चलो ठीक बन रहा।
2: ठीक बा
1: मैम का कर दू चलाओ तुम सो।
2: अपन काम में लागल बनी।
1: हाँ कल हम फोन कहीं को आले फोन कहीं, लेकिन फोन तो ना उठाई। मैं तो हमको फोन उठाई थी बड़ा चीनी में दाम मिले थे ऑनलाइन हम बैठा रहे।
2: तो हम मिलवे की ना
1: फोन ना उठाई, ना मिली कहाँ से। अब तो लेट हो गया, लेट हो गया तो लेट हो ही ना।
2: अच्छा कॉल जाए की फिर लेके आये हम की हमने तो जुटल नहीं।
1: हाँ कॉल के माध्यम से हम जुटा थे तो चीनी में दाम मिल रहे। पाँच रंजन जी जब जुड़े नहीं तो हाफी अलग दूल्हे नहीं है। अगला हफ्ता अगला बुधवार सुनेंगे कहा था कि फिल्म लोग पकड़ा तो प्यार हो जाला। हम पकड़ाई रही तो गाड़ी सुनने के मिले।
2: हाँ खूब सारी लिखे नहीं लोग।
1: हाँ हम सोचे की तुम्हारा फोन दिनों ना लगा। हम सोचे की फोन लागे तो कहती की गलत जगह टकरा गए लोग, वैसे गाड़ी सुनने के मिले। फिल्म में तो सब जगह टकरा गए लोग। हाँ जी
2: सब का वैसे नाम ना बतानी अपन।
1: रेशमा बोलते नहीं उसे ठान लगती से।
2: ना ना हम तो जानते बहन, लेकिन आगे वाला लोग के भी तो पता चले। वैसे पूछे पड़ेगा। ठीक बार इसमें जी तो प्ले करते नहीं गाना।
1: ठीक है मैडम
2: जी, सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
10: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो, नमस्ते मैम।
12: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: रोशनी बोल रही हूँ।
12: जी जी, कैसे हैं रोशनी जी?
11: ठीक हूँ।
12: तो क्या हो रहा है?
11: अभी लंच करने आए हैं।
12: अच्छा, अभी कहाँ हैं आप?
11: घर पर आ गए हैं।
12: अच्छा, वैसे क्या करती हैं रोशनी जी?
11: पढ़ाई।
12: किस क्लास की पढ़ाई करती हैं?
11: 7।
12: अच्छा, तो अभी स्कूल से आ रही हैं?
11: हाँ।
12: चलिए बढ़िया,
11: लगा के अब बात हो गया।
12: जी जी, वैसे रोशनी जी आप कहाँ से बोल रही हैं?
11: पठानकोट अच्छा आपका
12: जी
11: आप ठीक हैं?
12: जी जी मैं भी बढ़िया हूँ।
11: नाश्ता हो गया?
12: हाँ हो गया।
11: मेरा गाना सुना दीजिए।
12: बता दीजिए।
11: पीएल फ्रॉक वाली
12: दो लाइन गा के बता सकती हैं मुझे?
11: शायद नहीं है।
12: पवन सिंह का गाना है?
11: हाँ।
12: ओके तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
11: जी मैम।
12: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस मैडम जी बढ़िया हैं। और हमारे यहाँ तो बरसात हो रही है, अभी आपके यहाँ हो रही है क्या?
0: हमारे यहाँ तो बरसात नहीं हो रही है लेकिन मौसम बना हुआ है।
1: हमारे यहाँ तो पता है पानी सुबह से ही गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है।
0: चलिए तो फिर बढ़िया। वैसे नाश्ता वास्ता हो गया आपका?
1: जी नाश्ता भी हो गया, मेरा तो भोजन भी हो गया।
0: अरे वाह,
1: आपका हुआ कि नहीं?
0: नाश्ता हुआ है।
1: अच्छा,
0: तो फिर आज की फरमाइश क्या है?
1: आज की फरमाइश है मैडम जी, पिक्चर का नाम है मासूम और उसमें गाने के बोल है, काले लिबाज में गोरा बदन ऐसा लगे ईमान से जैसे हीरा निकल रहा है कोयले की खान से।
0: क्या आप गा के बता सकते हैं दो लाइन?
1: यही है मैडम जी, काले लिबाज में बदन गोरा यूं लगे ईमान से जैसे हीरा निकल रहा है कोयले की खान से। मासूम पिक्चर है मैडम जी ये।
0: जी जी, और गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं
1: मैडम जी। है गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझा जी है, जीतेन धाकड़ जी है और भारती मैम सोनी मैम को।
0: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: धन्यवाद।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Now pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
15: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
17: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
16: हम मनोदीन अहमद झुमरिया से बोलते हैं।
17: जी जी, क्या हाल चाल बा?
16: ठीक बा सर, आप और सुनाए?
17: जी हमारे भी बढ़िया बा। इससे क्या होता अभी?
16: क्या होता, बोल क्या नंबर मिला होता नहीं, वही वजह से लगता नहीं है। हवा बहुत होता नहीं, निमल लगता। आज 2-3 दिन से ऐसा आराम भइल बा। हाँ सर, चलता नहीं
17: से आराम बानू?
16: हाँ बहुत आराम बा, बहुत आराम बा।
17: चलिए बढ़िया बा। खाना वाना हो गया?
16: हाँ खाना खा चुका हूँ। ठीक बा, मैं वो गाना सुना दे।
17: बता दी,
16: गम उठाने के लिए मैं तो जी जाता, मेरे हजूर के हो गाना।
17: अच्छा, गाना सुनाना भी चाहते हैं?
16: हाँ आप सुनिए, हम सुने, हमारे जैसा दिन भाई सुने और रिमझिम परिवार के जितने लोग है सब लोग सुने।
17: ठीक बात तो गाना प्ले करता नहीं
16: आवाज आई
17: ये गाना काल ना तो आज चलिए रे
16: ठीक
17: बात तो प्ले करता है गाना
16: वालेकुम
17: अस्सलाम
3: फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी मैम, मैं जाकिर हुसैन गोपालगंज से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ मैम, अपना बताइए।
1: जी मेरा भी बढ़िया है, क्या हो रहा था?
0: बस कुछ नहीं मैम, क्या होगा, काम धंधा छोड़कर क्या होगा। हेलो
1: जी, वैसे क्या करते हैं आप?
0: बस मैम पढ़ाई कर लिए हैं, पढ़ाई करके क्या करे।
1: कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप?
0: मैम 9 तक पढ़ाई किए हैं।
1: अच्छा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए हैं?
0: जी मैम, मजबूरी था उसी छोड़ दिए थे।
1: अच्छा चलिए कोई बात नहीं है।
0: जी मैम गाना सुनना चाहते हैं।
1: बता दीजिए।
0: जी गाना सुनना चाहते हैं, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया।
1: ओके, और गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं आप?
0: हाँ मेरा दोस्त लोग है, नाम रखेंगे सुफिया यूसुफ, संजीत और मुकेश शर्मा, जितलेश शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, उसके बाद मेरा दोस्त संदीप है, सुशील है, गोविंदा है, उसके बाद बहुत लोग हैं। और आपको भी, आपको रेडियो इनके पूरे परिवार को।
1: क्या आप हेलो मैचेस में पहली बार कॉल किए हैं?
0: नहीं मैम, हम तो कॉल करते हैं, हरदम कॉल करते हैं, जब भी कॉल लगेगा तब भी कॉल लगाते हैं।
1: अच्छा जी, शायद मुझसे पहली बार बातें हो रही हैं।
0: मैम पहली बार तो आप सोमवार का नहीं है क्या?
1: नहीं, भारती जी रिकॉर्ड कर रही थी।
0: हाँ तो उससे बात हुआ है।
1: अच्छा ठीक है, तो फिर गाना प्ले करते हैं आपका।
0: ओके मैम।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: ओके।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो, नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिंग 90.4 FM में। जी बढ़िया है, अपना बताइए। अब क्या हो रहा है?
8: काम कर रहे हैं, बारिश हो रहा है, काम नहीं हो रहा है।
7: अच्छा,
8: काम नहीं कर रहे हैं।
7: वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
8: पंजाब से। पंजाब से?
7: अच्छा, पंजाब। और आपका नाम?
8: मेरा नाम परमात्मा कुमार, काला मुझे घर पड़ता है, खास के बगल में।
7: अच्छा जी, तो अभी बारिश हो रही है?
8: कल भी हो रहा है, बारिश आज भी हो रहा है। थोड़ा गाना सुनना है? मतलब
7: बता दीजिए,
8: कोई भी गाना बजा दीजिए।
7: हम उसकी से कॉल किए, आप ही बता देते तो अच्छा रहता।
8: बताया नहीं, चेतन लाल का बजा था, सिंधी राज का बजा दीजिए।
7: कोई भी,
8: सोमवार को कॉल लगाए थे तो आप रिसीव करके बोले नहीं।
7: जी जी, नेटवर्क इशू होगा, इसी की वजह से नहीं आवाज आया होगा।
8: काट दिए थे दोबारा, तो लगा रहे थे 11 बजे से, तो अभी लगा
7: है।
8: बारिश उधर कैसे मौसम आप लगता है?
7: मौसम भी तो बादल छाया हुआ है।
8: इधर तो कल से बारिश हो रहा है, 8 बजे हो रहा है, 3 बजे बारिश होगा, बहुत ही घंटा 4 बजे बारिश हो रहा
7: है। इधर भी मौसम बना हुआ है कि बारिश आएगा, अच्छा लग रहा है।
8: किसी राज्य गाना बजाइए तो वही आपने पसंद का।
7: जी तो हम तो बोल रहे हैं, आप बताते तो ज्यादा अच्छा रहता।
8: नहीं नहीं, आपको बढ़िया अच्छा बजाते हैं, आप ही बजा दीजिए।
7: अच्छा चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं तो भजा देंगे। और वैसे
8: आज बजेगा कॉल?
7: आज नहीं तो कल बजे जाए, दोनों दिन
8: को। और धनंजय और

0: हेलो,
1: आरती मैम कैसे
0: नमस्ते जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगीम 90.4 FM में।
1: हैं मैम?
0: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
1: बिल्कुल ठीक हूँ मैम। उधर का मौसम का क्या हाल है गोपालगंज का?
0: यहाँ गोपालगंज का मौसम तो सुहाना हुआ है, हवा चल रहा है।
1: इधर तो हम लोग बारिश से परेशान हो गए हैं मैम। 2-4 दिन पहले से बारिश हो रही है और अभी लगातार 7-7 तारीख तक बारिश लगातार दिख रहा है। बहुत जोरों से बारिश हो रही है।
0: अच्छा जी,
1: जी।
0: वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं सुदीरपुर परिजिम्बा जिला देवघर झारखंड से मैम।
0: ओके
1: जी। मैं रेगुलर लिसनर हूँ आपका रेडियो रिमझिम का।
0: जी।
1: लगभग लगभग प्राय सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ, समय मिल पाता है तो।
0: अच्छा, वैसे क्या करते हैं आप?
1: जी क्या बोले?
0: वैसे क्या करते हैं आप?
1: जी मैं शिक्षक हूँ जी, समय निकाल के थोड़ा कॉल कर लेता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी की बात है।
1: जी। आज सुना दीजिए फिल्म में धर्मेंद्र और रेखा फिल्म है, गजब फिल्म का गाना सुना दीजिए। गीत के बोल हैं, ये हवा ये बता तुझको क्या है पता, अबके बरस जो बरसेगा जो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी होगा मेरा साजन कैसा होगा। लता मंगेशकर क्या

0: क्या आप दुल्हन गा के बता सकते हैं?
1: नहीं मैं गाना उतना अच्छा नहीं आता है, जिसके बोल रहे ये हवा ये बता तुझको है पता, अब के बरस जो बरसेगा जो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी होगा मेरा साजन कैसा होगा, जिसके बोल इस प्रकार है। मैं
0: जी जी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: नहीं नहीं ऐसे हमको तो गाना नहीं, लेकिन गाने के बहुत शौकीन हूँ मैम।
0: जी फिर भी बहुत अच्छा
1: जी। और डेडिकेट रहेगा मैम सबसे पहले आपको, रेडियो रेंज के जितने आरजे सब हैं सबको, पूरे टीम को, और रेडियो रेंज के जितने भी प्यारे प्यारे श्रोतागण हैं देश विदेशों में सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।
1: जी मैम, कॉल रिसीव करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: जी आप।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18744।
9: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
9: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
12: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो,
14: सलामुअलैकुम।
13: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 एफएम में।
14: जी, मैं समीर चौराव।
13: जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
14: चौराव।
13: चौराव,
14: हाँ।
13: अच्छा जी।
14: हेलो,
13: तो क्या हाल चाल है आपका?
14: जी बढ़िया है।
13: तो क्या हो रहा है?
14: बस करीब है।
13: अच्छा जी, बढ़िया है। खाना वाना हो गया आपका समीर जी?
14: हाँ हो गया।
13: चलिए बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनिएगा आप?
14: गाना सुनना है हमको, मुझे तेरी जरूरत आज भी है, तोड़ के जाने वाले।
13: समीर जी, आप क्या दो लाइन गा के बता सकते हैं मुझे?
14: जी जरूर।

0: जाने वाले सुन मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है।
1: जी समीर जी, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं।
2: थैंक यू।
1: आप पहली बार कॉल किए हैं? हेलो माय कृष्णा।
2: पहली बार हम गाने श्रोता हैं रेडियो के, काफी दिन के बाद कॉल किए।
1: अच्छा जी,
2: 2008-09 से सुन।
1: चलिए बढ़िया, तो समीर जी प्ले करते हैं गाना आपका। जी मेरा नाम मनोरमा।
2: जी जी प्ले
1: जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी भारती जी,
1: नहीं
0: मनोरमा जी।
1: जी जी
0: जी, कहिए क्या हाल चाल है।
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए आप कैसे हैं।
0: हम लोग भी ठीक हैं, सिलाई हो रहा है। आपका कार्यक्रम चलते रहता है और सिलाई होता है।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: नाम है साध मास्टर, ग्राम धनाव से, जिला रोहतास, बिहार से। पहचान गयी?
1: पहचान गए।
0: आज भारती जी रिकॉर्डिंग से चले गयी और बहुत चले गए ना।
1: जी जी, उनका टाइम हो गया तो चली गयी।
0: अच्छा, इसीलिए गाना बज जाएगा मैडम जी शाम के 5 बजे।
1: जी रहेगा कि गाना आज ही चले।
0: रेडियो तो हम 1991 से सुन रहे हैं, 90 से। जी पहले काम सीखने जा रहे थे तो उस्ताद के पास टेप रिकॉर्डर था, कैसेट वाला। उस समय में 15 रुपया के 18 रुपया कैसेट मिलता था। इसके बाद उसके बाद में फिर तो रेडियो रखे हम, संतोष रेडियो। बहुत दिन चलाए हम, बैटरी वाला, 4 बैटरी डालते थे हम लोग। ऑल इंडिया रेडियो और पटना चलता था, रसमंजरी प्रोग्राम का गीत माला हफ्ता में हम लोग सुनते थे। उसी टाइम से हम गाना सुनते हैं।
1: अच्छा, तो अभी कैसे सुनते हैं, रेडियो से ही आपके मोबाइल ऐप के जरिए?
0: ये तो मोबाइल से, आपका ऐप से सुनते हैं मोबाइल से।
1: अच्छा अच्छा,
0: 2 साल हो गया आपका मोबाइल में किए तो देखे कि रेडियो रिमझिम बजाए तो अच्छा लगा, तो फिर 2 साल से ही सुन रहे हैं हम लोग ज्यादा।
1: तो रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम में कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे अच्छा लगता है?
0: सबसे कार्यक्रम ईयरबड्स चॉइस, हेलो फरमाइश।
1: अच्छा,
0: और अब तो अंताक्षरी खत्म हो गया ना, तो हम हर हफ्ते भाग लेते थे। दिव्या जी थी तो 2-2 बार 3-3 बार चांस मिलता। जी
1: बढ़िया, तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: आज की फरमाइश है नगीना मूवी का गाना है, थोड़ा सा गुनगुना के सुना दे रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तूने

0: किया।
1: जी, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं
0: जी। सबसे पहले आपको सुनवाना चाहता हूँ और भारती जी को और रेडियो रिमझिम की पूरी टीम को और जितने रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सभी को, अब हम लोग धनाव से रोशन थिएटर में सुनेंगे हम लोग।
1: जी जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
7: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमजेड पर।
9: Now pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: Jab phone kindi bajti hai to kehte hain hello.
12: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो जी, भारती जी नमस्ते। हम 97 मोबाइल विक्रमगंज रोहतास बिहार से।
12: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
13: जी मैम, शिकायत है आपके लिए कि मैं कभी भी मैसेज करते हैं यार बॉस के चुट में मेरा गाना जल्दी नहीं बजाया जाता है, क्यों?
12: अब ये तो भारती जी बता सकती हैं।
13: आज विक्रमगंज में जितने भी रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सभी को गाना सुनाना चाहते हैं, वर्षा पानी वाला गाना बजाते।
12: आपकी आवाज कट रही है।
13: टिप टिप वर्षा पानी वाला बजा दीजिएगा गाना।
12: अच्छा, और गाना सुनवाना भी चाहते हैं?
13: हाँ, जो जितने विक्रमगंज काराकाट में जितने लोग हैं सभी को सुनाना चाहते हैं। नाम तो धरेंगे तो बहुत लोग हैं। आज बज जाएगा
12: जी? आज नहीं तो कल बजी जाएगा।
13: आपके एरिया का मौसम कैसा चल रहा
12: है? मौसम तो सुहाना बना हुआ है, हवा चल रहा है।
13: चलिए ठीक है मैम, बजा दीजिएगा।
12: ओके, तो फिर प्ले कर दें गाना आपका।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मनोरमा जी के लिए दिल से प्रणाम।
0: प्रणाम।
1: मैं दानेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया। तो क्या हो रहा था अभी?
1: काम हो रहा है, शो सुन रहे थे।
0: अच्छा, वैसे क्या करते हैं आप?
1: हम तो बिल्डर हैं, ऐसे मशीन भी चलाते हैं।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया।
1: पावर प्रेस चलाते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी की बात है।
1: क्या करें, रोटी के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा।
0: जी जी।
1: और सब अपना सुनाइए।
0: जी सब बढ़िया है आपकी दुआ से।
1: ये आप आज का टाइमिंग बढ़ गया।
0: क्या ना, इससे पहले भारती जी रिकॉर्डिंग कर रही थी तो फिर मेरा चालू हो गया 12 से 12:30 एक बजे तक, क्योंकि कॉल बहुत कम आए थे।
1: अच्छा अच्छा, तब भी तो लग नहीं रहा था।
0: तो स्टार्टिंग में लोग बराबर करते हैं, लो जैसे टाइमिंग खत्म होता है कॉल कर आना बंद हो जाता है। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: आज की फरमाइश क्या, करने के बाद तो दिमाग से ही उतर जाता है। चलिए ठीक है, दे रहा हूँ, यही बजा दीजिएगा। ये कर बालमा बसे परदेश तक ही।
0: ओके, वैसे तो अच्छा तो गा रहे हैं आप।
1: तो फिर से गाएंगे।
0: तो गाइए।
1: ये कर

0: ठीक है, यही सुना दीजिए, दिमाग में उतर गया आज।
1: कोई बात नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छा गाते हैं।
0: डिप्रेशन में आ गया
1: जी।
0: क्या करे, चलिए फिर जो भी हो काट छाट के बजा दीजिएगा।
1: जी जी बिल्कुल, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ले कीजिए
1: जी। रेडियो रिज्यूम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-300-99-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी मैम, नमस्ते।
8: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजीव 90.4 FM में।
9: मैम मैं संगम पासवान बोल रहा हूँ, ग्राम धनौती, पोस्ट कटिया, थाना कटिया, जिला गोपालगंज, बिहार से।
8: जी जी, कैसे हैं आप?
9: मैं मैम बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? और रेडियो रिंजीव 90.4 FM में काम करने वाले सब मेरे दोस्त लोग कैसे हैं?
8: जी यहाँ पे भी सब कोई बढ़िया है।
9: अरे भैया मैम जो भी है। हाँ मैम, और गोपालगंज की अभी मौसम कैसा है?
8: गोपालगंज की मौसम तो सुहाना हुआ है, हवा चल रहा है।
9: अच्छा अच्छा
8: जी, और इधर?
9: चलिए बढ़िया है मैम, मैं चाहता हूँ आज कुछ गुनगुनाने के लिए।
8: जी बिल्कुल।
10: हमारा जिला के अलगे पहचान बड़ुए, हमारा जिला के अलगे पहचान बड़ुए, भाषा हटे भोजपुरी इतिहास बड़ुए, भाषा हटे भोजपुरी इतिहास बड़ुए, हम धम हटे जिला के पहचान हो, रेडियो रिमझिम देवेला संस्कार हो, हम धम हटे जिला के पहचान।

0: पाल गंज रचे इतिहास हो सब दुनिया में एकर सब दुनिया में एकर पहचान बड़ुए हमारा जिला के अलग पहचान बड़ुए हमारा जिला के अलग पहचान बड़ुए संगम नाम हमार घर धनौरी थाना है कटिया जिला है गोपालगंज नगरी थाना है कटिया जिला गोपालगंज आ संगम नाम हमार गोली भोजपुरी इतिहास है सब रेडियो रिंग सुने वाले अरे दर्शक लोग के प्रणाम बड़ुए हमारा जिला के अलग पहचान बड़ुए हमारा जिला के अलग पहचान बड़ुए। मैम जो भी त्रुटि है मैं माफी चाहूंगा क्योंकि ये रचना अपने मन से मैंने बनाया था, थोड़ा मिस्टेक बीच में हो गया क्योंकि पढ़ने में।
1: कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत अच्छा गाना गा के सुनाया, बहुत अच्छा लगा।
0: मैम अच्छा लगा तो इसलिए तो मैं सोचा भाई जो भी बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ मेरे को मालूम नहीं, लेकिन आपको मैम कैसा लगा?
1: जी जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बाकी लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा आपका गाना। और आपने जो गाना गाया ना बहुत क्या ही बताया, बहुत अच्छा गाना गाया आपने।
0: जी मैम मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी त्रुटि होगा तो अपना भाई छोटा समझकर माफ भी माफ कीजिएगा और पूरे श्रोताओं लोगों से भी बोल दीजिएगा माफ करेंगे लोग, क्योंकि छोटे से भी गलती हो सकता है। और मैं चाहता था कि इससे और आने वाला दिन में मैं इस हेलो माई चॉइस के माध्यम से पूरे दर्शकों को एक से एक मैं रचना लेके आऊंगा भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी के लिए। अभी तो मैं फिलहाल मैं महाराष्ट्र हूँ, लेकिन हम लोग जो भी बोलते हैं थोड़ा यहाँ पे वो होगा था ना कि भाई महाराष्ट्र में रहना है तो भोजपुरी बोलना पड़ेगा, तो हम लोग भी जहाँ रहते हैं तो अपना जो बिहार का मिठास भोजपुरी आवाज है तो हम लोग आपस में जो भी है हम लोग यहाँ पे हिंदी वो हिंदी नहीं बोलते, हम लोग भोजपुरी में ही बात करते
1: हैं। अच्छा लगता है
0: इसीलिए मैं जी मैम जी मैम। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाइए कि जो कि हम लोग जुड़े तो उसमें भोजपुरी आवाज में बात करें, भोजपुरी जो भी हो भोजपुरी को गाना के माध्यम से हो चाहे कोई भी अगर सुलझाव भी देना हो चाहे कोई भी ऐसा एपिसोड लाकर आइए आप लोग कि भोजपुरी में हम लोग थोड़ा बातचीत आप लोगों से करें तो थोड़ा हम लोग को और अच्छा लगेगा। और जितना भोजपुरी बोलने वाले सुनने वाले देश विदेश में रह रहे हैं लोग थोड़ा उन लोग को भी ऐसा महसूस होगा कि भाई जो भी है अच्छा है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम कुछ ऐसा एपिसोड आप लोग लाइए कि भोजपुरी में जैसे आप लोगों से हम लोग जुड़े।
1: वैसे तो चलता है संडे को भोजपुरी एक्सप्रेस, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं क्योंकि उसमें पूरी गाने की ही फरमाइश होती है और भोजपुरी में भी बात किया जाता है।
0: अच्छा
1: तो सिर्फ संडे को ही?
0: तो मैम नहीं नहीं तो उसको ऐसे कीजिए कि मतलब कि हफ्ता में कम से कम एक दो दिन और बढ़ा दीजिए उसको, क्योंकि अपना भाषा है अपना पहचान है तो उसको थोड़ा हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि ऊपर से ऊपर तक जाए कि जैसे हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो जानबे करते हैं कि वो लोग का बिहार का लोग थोड़ा लोग अलग ही ऐसी से समझते हैं लोग। मैम एक भोजपुरी खेसारी लाल यादव का सॉन्ग है वो मेरे को सुना दीजिए, देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से।
1: ठीक है
0: आपको और रेडियो सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरे दोस्त लोग हैं प्रमोद खास करके इनको।
1: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है मैम नमस्ते।
1: नमस्ते रेडियो 90.4 FM कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है मैम प्रणाम।

0: Now pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
0: Pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up.
2: सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009994911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
9: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे और समय 9:26 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने के फरमाइश करना है तो पुराने गाने के फरमाइश करना है, ये बातें तो

तन्हाई के अलम में मैं घर से निकल आया और बोतल भी उठा लाया। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि गाना जिए तो जिए कैसे बिन आपके। फिल्म साजन, नाम शगीर अंसारी फ्रॉम असम से मैसेज किए हुए, डेडिकेट करते हैं दिलीप राम जी को। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और जो भी श्रोतागण हमारी आवाज़ सुन रहे, कार्यक्रम सुन रहे, अपने पसंद के गाने इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं, तो वो टेक्स्ट मैसेज करें, जो छोटे फ़ोन से भी हो सकता है और बड़े फ़ोन से भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का कॉल ना करें, हमें कार्यक्रम को प्रसारण करने में दिक्कत होती है और दिक्कत होगी तो कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। तो आप लोग फ़ोन ना करें, ऑडियो या वीडियो कोई भी कॉल ना करें। आप गाने सुनना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैसेज करें हमारे नंबर पे और हम कुछ ही समय में आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि प्लीज़। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और गाने की फरमाइश होती है तो पूरा करने की कोशिश है। और यहाँ पे जो भी मैसेज हमारे पास पहुँचेंगे उस मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। बशर्ते आपसे निवेदन है, जो भी श्रोतागण फ़ोन कर रहे हैं वो फ़ोन ना करें, मैसेज करें। फ़िलहाल हम MD नौसाद जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

रेडियो एमजीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कमाल के गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ था एमडी नवसाद जी के तरफ से, और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए हैं, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, मैं कमलेश ब्लेस सविया फील्ड गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में कमलेश जी, और बने रहे हमारे साथ, गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचाते हैं मधु सरिया से, राजू कुमार कहते हैं सॉन्ग सुनना है, फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगे, बिल्कुल प्यारे सॉन्ग की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं सनी पटेल दलिया से बहुत दिनों के बाद इस कार्यक्रम से जुड़ चुका हूं, और सॉन्ग ना कजरे की धार ना मोतियों के हार प्लीज सर प्ले कर दीजिएगा, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और आगे गाने की फरमाइश हमारे श्रोतागण तेजपुर शाम से सगीर अंसारी जी किए हुए हैं, और डेडिकेट किए हुए हैं दिलीप जी को, तो इनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, जियो तो जियो कैसे बिन आपके।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
8: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।
9: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं और लिखा गया है कि हाय हेलो, मैं MD महमूद, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में MD महमूद जी। और केरला से मैसेज किए हुए गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है हाय सोनू बाबू कैसे हैं, हम भी जुड़े हैं, जब किसी से हद से ज़्यादा प्यार हो जाता है और जब आपके एक दूसरे से रिश्ता टूट जाता है तो यही सॉन्ग याद आता है। क्या सोनू बाबू पर सॉन्ग हिट है। वीरेंद्र गुप्ता भैया मैसेज करते हैं, चलिए अच्छे गाने के फरमाइश थी सगीर अंसारी जी की तरफ से, शायद दिलीप जी का याद में गा रहे थे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे कमलेश जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है आया कोई सपनों में सहजादा चुरा के मेरा दिल ले गया। तो चलिए आपकी फरमाइश हम सभी सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो 90.4 FM।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे सुन रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज कहा जा रहा है कि सुनो सर हमारा नंबर, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस मैसेज को किए हुए हैं रंजन कुमार तमकुही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और गाने की फरमाइश किए हुए हैं ईमान डोल जाएंगे। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सर जी। चलिए आपको धन्यवाद रेडियो रेमसम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, ओहो चलिए आपकी भी मैसेज हम शामिल कर देंगे और फरमाइश पूरा कर देंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि अब तो मेरा सुना दीजिए। बिल्कुल आप लोग की फरमाइश तो पूरा कर ही रहे हैं, एक एक करके फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। आगे बढ़ते हैं और गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं हम सभी ईमान डोल जाएंगे के साथ।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 94 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और कमाल के गाने सुन रहे थे हम सभी, ईमान डोल जाएंगे। और यहाँ पे आगे मिसेज कुछ पहुँचे हुए हैं तो मिसेज को शामिल करते हैं। यहाँ पे आगे मिसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि ए भाई, इन हसीनों के चक्कर में पढ़कर अपना ईमान मत डोलाइए, नहीं तो आगे आप पर FIR हो जाएगा, संभल कर रहे। मैसेज के साथ सलाह देते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर गाना बजाने के लिए धन्यवाद। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि पराई फिर लेकर क्या करोगे, किसी की हीर लेकर क्या करोगे, मैं जब तक सामने हूँ गुनगुना लो मेरे, मर जाने के बाद मेरा तस्वीर लेकर क्या करोगे। बिल्कुल बात तो सही है। मैसेज करते हैं बड़रिया थाना क्षेत्र बालापुर से सनोज कुमार जी, कहते हैं कि मस्त रोमांटिक सॉन्ग, ईमान डोल जाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, कैसे हैं, मैं रोहित देहरादून से आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, यूपी 36 अमेठी जिला उत्तर प्रदेश से, नाइशम, बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि दिल की दूरियां मिटा दिया हम, उसके आशिक बना दिए थे उसने मुझे, वफा बना दिया, क्या मजहब बना जो शगीर जी को रुला दिए। सुनो भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, शगीर जी अपने गाने में शामिल किए, दिल से शुक्रिया। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी सॉन्ग थे। चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करने वाले हैं और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं सन्नी पटेल जी, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, ना कजरे की धार ना मोतियों का हार, फिर भी कितने सुंदर। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेमझिम 94.4 एफएम पे सुन रहे थे अभी हम सभी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश करते हैं एमडी महमूद जी केरला से, और गाने की फरमाइश करते हैं साथी मूवी से कोई भी गाना। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, थैंक यू सर सॉन्ग प्ले करने के लिए, मैं शन्नू पटेल। चलिए आपको धन्यवाद ये रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नाइस सॉन्ग, बिल्कुल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अभी मैसेज टाइप कर रहे हैं। चलिए टाइप करते रहिए और कार्यक्रम के साथ एंजॉय करते रहिए। आगे मैसेज पहुंचा और लिखा गया है कि जब तक मन जब आप में है, जब तन मन जब आपस में पवित्र हो तो अपना प्यार का सादगी भी किसी परी की सुंदरता से कम नहीं लगता है, एक दूसरे को अच्छा सॉन्ग। बिल्कुल काफ़ी प्यारे सॉन्ग की फरमाइश थी सन्नी पटेल जी की तरफ से, और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया, इनकी भी राय अच्छी है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि पढ़ने वाले भी तेरा दीदार करेगा, एक बार नहीं 100 बार करेगा, मैं लिखूँगा जब शायरी तुझ पे तो मेरी डायरी का एक पन्ना भी तुझसे प्यार करेगा। और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं रोहित जी, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। और तो चलिए एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी हो ही रही है, आगे गाने के साथ एंजॉय किया जाए। और महमूद जी की गाने की फरमाइश साथ ही मूवी से प्ले करते हैं और सुनते हैं।

94 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम SMS फरमाइश का चल रहा है और आप इंजॉय कर रहे हैं गाने साथ ही मूवी से महमूद जी की फरमाइश पे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सोनू भाई गाना प्ले करने के लिए, मैं तो खाना खा लिया और बर्तन धोने चला। तो बिल्कुल, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या है उस साथी को भूल गई, आप भूल गए कि आपके साथी, बताएं सोनू बाबू पहले कौन भूले। अब तो महमूद जी ही बता सकते हैं और हम सभी तो अभी जानते नहीं हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि, और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं राजू जी मधुसरिया से, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे राजू जी, और आपका फरमाइश इस कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश रहेगा क्योंकि समय भी हो गए हैं 10:16 कार्यक्रम की समाप्ति का समय। तो कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं और जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि कल आप सब बिल्कुल मैसेज करें, कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश हम कल पूरी कर दें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें आप सभी रेडियो 94.4 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894470 या 9198886973।
3: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जब तक हमारे प्यारे प्यारे लिसनर जुड़ रहे हैं हमसे, तब तक आपसे सभी के लिए मैं एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूंगी आप सभी के लिए। और गाने की बोल है काटा लगा, और ये नए वर्जन में सॉन्ग है। तो गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

मेरा हम भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं और नाइस ओपनिंग सॉन्ग, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है मेरे पास, लिख रहे हैं, हेलो मैम, मेरा नाम धीरेंद्र कुमार है, मुझे गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके भी गाने को सुनाया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, और हम हूँ आगलवानी, और वाओ सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। और यहाँ पे हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं, संदेश आपके गीत हमारे, आपको प्यार भरा आदाब, बेहतरीन साजो आवाज़ों और अंदाज मौसम से लवरेज एवं उम्दा गीत प्ले करने की जहमत करें, इनायत होगी। और प्लीज़ प्ले सॉन्ग, और फिल्म है मेरी सूरत तेरी आंखें, और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, और गीत है नाचे मन मोरा मगन तिकता धिकी, और मोहम्मद उस्मान अंसारी और मोहम्मद कलीम अंसारी और शामसूर कमर राही, थैंक्स फॉर यू। और यही सभी गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। और चलिए आपके द्वारा भेजे हुए गाने को मैं प्ले करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 78291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72776 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। जो कि यहाँ पे अगला मैसेज है धनेश जी की तरफ से और इन्होंने मैसेज किया है, भारती जी नमस्कार, कैसे हैं आप? काटा लगा तो कैसे लगा ये भी बता देना। तो बिल्कुल बताएंगे वो। और इन्होंने बहुत ही प्यारा सा लाइन लिखा है जो कि लिख रहा है, सूरज तो उनका पैगाम देना, सूरज तो उनको मेरा पैगाम देना, खुशी का दिन और हंसी का शाम देना। जब वो पढ़े प्यारे से मेरे मैसेज को, जब वो पढ़े प्यारे से मेरे इस पैगाम को, तो उनके चेहरे पर प्यारी से मुस्कान देना। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से और इन्होंने मैसेज किया है, मनोरमा मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? तो जी नमस्कार आपको भी, मैं भी बढ़िया हूँ। आप सब बताइए आप सब कैसे हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम अहमद अली सारे वार्ड नंबर 1 से गुड आफ्टरनून आप सभी को बोल दीजिएगा। तो जी बिल्कुल। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, प्रदीप चौहान कुशीनगर दुबई से, और मेरा सॉन्ग है चेहरा तेरा किताबी किताबी। तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारे से सॉन्ग को।

0: अभी अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, चेहरा तेरा किताबी किताबी, और इनके तरफ से, प्रदीप जी की तरफ से मैसेज पहुंचा है कि थैंक यू मैम। तो बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। यहाँ पे अगला मैसेज पहुंचा है जो कि लिख रहे हैं शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। पुराने ज़माने में औरत धान कूटती थी, मिर्चा मसाला कूटती थी, आजकल सब पीसा हुआ मिल जाता है, तो अब वो पति को कूटती हैं। मेरे गाने के बोल हैं। जी तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे अगला मैसेज है, और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा है उत्तम सोनी जी की तरफ से, और इन्होंने लिखा है वाव बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, चेहरा तेरा किताबी किताबी, खत में आँखों में जवाब। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैन, नमस्कार इरशाद मास्टर, रोशन टेलर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे गाने के लिंक भेजे हुए हैं जो कि वॉइस के माध्यम से है, तो चलिए सुनते हैं इनकी।
1: हाय भारती मैम और मनोरमा मैम नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से थाना नासरीगंज जिला रोहतास बिहार से बोल रहा हूँ। गाने का लिंक भेज दिया हूँ, मूवी का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का, और गाने का बोल है नजराना साजन का लहराती जाए। और सुनने वाले हम लोग सभी धनाव से हैं, नौशाद भाई, नुमान भाई, अरमान भाई और जितने हम लोग रोशन टेलर में काम करते हैं सभी लोग सुनेंगे, और जितने रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं को सुनवाना चाहता हूं। और आपसे गुजारिश है कि गाना पूरा सुना दीजिएगा, और विक्रमगढ़ नौशाद भाई को भी सुनवाना चाहता हूं। ओके मैडम नमस्कार।

0: कौन गा रहा है?
1: है कोई प्यार के गीत गाने वाला, जंगल जंगल घूमता है प्यार के नए नए गीत लेकर, कभी दर्द भरे तो कभी खुशी के।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:40 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती दी, गुड आफ्टरनून का हालबा, मैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और मेरे इधर बारिश हो रहा है, आपकी तरफ मौसम कैसा है जरूर बताइए भारती दी, और सब बताइए भारती दी का हाल बा, मनोरमा दी जरूर बताएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और हम दोनों का तो हाल ठीक है, और यहाँ तो अभी मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है, हल्की हवा चल रही है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और मुझे भी गाना सुनना है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं पूरे रेडियो रिमझिम के साथियों को भी सुनाना है, तो जी बिल्कुल सुनाइएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हाय मैम, समीर आलम जंगलिया से, और सॉन्ग सुनना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कृष्णा शर्मा, अहमदाबाद गुजरात से जुड़े हैं, और साथ में शक्ति सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं भारती जी, मनोरमा जी, सभी लिसनर को स्वागत है, आपके बीच उपस्थित हो गया हूँ, दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास धनेश जी की तरफ से कुछ प्यारी सी चुटकुले पहुँचे हुए हैं, लिख रहे हैं कि पति, तुम घर पर ही दही क्यों नहीं जमा लेती, सस्ता भी पड़ता है और शुद्ध भी। पत्नी, मुझे नहीं जमाना, मैंने शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था। पति, क्या क्लियर किया था? पत्नी, यही कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हैं धनेश जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से और मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि गाना प्ले किए थे उसका फीडबैक मैसेज पहुँच चुका है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फीडबैक मैसेज।
2: गाना सुनवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोरमा जी, और आपको भी और आपको पूरी टीम को भी निषाद मास्टर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।
8: तो काफ़ी प्यारी वॉइस में मैसेज पहुंचा हुआ है। और इसी के साथ यहां पे हमारे पास गाने की जो फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं पप्पू कुशीनगर से, और मेरे दोस्त को गाना सुनना है जिनका नाम है विक्रम मौर्य, और गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। और गाने की बोल पहुंची हुई है और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है, और गाने की बोल है वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोग काफ़ी खूबसूरत गाने को सुन रहे थे और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग था और गाने की बोल थी वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम और नाइस सॉन्ग मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं, आप तो कभी बताते नहीं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम एमडी सलाम। सलमान सहरसा से और मुझे एक गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि उत्तम जी की वाओ ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है हमारे पास, लिख रहे हैं कि नया प्यारा विरही जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज रानी ठाकुर, इसरा राज पप्पू ठाकुर कह रहे हैं, भारती मैम जी आज हमारे छत्तीसगढ़ में खूब बारिश हो रही है, इसीलिए आपके यहाँ रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम रुक रुक कर चल रहा है, साफ सुनाई नहीं दे रहा है। वो तो ऐसी बात है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और थोड़ी बरसात की वजह से ऐसे हो जाते हैं काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जय श्री राधे राधे भारती जी, और हम भी जुड़ गए हैं सुनील यादव दुबई से, और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी राधे राधे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं नमस्ते मैम, हम भी शो से जुड़ गए और हमारी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, अरविंद यादव। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जो कि मेरे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं दीनानाथ यादव कुवैत से जुड़े हैं और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। उससे पहले यहाँ हमारे पास जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रही हैं कि हेलो भारती मैम, कैसी हैं आप, उम्मीद करती हूँ आप अच्छी होंगी, और मैं भी जुड़ गई हूँ आपके कार्यक्रम से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मेरा नाम रेशमा खातून पठानपट्टी से जुड़ी हूँ, और लिख रही हैं कि फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, सो है भारती जी का आनंद लीजिए। ओहो, और काफ़ी खूबसूरत शायरी के साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। और यहाँ पे जो कि अगली फरमाइश है मेरे पास पहुँची हुई है शमशाद अली जी की तरफ से, और लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है, और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है। गाने की बोल है, आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, चल तेरे शहर छोड़ कर जाना होगा। और गाना तो काफ़ी खूबसूरत है, तो चलिए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87894 18744।
6: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886987।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं शमशाद अली उत्तर प्रदेश से। अरे मैडम जी, पूरा गाना चला देते उसके बदले रिश्वत में चाय ले लेते, किसी को पता थोड़ी चल जाए, चाय भेजते। तो मैं बता दूं कि मैं रिश्वत नहीं लेती, मैं सभी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, चिड़िया उड़ी आकाश में और जा बैठी कश्मीर, क्या करूँ दोस्तों, आप लोगों से मिलने का तो दिल करता है मगर मिलने नहीं देती यह हमारी तकदीर। और सभी दोस्तों को राधे राधे बोलिएगा भारती मैम, तो सबको आपके तरफ से राधे राधे आपको भी। और मैसेज करने वाला सुनील यादव दुबई से।

0: में। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैं राम विलास गनवरिया उत्तर प्रदेश से जुड़ गया हूँ। मैम मुझे एक गाना सुनाना है, मेरा गाना प्ले नहीं हो रहा है, मेरा गाना आज प्ले कर दीजिएगा। तो बिल्कुल, और यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: कैसन बानी?
0: जी हम तो ठीक बानी, रुवा बताई रुवा कैसन बानी?
1: ठीक बानी हमारा।
0: ठीक बा,
1: ठीक बा, ठीक बा,
0: ठीक
1: बा, ठीक बा,
0: ठीक बा, ठीक बा,
1: ठीक
0: बा, ठीक बा,
1: ठीक बा, ठीक बा,
0: ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा,
1: ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा,
0: जी जी। तो रोज रोवा कॉल करे नहीं उठाए नहीं ना ऐसे की, और अभी एक हफ्ता पूजल ना रहा, अब पूछ चुकल बाबे तो बता सकते नहीं कौन सा गाना सुने। कौन सा सॉन्ग?
1: मस्ती मस्ती हिंदी गाना नहीं
0: जी? हाँ
1: वो भी बजा दी।
0: और गाना क्यों के सुना हूँ के बा?
1: हाँ
0: सब कुछ
1: जितना
0: लोग। अच्छा जी, तो चलिए गाना प्ले करते नहीं।
1: ठीक
0: है, एंजॉय करी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

अभी हम लोग सुन रहे थे रेशमा जी की तरफ से काफी खूबसूरत सा सॉन्ग मस्ती मस्ती, और यहाँ पे उनकी तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू भारती मैम गाना बजाने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहा है कि सुनील यादव जी की मैसेज पढ़ने के लिए धन्यवाद मनोरमा जी, और मस्ती मस्ती फेवरेट सॉन्ग मेरा मैडम जी। तो क्या बात है, आपको गाना अच्छा लग रहा है और आपका फेवरेट सॉन्ग भी है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है नमस्ते मनोरमा मैम, क्या हाल है मैम, और भारती मैम हम लोग ठीक हैं। तो मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी। तो चलिए आज आपकी तरफ से पता चल गया आप ठीक हैं और आपने मैसेज किया। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती मैडम जी, हम जितेंद्र सिवान जिला से और हम भी आपके प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, कल हमारा फरमाइश नहीं चला, कृपया चलवा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आज आपके गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी क्योंकि आज आपका एक हफ्ता पूरा होता है और ज़रूर पूरी की जाएगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि उमाकांत पल मिर्जापुर यूपी से मुझे गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और लिख रहे हैं मुझे भोजपुरी सॉन्ग सुनना है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि जो हमारा था हमसे छूट गया, उसने वार किया ऐसा बेवफाई का, दिल कहीं कई हिस्सों में टूट गया। भारती जी नमस्कार, रेशमा जी की सुपर सॉन्ग दिलीप राम। और लिख रहे हैं हम तेरी दुनिया से बड़ी दूर चले जाएंगे, टूटा है दिल इस कदर अब फिर किसी से ना दिल लगाएंगे। और दिलीप जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है। और यहाँ पे सन्यासी रंजन जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं नमस्कार भारती मैडम जी, हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमारी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो जी बिल्कुल आपकी हाजिरी लग चुकी है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि MD सलाम, सहरसा से सलमान सहरसा से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि मुझे एक गाना सुनना है और भारती जी प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। और यहाँ गाने की फरमाइश जो कि लिंक के माध्यम से पहुँची हुई है और भोजपुरी गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है हंस के बुलल का, तो काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए इनके लिए गाने को प्ले करेंगे। और किसी की तरफ से एक भोजपुरी गाने की फरमाइश, गाना तो नहीं आया था, बस उनको भोजपुरी गाना सुनना था, तो वो भी इस गाने को एंजॉय कर लेंगे जिनको भोजपुरी गाना सुनना था।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: छोटी से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98

0: बावन 78 82 91 जी हाँ 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96 जी हाँ 7277166596। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती जी, मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा और मेरा भी अटेंडेंस बना दीजिएगा। सिद्धार्थ पासवान बरौली गोपालगंज से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सलमान लिख रहे हैं थैंक यू भारती मैडम जी मेरा गाना प्ले की। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि जय श्री कृष्ण, कल जन्माष्टमी है भारती जी, शुभकामनाएं। और पूरी रिमझिम सुनने वाले को कह देना। और मैं नया पारा विरई से प्रमोद कुमार साहू लीला साहू, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को और आपको भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास लिख रहा है कि दिल बनाने वाले दिल कांच का बनाया होता, दिल बनाने वाले दिल कांच का बनाया होता, दिल तोड़ने वाले के हाथ में जख्म तो आया होता है, उस जख्म को देखकर जितेंद्र जख्मी का याद तो आया होता। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जितेंद्र जो कि सिवान ज़िला के हैं और लिख रहे हैं आपके प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ और कल हमारा फरमाइश नहीं चला था, कृपया आज चलवा दीजिए। तो जी बिल्कुल, आज आपकी फरमाइश को पूरी की जाएगी। और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: हाजी मैम जी, नमस्कार, आपका नाम हम जितेंद्र सिवान जिला से, आपके प्रोग्राम में हमको भी एक गाना सुनना है और जिसका लिंक भेज दिया हूँ। ये गाना सबसे पहले आपको आज रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को, तो हमारा भी आप फरमाइश चलवा दीजिएगा, धन्यवाद। ओह
2: नफनकार तुझसा तेरे बाद आया, नफनकार तुझसा

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी प्यारा सा सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी, तो बड़ा याद आया। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि यहाँ पे फीडबैक मैसेज पहुँच गया है जितेंद्र शिवान से, तो चलिए इनका मैसेज सुनते हैं।
1: नमस्कार मैडम जी, हमारा फरमाइश चला एकदम बूढ़ी, आज दोनों आदमी एकदम मिल के सुन रहे हैं। अब फिलहाल बारिश भी बड़ा जोर से हो रहा है, ठीक है, एकदम चलाते रहिए। आज रेडियो जिम जी 90.4 आज जो कहता है आज सुनो दिल से।
0: और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश थी और फीडबैक मैसेज भी काफ़ी बढ़िया पहुंचा हुआ है। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं उस्मान अंसारी जी की, शुक्रिया गाना बजाने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, नमस्ते नमस्कार, मेरा भी उपस्थिति कर दीजिए और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए और मैं भी जुड़ गया हूँ जितेंद्र बरौली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से, और हमने भी किसी से प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, चाहत बन गई सूरत उनकी, तब उसने कहा हमने तो सिर्फ मजाक किया था। दीपक भाई के लिए, सन्यासी रंजन जी के लिए, और रंजन जी ज़्यादा ध्यान से लाइन को सुनिएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ जलंधर पंजाब से, गोविंद कुमार, और मेरे भी आज गाना बजा दीजिएगा। और मैडम जी का फरमाइश कर सकते हैं तो जी बिल्कुल, आज अपने गाने की फरमाइश कर सकते हैं और आपकी गाने को प्ले कर दिया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं हेलो भारती जी, गुड मॉर्निंग, और का हाल बा? तो मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और अनिल जी मैसेज करने वाले हैं। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हाय दी, नमस्ते, का हाल बा भारती दी, और मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, और नाइस सॉन्ग, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है मेरे पास जो कि लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, न्यायपारे विरे जिला बालो छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार जी जुड़े हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं, आपके गाने को मैं सोमवार को प्ले करती हूं और उसी दिन प्ले करूंगी। और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कृष्ण शर्मा अहमदाबाद से और गुजरात से जुड़े हैं, तो मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। जी बिल्कुल, आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो कि उससे पहले यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है, और लिख रहे हैं रामविलास गनवरिया से उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, और मेरा भी गाना सुनवा दीजिएगा। और गाने की बोल पहुँची हुई है और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है, और गाने की बोल है दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, और मूवी है चांद के पार चलो। तो गाना प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097-06-575।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और समीर आलम जंगलिया से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की बोल है, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, और डेडिकेट है आपको और सुनने वाले सभी को। तो काफ़ी खूबसूरत गाना इनकी तरफ से पहुंचा हुआ है, तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे।
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। अभी हम लोग काफ़ी खूबसूरत सा गाना सुन रहे थे, ढोलना सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि तू ही हो एक मेरे दिल को बस यहीं करार रहा, और लौट आओ एक दिन तुम आखिरी सांस तक बस तेरे ही इंतजार रहा। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप जी, तो काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है इनकी तरफ से, और लिख रहे हैं कि याद आए कभी तो आंखें बंद ना करना, हम चले जाए तो गम ना करना, यह जरूरी नहीं हर रिश्ते का कोई नाम हो, पर दोस्ती का एहसास दिल से कम ना करना। क्या बात है, काफ़ी खूबसूरत लाइन है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम नमस्ते, रवि कुमार तिवारी दिल्ली से, और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा और फरमाइश भेज रहा हूँ, बुझा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास, लिख रहा है, हेलो मैडम जी, दीपक मुंबई से, और मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू मेरा गाना प्ले की इसके लिए। और यहाँ पे हमारे पास धनेश जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी, जितेंद्र सिवान वाले उर्फ आनंद मोहन हमारे बीच आए थे, उनको दिल से धन्यवाद। और भारती जी, आज मेरा भी एक हफ्ता हो चुका है, और मेरी भी गाने की फरमाइश पूरी कर दीजिएगा, अगर इजाज़त हो तो भेज दूँ तो जी बिल्कुल, आज आपके गाने की फरमाइश पूरी कर दी जाएगी। और लिख रहे हैं भारती जी, 3 बजे के बाद बजाना, तो जी बिल्कुल आपके गाने को 3 बजे के बाद भी प्ले कर देंगे, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, पर लेंगे नहीं क्योंकि इनका अभी एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जलंधर पंजाब से गोविंद कुमार जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं, मुझे भी गाना सुनना है और अंदाज फिल्म का गाना बजा दीजिएगा मैडम जी। और मोहरौली बारिश हो रहा है मैडम जी जलंधर में अभी, तो अभी बारिश के गाना बजा दीजिएगा, अभी बारिश का गाना। तो चलिए आपके लिए बारिश का सॉन्ग ही प्ले कर देते हैं और एंजॉय करते हैं। बारिश वाला सॉन्ग।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफी खूबसूरत सा सॉन्ग गोविंद कुमार जी की तरफ से, और गाना बरसात वाली थी और उन्हीं के लिए प्ले किया गया था। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं भारती मैम, मेरा भी गाना 3 बजे के बाद बजाना। तो जी बिल्कुल, चलिए आपके लिए है, आपका गाना 3 बजे के बाद ही प्ले कर देंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं हाय मैम, हमको गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है, आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और रिहान खान मैसेज करने वाले हैं जमशेदपुर से और रहने वाले हैं झारखंड के, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं संजय यादव दुबई से जी की, थम के बरस सुपर सॉन्ग मैम। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो, और आप बता दें कि आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका, तो मैं आपको जान सकूँ और आपके भी मैसेज को शामिल कर सकूं। वैसे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जुड़े हैं, लिख रहे हैं कि पप्पू डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे बीमारी का इलाज कर सकते हैं? डॉक्टर, हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या परेशानी है? पप्पू, जब भी मैं चाय पीता हूँ मेरी दाई आँख में बहुत तेज़ दर्द होता है। डॉक्टर, गहरी सोच के बाद अगली बार से चाय पीने से पहले कप से चम्मच बाहर निकाल लेना। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हैं शमशाद जी फिर से। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं हेलो भारती जी, हम मोहम्मद अंसारी जयपुर राजस्थान से, और मुझे गाना सुनना है। और गाने की बोल पहुँची हुई है और काफ़ी खूबसूरत गाना है, और गाने की बोल है दिल ले गया परदेसी कोई सोचना था, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:04 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, गाना प्ले की इसके लिए। और मैसेज करने वाले हैं गोविंद कुमार जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है रेहान खान जी की तरफ से, जो कि गाना सुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, गाना प्ले होगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नाइस सॉन्ग दिल ले गया परदेसी, मगर यह भी सोचना चाहिए कि आटा चावल थोड़ी है जो तुमने दिल दे दिया उसे, परदेसी को न ले जाने, कभी नहीं ले जाने देना और परदेसी को दिल। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि सन्यासी रंजन जी लिख रहे हैं, अनार का जूस पीने गया था ताकि खून बढ़ जाए, 80 रुपये गिलास सुनकर 1 kg खून सूख गया। और लिख रहे हैं, जम के बरस ना तो धान सूख जाए। और लिख रहे हैं, हमारे मैसेज लागता खोइंचा में बांध बंधा गिल बात ना ऐसा कोनो बात नहीं खेल और मैसेज खोइचा में नहीं खे बंधाइल। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है धनेश जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं भारती जी जितेंद्र सिवान वाले हमारा मैसेज उनके कानों तक नहीं जा रहा है क्या और जा रहा है तो एक आनंद मोहन की आवाज़ में एक वॉइस बढ़िया सा बजाए और सुनाए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं करिश्मा लिख रहे हैं कि करिश्मा के का हाल बदी जरूर बताएं तो करिश्मा जी तो ठीक हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है और इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रही हैं कि नमस्ते भारती जी मैं तिभत्ता से उषा जुड़ चुकी हूँ और मुझे भी गाना सुनना है और कैसी हैं आप तो मैं ठीक हूँ आप बताइए आप कैसी हैं। और गाने की बोल है मिलो मिले हो तुम हमको बड़े नसीब से और सुनाना चाहते हैं आपको और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को सुनवा दीजिएगा भारती जी। तो जी चलिए आपके गाने को बिना देरी किए प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोग सुन रहे थे उषा जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग और गाने की बोल थी, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, और इनकी तरफ से थैंक यू का मैसेज पहुंच चुका है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं विक्रम जितेंद्र सेठ, मुंबई से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है फूल तुम्हें भेजा है खत में, और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे राष्ट्रीय दोपहर समाचार की तरफ। और जिनके भी गाने की फरमाइश पूरी नहीं की है उनकी गाने की फरमाइश दोपहर समाचार के बाद पूरी की जाएगी। तब तक आप सभी इस गाने को एंजॉय करते रहिए।

0: भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रॉन्कन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
0: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रॉन्कन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

0: रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर।
1: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
2: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैसडैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
4: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रूपये है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
1: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
5: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत
0: और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक अज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
5: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
6: रांची में गेतलसू डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्ण रेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के शांत से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा और किदांबी श्रीकांत श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। और मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल के बारे में रेडियो रिमझिम के माध्यम से जान सकते हैं, रेडियो रिमझिम की वेबसाइट से, और लाइक कमेंट कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि कैसा है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज काफ़ी सारे पहुँच चुके हैं अभी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं शमसाद अली उत्तर प्रदेश से, लफ्जों में जादू अदा में कमाल रखते हैं, हर सुनने वाले का वो दिल जान से ख्याल रखते हैं। भारती जी माइक्रोफोन के ऊपर पार से जो रूबरू होते हैं वो आरजे रिमझिम वाले हर दिल में अपना मुकाम रखते हैं। सन्यासी रंजन जी आजकल किधर हैं? और ये बात तो सन्यासी रंजन जी ही बता सकते हैं। और आपकी इस खूबसूरत लाइन के लिए दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थम के बरस जम के बरस, और मैसेज करने वाले हैं मोहम्मद निशार और नौशाद। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से लाजवाब सॉन्ग। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास दिलीप राम जी की तरफ से, लिख रहे हैं भारती जी चलिए खाना खाने के लिए। तो जी मेरा तो भोजन हो गया है, मैं लंच करके अभी आ रही हूँ आप सभी के बीच फिर से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास, लिख रहे हैं हेलो नमस्ते अजीत कुमार निषाद, मैं यूपी देवरिया भटनी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी भी गाने की फरमाइश है। तो बहुत बहुत स्वागत है, आपकी भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और उससे पहले यहाँ हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, विनोद कुमार चौहान मुंबई से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है, और गाने की बोल पहुँची हुई है, और गाने की बोल है वेलकम फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनना है इनको, तो प्लीज़ सुना दीजिएगा, लिख रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग वेलकम का टाइटल सॉन्ग, और यहाँ पे हमारे पास फीडबैक मैसेज पहुँच चुका है। तो
1: हाँ मैम, थैंक यू, मैं अपना गाना सुन रहा हूँ।
0: और इनकी तरफ से फीडबैक मैसेज पहुंच गया है। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, मैं दिनेश कुमार अहमदाबाद से और जुड़ा हूँ, मुझे भी एक गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं भारती दी हमें एक गाना सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और विनय कुमार जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं नमस्कार मैडम जी, और मेरा गाना सुना दीजिएगा। और निकेश कुमार चौहान पूर्वी चंपारण से जुड़े हुए हैं, पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं श्याम सुंदर जी को, सोना लाल जी को और संदीप जी को, मिथिलेश जी को और दिनेश जी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, गाने की बोल है तू दीवानी हो ता आजा, और काफ़ी खूबसूरत गाना है। तो बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 या 9956 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, क्या हाल है, मुझे सॉन्ग सुनना है, सुना दीजिएगा। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, मैं भूमि मनबूत पर सोनी से, तो बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं उत्तम सोनी जी, वाओ सुपर सॉन्ग। और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अली UP 21 मुरादाबाद, लिख रहे हैं कि बीवी पति के साथ मंदिर गई और मन्नत का धागा बांध के मन्नत मांगी, फिर हड़बड़ाई में धागा खोल दिया। पति, क्या हुआ, धागा क्यों खोल दिया? पत्नी, मैंने मन्नत मांगी थी कि आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएं, फिर अचानक ख्याल आया कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है शमशाद जी की तरफ से, लाया कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है शमशाद जी की तरफ से। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि MD सदाम मुंबई से जुड़ गया हूँ और मुझे भी गाना सुनना है। और गाने की बोल पहुँची हुई है, गाने की बोल है दिल कहे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और फिल्म का नाम है कौन है जो सपनों में आए, और प्लीज़ मैम सुना दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग, और यहाँ पे वॉइस मैसेज पहुँच चुका है जो कि फीडबैक के मैसेज है। तो चलिए प्ले करते हैं और जानते हैं क्या है इनकी मैसेज।
1: मैम नमस्कार। सॉरी मैम, मैं नौशाद लालगंज बयाजी रोड सनारपट्टी से बोल रहा हूँ। मेरा एक गाना है सावन फिल्म से, जान को मेरी छीन लिया है।
0: तो अभी इनके गाने को प्ले किया गया था और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है निरहुआ रिक्शा वाला, और गाना सुना दीजिएगा मैम तो जी आपके गाने को भी पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि वाह सुपर सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ शमशाद जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ था, और यहाँ उत्तम सोनी जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं वाओ लाजवाब झकास सॉन्ग चल रहा है। और मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास राधे राधे मैडम जी, मैं देवराज कुमार रेशम नगर बगैया जिला गुंडा झारखंड से, और आज के प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगली फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है। कृष्णा शर्मा अहमदाबाद गुजरात से जुड़े हुए हैं, और साथ में जुड़े हैं शक्ति सिंह जी, और गाना सुनना चाहते हैं निकाह मूवी से, कोई भी सॉन्ग सुना दीजिएगा। मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, चलिए आपके गाने को प्ले करेंगे। और इनके साथ यहाँ फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है, फीडबैक नहीं तो शायद गाने की ही फरमाइश पहुंची हुई है, और साथ में लिखे हुए भी हैं, तो चलिए पहले जान लेते हैं क्या लिखे हैं।
2: मैम कृष्णा शर्मा अहमदाबाद गुजरात से, निकाह मूवी का गीत सुना दीजिएगा। हमारे साथ शक्ति सिंह भी है सुनने के लिए, सुना दीजिएगा।
0: तो चलिए आपके लिए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिस कर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिस कर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और हमारे स्टूडियो के घड़ी में 3:12 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जिंदगी में कभी किसी से प्यार मत करना और हो जाए तो कभी इनकार मत करना। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे किसी किस्मत पर खोने मत देना। हेलो भारती जी, मैम नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश मेहताब है और मैं इजरा नवादा से फिर से जुड़ गया हूँ, और चंपारण संग्रामपुर से, और मेरे भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और लिख रहे हैं कर्नाटक से सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आज बीवी की बनाई पनीर की सब्जी में पनीर ढूंढने पर भी नहीं मिला, हिम्मत करके पूछा तो बोली चुपचाप खा लो, सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और ज़रा आप अपना नाम बता देते तो मुझे भी पता चल जाता आप कौन हैं और कहां से हैं, ये भी बता देते तो बहुत अच्छा होता। और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, राधे राधे, मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, कुछ भेजूं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी चौहान से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास रवि जी की तरफ से, लिख रहे हैं कि पत्नी, जब मैं गाने लगती हूँ तो आप गैलरी में क्यों चले जाते हैं? पति, ताकि लोगों को भ्रम ना हो कि मैं तुम्हारा गला दबा रहा हूँ। और मैसेज करने वाले हैं रवि जी, और यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार लाइंस पहुंची हुई हैं दोनों की तरफ से। और यहाँ पे मैसेज करने वाले हैं रवि जी, और यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार लाइंस पहुंची हुई हैं दोनों की तरफ से। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि अब तो बस उनकी तस्वीरें हमारी जिंदगी का सहारा है। जब जब कहीं नाम सुनते हैं उनका, मत पूछो कैसे वो पल हमने गुजारा है। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ फिर से जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और इसी के साथ जो कि हमारे पास फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि हाय हेलो नमस्ते अजीत कुमार निषाद, और यूपी देवरिया से भटनी से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। लिख रहे हैं साथ ही मूवी से कोई भी सॉन्ग सुना दीजिएगा, और साथ ही मूवी का ही सॉन्ग सुनना है। तो चलिए आपके लिए साथ ही मूवी का गाना प्ले करते हैं, और गाने की बोल है हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया। तो एंजॉय कीजिए अपने गाने को सब।

तो अभी हम लोग काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग याद आया। और मैसेज करने वाले हैं रासो लाल सिंह, लखनऊ यूपी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई को धन्यवाद, अच्छा गाना बा मैम। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी दुबई से, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, राम अयोध्या विलेज लवन थाना तरैया छपरा बिहार से लिख रहा हूँ, और पहली बार जुड़ा हूँ आपसे, और मुझे भी गाना सुनना है राधे श्याम रसिया का। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले करेंगे, उससे पहले जिनकी फरमाइश थोड़ा बहुत पहुंची हुई है उनके गाने को थोड़ा प्ले कर लूं। और यहाँ पे पहुंचा हुआ है मैसेज जो कि लिख रहा है डीपी भारती।

0: मेरी पहचानिए तो आपकी तो डीपी में कुछ है नहीं जो मैं आपको पहचानूं, और प्लीज़ नाम नाम ही बता दे अपना, अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगली फरमाइश पहुँची हुई है रवि जी की तरफ से, और गाने की लिंक पहुँची हुई है, और गाने की जो कि बोल है, गैरों के आपन बनावे वाली अखिया, और अमित उपाध्याय जी का सॉन्ग है। तो चलिए आपके लिए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: ये आँख से मोहब्बत की शुरुआत हो।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे रवि जी की तरफ से काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग और गाने काफ़ी सभी को पसंद आई और यहाँ पे लिख रहे हैं रवि जी की गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि वाह क्या सॉन्ग बजाया भारती जी, मज़ा आ गया, बहुत शुक्रिया फरमाइश करने वाले भाई को। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहा है कि हेलो भारती जी नमस्कार, कल का मेरा गाना नहीं बजा है और कृपया करके आज बजा दीजिए और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। और तो चलिए आपका भी गाना हम प्ले करेंगे, पर उससे पहले एक गाना और प्ले करूँगी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है लिख रहे हैं कि हाय मैम, हमको गाना सुनना है और रेहान खान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि गाने की बोल है तू ज़रूरी और जिद मूवी से सॉन्ग है, तो गाना इनका प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और शो है योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 88 91 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, हम भी शो से जुड़ गए हैं और लास्ट में सरफरोज अली, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी आप कब आए शो में, 12 बजे से मनोरमा जी शो को चला रही थी, आप कहाँ थे? तो जी मैं तो यहीं पर थी, शायद आप आवाज़ में कन्फ्यूज़ हो गए हैं। और 12 से 1 बजे तक मनोरमा जी थी, बीच में हम भी बोल रहे थे और वो भी बोल रही थी, अभी तक तो मैं फ़िलहाल मैं ही बैठी हूँ यहाँ और मनोरमा जी 1 बजे के बाद चली गई। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, पाजी यूपी 54 से जुड़े हैं, लिख रहे हैं कि बताने की बात नहीं पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपनाह है आपसे एक बार जताने दोगी क्या, कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर पड़ा है मेरे पास तुम लगाने दोगी क्या। ओहो, काफ़ी मीनिंगफुल लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और मैसेज किसके लिए है बता सके तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैडम जी सॉन्ग चला दीजिएगा। तो जी बिल्कुल आपके भी गाने को प्ले करूँगी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मोतिहारी से एमडी मीनू, मैडम कल गाना हमारा प्ले नहीं हुआ था, तो आपका गाना प्ले इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि गाना था देवी मैया से जुड़ा हुआ, इसीलिए प्ले नहीं किए थे और कोई भी भक्ति सॉन्ग मैं प्ले नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि धनेश जी का मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाने की बोल है, माई बाप घर के बाहर हो गए। और लिख रहे हैं कि मेरे साले जी का गाना प्ले करने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद आपका। तो चलिए बिना देरी के इनके भी गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: घर के बाहर हो गई भाई से पढ़ के अपन सार हो गई, माई बाप घर के बाहर हो गई, भाई से पढ़ के अपन सार हो

0: तो अभी धनेश जी की तरफ से सुन रहे थे काफ़ी लाजवाब सॉन्ग, और इनकी फरमाइश काफ़ी अलग ही होती है। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम हमारा गनवा ना बाजी का, भारती मैम कल आप बताई थी कि आपका गाना कल बजेगा, तो जी बिल्कुल आपके गाने को प्ले करूंगी और कोई भी गाना बजा दीजिएगा। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जिम 90.4 FM में। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है।
0: और कौन सा गाना सुनना है आपको?

बात ऐसी नहीं है, आप सबके भी कॉल लिया जाता है।

0: और गाना किसी को सुनवाना भी है। हिंदी सॉन्ग ही ना है
1: जी, जी।
0: तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिपजिम 91.4 FM में, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि धनेश जी की मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और गाना सुन के आनंद आ गया। और यह मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मुझे भी गाना सुनना है, और दिनेश कुमार अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं और गाने की बोल है डबल छोटी और खेसारी लाल जी का सॉन्ग है। तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रंजिम 91.4 FM में, और सो है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कोई भी गाना अपने मन पसंद से बजा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं मोहम्मद नौशाद और मोहम्मद सदाम जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए आप सभी के लिए एक गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि लिख रहे हैं नीलकमल की आवाज़ में, कोई भी गाना बजा दीजिएगा। तो आप भी इस गाने को सुन लीजिएगा और ये भी सुन लेंगे, और मैसेज करने वाले हैं मनीष कुमार गुप्ता अलमपुर सासाराम बिहार से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से नीलकमल जी की गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, जो गाना सुनना चाहते हैं। और चलिए आप सभी के लिए इस गाने को प्ले करते हुए आज लूंगी आप सभी से विदा। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852-78-82-91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से विदा लूंगी, और आप सभी के लिए नीलकमल की आवाज़ में ये प्यारा सा सॉन्ग प्ले करते हुए जा रही हूँ। और यहाँ सभी के पास से बाय बाय के मैसेज पहुँच चुके हैं, और लिख रहे हैं कि आप सभी को बाय बाय भारती जी, मनोरमा जी, और मैसेज करने वाले हैं इरशाद मास्टर जी। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सॉन्ग चलाने के लिए दिल से धन्यवाद आपका। और दिनेश कुमार जी मैसेज करने वाले हैं, और यहाँ सभी के साथ पास से बाय बाय के मैसेज आ चुके हैं, तो एक साथ सभी को बाय बाय। तो एंजॉय कीजिए आप सभी इस गाने को नीलकमल जी की आवाज़ में, प्यारा सा सॉन्ग।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
5: ऑलराइट।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-097-06-575।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710392 या 9765065।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: सलाम मैम। जी सलाम।
2: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी धन्यवाद कॉल उठा सकने का। ठीक मैम,
2: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी अच्छे हैं मैम। हमको हमारा नाम बता सकती हैं मैम?
2: जी शत्रु अली।
1: जी मैम,
2: गोपालगंज से।
1: जी मैम, गोपालगंज से रहने वाले हैं, आज तो बोल रहे हैं।
2: तो कौन सा गाना सुनना है आपको बता दीजिए।
1: आज हमको उससे भी अच्छा गाना सुनना है, देखेंगे वाला वैसा है कि नहीं। मैम एक नंबर वाला कॉल है ना?
2: आपका एक नंबर कॉल है, आज फर्स्ट बार में लग गया है।
1: हाँ, आज मैंने सफल हुआ, 2 महीने पहले से लगा रहे थे। जी मैम, आज तो मेरा फरमाइश है, ये गाना है तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना से डरे।
2: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सुनवाना है आपको, सभी आर्यों को, खास तौर को मनोरमा जी को, क्योंकि वो मेरा नहीं बजाती है गाना।
2: अच्छा, गाना नहीं बजाती है इसलिए
1: आज भी अच्छा फरमाइश कर रहा हूँ की आज तो बजा दे अच्छा समझे।
2: नहीं ऐसा नहीं है,
1: क्योंकि हम पुराने इसलिए हमको लगा लोग भूल जाते हैं।
2: नहीं नहीं, भूलते तो किसी को नहीं है।
1: आपका कोई सुनना था, बहुत ज्यादा देर तक बात किया इसी शो में। हाँ हेलो माई चेस्ट।
2: हाँ वो
1: रानी ऐसा का नाम था।
2: हाँ हाँ रानी।
1: जी मैम, तो आज कितने बजे बजेगा?
2: आज आपका तो मतलब शाम को बजेगा, नहीं तो अगर मनोरमा जी रिकॉर्ड करेंगे उनका कॉल बजेगा तो कल बजेगा शाम।
1: जी मैम, वाला जरूर चलाइएगा, पहले वाला जो फरमाइश किए हैं।
2: अच्छा जी, बिल्कुल चलाएंगे।
1: क्यों क्यों नहीं चलाए, आप लोग मानिए एक बार।
2: जी, उसको भी देख रहे हैं।
1: जी मैम, तो धन्यवाद बोलेंगे। और खाना वाना हो गया आपका?
2: हाँ हाँ, खाना हो गया है।
1: जी, और पानी का बोतल साथ में रखिए।
2: जी बिल्कुल, हम लोग रखते हैं।
1: आपको अभी से लेकर के मतलब योर वाइस चलाना हो ना, चलिए तो एडवांस धन्यवाद।
2: ओके, फिर गाना आपका प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: ओके मैम, बाय
2: बाय।

0: अगर पानी हो मंजिल खुद पे रहनुमा बनो, अगर पानी हो मंजिल खुद पे रहनुमा बनो, अक्सर वही लोग भटकते हैं जिनको सहारा नहीं मिलता। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं कमरान नसीब, विलेज पकड़ी सुल्तान, डिस्ट्रिक्ट सिवान, ठीक हूँ। इधर का मौसम कैसा है?
1: इधर का तो मौसम काफी सुहाना बना हुआ है।
0: अच्छा, इधर तो धूप है, हल्का बारिश हुआ था दिल्ली में, अब धूप हो गया।
1: अच्छा,
0: घर परिवार सब बंद?
1: सब कुछ ठीक है।
0: कल तो मेरा कॉल लग गया था यूरोप सिचुएशन भी, क्या बहुत दिन हो गया तो मैंने कर दिया कॉल। आज मैं बोला कि चलो मैं चॉइस में कॉल कर लूँ, अच्छा लेट हो गया।
1: नहीं, अच्छी है टाइमिंग आपका।
0: सब तो सही है, और बाकी सब ठीक ठाक है, एकदम चल रहा है बढ़िया।
1: सोनू
0: भाई वाला आपका शो चलता है?
1: हाँ चलता है।
0: अच्छा चलता है ना, अपना फोन नहीं पाते है ना, और तो हमको आज सुना दीजिए।
1: बता दीजिए
0: कौन सा गाना सुनो आज। हाँ आज हमको सुना दीजिए, मैं गा के सुनाता हूँ, ठीक है?
1: ओके।

0: तेरे लिए ये वाला सॉन्ग सुनना है।
1: ओके, और गाना किसी को सुनाना है?
0: सबसे पहले तो आपको आयशा सबनम सिद्दीकी सबीना सबा सिद्दीकी सेना हाजरा रोशनी कुमारी निशा सुकुनवा शाहजहाँ सजदा अंसारी और रखुआ दिलीपुरा भास्कर बरजू मुकेश उत्तम सोनी विजेंदर और अहमद अली अख्तारी गुड़िया परवीन हनीमता जी आयशा की जितने लोग सुन रहे सबको सुना दीजिएगा। रेडियो रिंगिंग तो हमेशा नंबर वन रहता है, नंबर वन है क्योंकि रेडियो रिंगिंग के जो डायरेक्टर सर है वो भाई मत बोल मत आदमी
1: है।
0: रिंगिंग का जब मालिकर मत हो तो रिंगिंग मत ले रहेगा, हम उसके आरजे कैसे नहीं मस्त रहेंगे। ओके नमस्कार।
1: ओके नमस्कार। गाना प्ले कर रहे हैं।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Now pick your phone up.
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: रेडियो 90.4 FM। जी क्या हाल चाल है?
10: ठीक है, आप बताएं।
9: जी हम सब भी ठीक हैं।
10: नहीं नहीं, ये नकबंदी वाला गाना भी सुनना है।
9: कौन?
10: नकबंदी, नकबंदी वाला।
9: अच्छा अच्छा, नकबंदी।
10: जी जी।
9: और गाना किसी को सुनाना भी है?
10: अमन अशीर पौ राधे तलरा।
9: और गाना तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हो रहा है सब में।
1: थैंक यू मैडम जी, हमको गाना सुना दीजिए।
0: जी बिल्कुल सुनाएंगे, नाम बता दीजिए।
1: ये दुनिया ये महफिल मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: बस जी जितना ये फिल्म सुनते हैं गोपालगंज या इंडिया में जितने भी हमारे दो साथी जो है सब किसी को सुनाना है। फिल्म के जितने प्रेमी आदमी है उन सबको।
0: तो आप अपना नाम भी बता दीजिए ताकि लोगों को पता चले।
1: मेरा नाम अरुण है। ठीक है
0: ओके, फिर गाना आपका प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
1: मैडम जी ये गाना कब से कब तक ये मतलब सुनने को मिल जाता है?
0: ये शाम को बजता है 5 से 7 के बीच।
1: सुबह में चांस है क्या?
0: हाँ सुबह में बजता है, सेम रिपीट चलता है 9 से 11
1: जी,
0: और शाम को 5।

0: नहीं।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87-894-18744।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत का रेडियो रेंजन 3.4 FM में।
11: जी, योगेश जांगरे में तरह 36 घंटे।
12: जी, क्या हाल चाल है आपका?
11: बढ़िया है। अच्छा,
12: तो और बताइए क्या हो रहा है अभी?
11: अभी तो फिलहाल घर ही में है।
12: तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
11: फिल्म संजोग से सुनवा दीजिए, यशोदा का नंद लाला।
12: जी जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
11: कुछ मित्र है, श्रीपाल गोयल जी है, लोकेन वर्मा जी है, दिलीप पहुजा जी है, रोशन देवांगन जी है और सभी साथी।
12: जी, तो गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंचन 90.4।
11: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
12: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते
1: नमस्ते,
0: गोपाल ओझा बोल रहा हूँ जिला गुना।
1: जी तो कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, अभी तो घर पर है क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है अभी तो।
1: अच्छा जी,
0: और क्या,
1: जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है?
0: हाँ तैयारी चल रही है।
1: चलिए बढ़िया है, तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
0: वो कृष्ण ने भगवान का सुनवा दी जो दिया, सोमती मैया से बोले नंदलाल राधा क्यों गोरी में खाला जी वाला।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ डेडी कह रहे हमारे सुनील साहू जी हैं, ज्योति साहू जी हैं मकसूदनगढ़ से, और जीतेंद्र धागड़ जी हैं, और आपके लिए भी है डेडी कह गाना।
1: ओके तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए। ठीक
0: है जी।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करे 87894-18744।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
11: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
10: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
11: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
10: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
11: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
10: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते दी, और राधे राधे।
15: नमस्ते
14: राधे राधे, कैसी हैं?
15: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए रानी जी कैसी हैं?
14: बिल्कुल मस्त हूँ, और पहचानने के लिए दिल से शुक्रिया आपको। आपको लग रहा है कि अब बड़ी देर नहीं होगा पहचानने में?
15: नहीं, आप तो बिल्कुल देर लगेगा।
14: और बताए, नाश्ता वास्ता कराई है कि नहीं?
15: जी हम नाश्ता वास्ता कराए हैं
14: जी। और नाश्ता में क्या हुआ था?
15: रोड रोटी सब है इस समय।
14: अच्छा रोटी पसंद है।
15: हाँ हेलो बोलिए।
14: हाँ बोलिए। और मौसम कैसा है दी?
15: मौसम तो काफी सुहाना बना हुआ है, स्वच्छ फ्रेश है और हल्की
14: धूप है और जो हवाएं चल रही है बड़ी मस्त चल रही है।
15: जी जी बिल्कुल ठंडा ठंडा।
14: और हम लोग सुबह में खेत में गए थे तो इतना अच्छा लग रहा था, धान में इतना पानी लग गया था और सुबह सुबह आज खेत में खादर छिटके आई वन।
15: बहुत अच्छा लगता है घूमने पे।
14: जी जी पापा गए थे ना छिटने तो हम भी गए थे तो एक खेत में वो छिट रहे थे और एक खेत में मैं। हम लोग कर लेते हैं लोग खेती की काम।
15: नहीं सब करना चाहिए, सब सीखना चाहिए, कब क्या करते हो।
14: और आजकल में थोड़ी सी मुझे एक मिनट की भी टाइम नहीं मिलता था और आज मुझे पहली बार मोबाइल दो बार आपसे मौका करने मिल गया बात करने के लिए। जी और आज पापा नहीं गए हैं घर पर हैं तो आज मेरी सिस्टर कॉल कर रही थी मगिन लाग नहीं रही थी।
15: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
14: जी और आज मुझे फिर से एक हिंदी सॉन्ग सुनना है, बजा दीजिए।
15: बता दीजिए।
14: जी मूवी के नाम है जोश और उसमें गाना है हारे हारे हारे हारे देश हारे।
15: अच्छा जी और गाना बहुत ही खूबसूरत है, हम भी सुने हुए हैं।
14: जी और ये गाना का हम लोग जितनी तारीफ करें बहुत करेगा कि भीतर से कम पड़ जाए।
15: तो गाना किसी को सुनाना भी है?
14: जी जी सबसे पहले आपको और शो के तो होस्ट आप हैं तो आपको तो सुनाना बनता है ना। और फिलहाल लाइव शो कर रहे हैं सोनू सर, उनको भी मुरमना दी को भी और दिव्या दी को भी और सोनी दी को भी और जितने रेडियो दोस्त हैं और कल का कमरान जी भी कॉल किए थे आपकी शो में और अच्छा है वो भी आपकी चैनल के पुराना लिसनर हैं और बहुत सीधा सा बात करते हैं
15: तो मैं आपको मिस कर रहे हैं।
14: और मैंने सुन रही थी बाकी हुआ था क्या जब बड़ा फोन मेरे पास आया तो मैं जब आपकी रेडियो रिमझिम को व्हाट्सएप वाला को व्हाट्सएप बनाई तब फोन हाथ से चला गया तो मैंने बोला कि अब मैं किस तरफ आप लोग के जवाब दूं, बाकी व्हाट्सएप बन चुका है और होगा मोबाइल से जरूर जुड़ूंगी अब। जी जी और आगे भी कॉल लीजिए, आगे भी आज मौसम बहुत प्यारा है और उन सभी को रेडियो दोस्तों को मेरे जितने मेरे से जान पहचान है उन सभी को रानी की तरफ से।
15: ओके फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
14: जी बाय दी।
15: बाय।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैम, हम रेडियो रिमझिम बहुत सुनते हैं हम लोग।
0: अच्छा जी, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: हमारा जिया नाम है, जिया यादव।
0: कहाँ से हैं आप जिया जी?
1: गोपालगंज में रेडियो रिमझिम।
0: हाँ हाँ,
1: वहीं से।
0: और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है कबो कबो प्यार में बिछड़ना जरूरी है।
0: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ, फैमिली में है सबके घर का।
0: जी जी, और सब कोई ठीक है ना फैमिली में?
1: हाँ सब।
0: ओके, तो फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
10: जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कॉल लेने के लिए। हम 10:59 से लेके अभी टाइम क्या हो रहा है, 10:11:37 हो गया, अब जाके लगी है।
11: अच्छा,
10: और भाती जी का हाल चल रहा?
11: हमारे तो ठीक बात हुआ, बताए रहुआ कई सुनवाई
10: बहुत जैसे लोग आवाज चाना टोन बहुत से हम गए आवाज चाना टोन तो समझे कि दोनों तरफ घर बराबर बस कहे कि अपने के बोलिया बहुत मीठ नीक लगे ला ना और काम करत रही आगे बढ़त रही ये ऊपर वाला से काम ना था। पहले पहले जो इंसान काम पर जाला उसका थोड़ा दिक्कत होती करेला, बाद में धीरे धीरे सब कुछ।
11: हेलो
10: जी, बोला जाए
11: तो बता दे कौन सा गाना सुने।
10: गाना तो सुनने पड़ा जाए, बाकी आप बताए पहले मौसम कैसा होगा
11: यहाँ के। तो मौसम काफी सब सुहाना बनल हुए, हल्का हल्का हवा चलता हुए और ठंडा हवा बा और धूप भी हल्का हल्का निकल।
10: लेकिन सवेरे तो यहाँ दिल्ली में थोड़ा बारिश हो गई, चारों तरफ से काली बदरी सही जगह पे बारिश आज होने की संभावना रुक रुक के बाद
11: अच्छा।
10: तो यही से कौन है कि उन्हें तो मौसम पूछ लिया का है कि उन्होंने बारिश बहुत जरूरी नहीं बात ए सी में बोलता है
11: बढ़िया मौसम बावे
10: तो मान लेने की सबके होके ए सी होके चाहिए मौसम के मजा लेवे के चाहिए
11: ना बिल्कुल लेवे के चाहिए।
10: तो मनोरमा जी नहीं आये का आज
11: बनी
10: तू सुन भाई आये ना रोल जी
11: फसल
10: होके बताए बताए इतना दिन देर से प्रतीक्षा करत करत और बुझा तक यहाँ तक लड्डू बना के रेडियो जिनके हमारा चढ़ावे के पड़े
11: अच्छा ऐसे कोनो बात नहीं है लगातार तो थोड़ा टाइम लगबे
10: करेला आज एक भोजपुरी गाना हम लेके आए बनी शादी होते जान भूल जाए बुका हो खेसारी लाल के
11: और गाना
10: रानी जी कुछ वो नाम ले रही थी ना वो मनोरमा जी का काफी नाम ले रही थी वो काफी देर तक आप लोगों को बात हुआ था ना मैं कल सुना था 15-12 मिनट कम से कम बात हुआ
11: 12 मिनट का कॉल केवल उनका ही था
10: हाँ इतनी लंबी यही यात्रा का खाने दूर अगर बोलिया वो उतनी का लगता है वहाँ का पुराना श्रोता लिसनर बानी वहाँ का लेकिन हमी का अनादर रेडियो पर बहुत कोई अच्छा से जाना था ना गाना में रानियों जी डेडिकेट बनी और सविता बबीता निशा गुड़िया सफक गजाला संतरा जी है अहमद भाई है रवि जी है और उसके बाद राम भाई जी है शमीर आलम जी है मुस्तफा आलम जी है आजाद भाई है रोजादीन भाई है और उपेंद्र भैया जी है उसके बाद सोनू भाई है और अफसर भाई है और बाकी जो सबकी सहेली छूटा तारे लोग सबको एक गाना में डेडिकेट बा बाकी अपने के नमस्कार बा
11: जी नमस्कार फिर गाना प्ले
10: कर गाना प्ले कर ही बाकी लोग इंतजार हुआ
11: सुनत रहे रेडियो 90.4
10: जी नमस्कार आपका दिन
11: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 95.4
0: FM। बानी
1: हम सभी बानी रहुआ बताई रहुआ कैसन बानी।
0: ठीक है बानी, देखिए हमार सार क्या कहता है।
1: क्या कहता
0: है? कहता है कि हम 15 मिनट से लागल बनी तो हमार ना लागल।
1: अच्छा,
0: लगाते लगाते लाग गए
1: रहुआ। ऐसा टाइम पे कहीं नहीं है, जैसे कॉल कटल है तैसे और आ गए वैसे लाग गए।
0: 90 बार कह दे तू 11 बजे ट्राई करता, हम ऑफ गए लगाई नहीं दो बेर से तीन बार लगाने तो लग गए।
1: तरीका मालूम बावे की ना लगावे
0: तरीका के मालूम थोड़े बा, ये दिलों के दिल से मेल बा। और कहो तो हम ना लगाए
1: दोनों बात ना कह दी, जैसे हम कॉल काटे नहीं हुए तू लगा लिया तो लग जाए कहीं।
0: यही होत रहे तो उन्हें सोनी मैम का कर कर लिखी होने का तो आप ही कर देते रहते यही और लड़े लगी। अब आप सब सुनाई ठीक बा?
1: हाँ हाँ, और ये सब कर ठीक है
0: बा। मनोरमा जी के
1: वो के ठीक बा,
0: दोनों नहीं आए बनी लोन।
1: हाँ हाँ, दोनों जानी आए बनी।
0: तो एक बार फरमाइशी बा,
1: बता दे
0: कि गा के भी सुनाई।
1: गा के सुनाई बताई मत।
0: अच्छा, तो जमाने के अनुसार गीत बा, आजकल के जो जमाना चला तो वही तो बा, बहुत बढ़िया सॉन्ग बा। एक कोशिश करम ढूंढ के बजाए के बढ़िया से, अमित उपाध्याय के हो ठीक बा। गाना ऐसे बा, माई बाप घर के बार हो गई, माई बाप घर के बार हो गई, भाई से बढ़ के अपन तार हो गई, कैसन कलयुग के पुतारे जन्म के कपूर बैंक ससुराल हो गई। ये बजा दम
1: गाना
0: की सुना के बाद, यही बाबू सुन ली। आज के जमाना में ऐसा जो करो तो ओकरा के मार्गदर्शन मिली, ऐसा ना करे के ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डिंग काटे मत
1: ना काटे
0: हम, मैंने ज्यादा से ज्यादा जो हम सही लागे वो काटे, ताकि जमाना के अनुसार मार्गदर्शन दिया जाता है। गाना बहुत सुंदर बा, थोड़ी सी सार के लव जो बा, सार के लव जो बा तो सार माने संसार भी होला। चलिए फिर ठीक बा, गाना सुना दू।
1: ठीक बायो बात कह लेता बैकुंठ ससुराल हो गई।
0: हाँ, बैकुंठ ससुराल हो गई। हाँ, बहुत बढ़िया गाना बा, काटे मत।
1: जी जी बिल्कुल,
0: नीमन से सुना है चाहे से पूरा हम गाना सुनले ना बनी है, राते सुन नहीं ऐसे तो गाना तो पुराना है, लेकिन रात हम सुन ले बनी उतना ढंग से याद नहीं थे भइल, पूरा काम में आदमी बिजी रहेला तो ढंग से गा ना पावेला, बस को टेंशन रहेला। हाँ, तो ऐसे तनी नीमन से ढूंढ के बेशक अगला हफ्ता पे चलाएं, लेकिन गाना ये चलाएं।
1: गाना प्ले करता नहीं, सुनत रही रेडियो 95.4।
0: नाम ना पूछे हम
1: धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
0: हाँ, चलिए ठीक है, सुना दे।
1: ओके,
2: भाई से बढ़ के अपन सारा।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सा
10: BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.

0: और सब बताइए, गोपालगंज का मौसम कहा?
1: गोपालगंज में तो अभी मौसम सुहाना बना हुआ है, हवा खूब अच्छा चल रहा है।
0: इधर भी हवा तेज चल रहा है, धूप भी नहीं निकला है। इधर खाना वाना खा कर आए हैं कि नहीं?
1: आए हैं।
0: और सब बताइए।
1: और सब ठीक है। तो करिश्मा जी का है?
0: करिश्मा जी अभी सो रही है।
1: छुआ है?
0: तबियत खराब है ना, बुखार खा
1: हो जाता है। हाँ, मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम असर दिख रहा है थोड़ा बच के।
0: सोई है करिश्मा जी, तबियत उसका थोड़ा सही नहीं हो रहा है ना।
1: तो गाना किसी को सुनाना भी है?
0: गाना डेडिकेट करना चाहते हैं सबसे पहले आपको, मनोरमा दीदी को, सोनी दीदी को, दिव्या दीदी को, और पूरा रेडियो रिमझिम को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: जी जी, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
0: ठीक है, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, क्या हाल चाल है करिश्मा जी?
1: ठीक बा, आपका कहे?
0: हम योग ठीक बानी सर, लगातार और तो तबियत खराब बा।
1: हाँ,
0: तो मौसम थोड़ा बच के रही, कि मौसम चेंज होता है तो तबियत बहुत खराब हुई।
1: मौसम में तो बच के रहता है बानी सर। खाना वाना हो गया?
0: हाँ, खाना हो गया।
1: मनोरमा दीदी क्या बनी?
0: मनोरमा दीदी यही दीवानी हूँ की अपना काम ले बानी।
1: हाँ
0: हाँ चलिए, बता दी रो कौन सा गाना सुने?
1: गाना कौन सा के सुना दी?
0: गाना की बोल बता दी।
1: कौन भी बजा दी?
0: कौन भी?
1: हाँ,
0: आज रोवा ना बताए?
1: ना, आज रघुआ अपना पसंद बजा दी।
0: और गाना क्योंकि सुनाएंगी?
1: हाँ, सबसे पहले रघुआ के, मनोरमा दीदी के, सोने दीदी के, जितना सुनते हैं लोग हैं लड़के, हम सुने, गणेश जी सुनी है, दिव्या दीदी बनी सुने।
0: चलिए ठीक
1: बात, अपन ख्याल रखी रघु तबियत खराब रहा है।
0: ना, हम ठीक बानी
1: अब। सोच रहा एक बार रघुआ तो ठीक से रहा हूँ। हाँ, ये कौन सोच रहा है? खाली जुड़ जाए के बाटे
0: ना, फिर भी नहीं चला के वही तबियत खराब थोड़ी रखेंगे। चलिए ठीक बा, आराम करी तब हम गाना प्ले करते।
1: ठीक,
0: सुनते हैं रेडियो 90.4 FM।
1: बाय।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: नमस्कार मैडम
9: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
8: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं, चंडीगढ़।
9: हाँ जी, क्या हालचाल है?
8: बढ़िया।
9: चलिए, बढ़िया होना चाहिए। और बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
8: फिल्म जानवर का सुना दीजिए।
9: गाने की बोल बता दीजिए।
8: मेरे कौन सा गाना है वही सुनवा दीजिए, कोई भी गाना सुनवा दीजिए जानवर का।
9: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
8: हाँ, रेडियो रंजन सोता सुनेंगे, सारे आदमी जितना सुनते हैं।
9: ओके, तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
8: नमस्कार।
9: नमस्कार।

0: हेलो जी,
1: पापा
0: ही रेडियो रेमडे गोपालगंज पाई हाँ सोनी बेटा प्यार सत्कार परी सत श्री अकाल पाई बेटा जी। मैं पिंड मौड़ खुद जिला बठिंडा पंजाब तो जगजीत मटू बोलना पाई।
1: हाँ जी कैसे हैं?
0: ठीक ठाक भाई, तुसी दसो भाई थोड़ी मम्मी पापा तुहाडी सेहत वीर भैन भरा थोड़े ठीक ठाक है भाई?
1: जी जी बिलकुल ठीक है सब कुछ।
0: चंगा ते भाई बेटा मौसम थोड़े किवे है गोपालगंज? वर्षा आई है?
1: अच्छा नहीं, बारिश तो नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही मौसम बना हुआ है, बता है।
0: अच्छा भाई चलो ठीक है भाई। बेटा आज एक मुझे पंजाबी सॉन्ग चला दो, सिंगर का नाम है कुलदीप मानक। एक गीत हैगा वीर बेटा, कबीर दई वीर बाहू बड़ा ही चल चलता, एक ही सुना दो भाई।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ जी बेटा, मेरे मान योग बड़े भरा है जी जगदीश राय गर्ग साहब जी, ये जी सरदार प्रगट सिंह ढिल्लों साहब, मलकीत सिंह घड़ी साज, अमरजीत सिंह बाला साहब, तेजी दविंदर सिंह तगड़ साहब, तेजी स्वामी धर्मपाल जी दी, परमजीत सिंह बाघा प्राणा। बेटा आपको प्यार ते सार परी सत श्री अकाल बुला रही है भाई।
1: ठीक
0: है भाई, जो बात बाबा नानक पढ़ा के सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करे 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
8: Now pick it up,
9: hello.
8: Now pick your phone up,
9: hello.
8: Pick it up,
9: hello.
8: Now pick your phone up.
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
11: नमस्कार मैम, क्या समाचार है मैम?
12: जी मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
11: भारती मैम बोल रही है। आज मनोरमा मैम का रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है
12: जी, उनका भी चलेगा लेकिन अभी कुछ देर बाद।
11: और सब ये खाना वाना हो गया?
12: जी हो गया, आप सबका हो गया है?
11: मेरा भी हो गया मैम।
12: वैसे आपका नाम?
11: मैं सुरेश कुशवाहा बोल रहा हूँ।
12: अच्छा,
11: कैंपस से।
12: गाना सुनना है आपको?
11: हाँ जी, गाना सुनना है। दुनिया बनाने वाले का तेरे नाम आई साहिब को दुनिया बनाई।
12: और गाना किसी
11: को रेडियो श्रोता को
12: गाना आपका प्ले करते रहिए रेडियो 90.4।
11: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी,
0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, फोन तो लगाते लगाते हम हैरान हो गए।
1: अच्छा,
0: 300 कॉल लगाए हैं। हाँ, क्या कोई दुश्मनी है क्या?
1: नहीं नहीं आपसे मेरी क्यों दुश्मनी होगी, कॉल अब आ ही जाते हैं, जिनके तो उठाना ही पड़ता है।
0: बताइए, दो एक दो बार क्या ही कर रहे हैं, उसका लग जा रहा है।
1: और सब ठीक है? आप ठीक है ना?
0: ठीक ही है।
1: वैसे तो मैं धनेश जी को जानती हूँ वो सब, लेकिन आप क्या करते हैं?
0: हम भी इन्हीं के साथ में काम करते हैं।
1: अच्छा जी।
0: हम तो आपका पास ही के हैं।
1: आपका भी घर यहीं पे है?
0: हाँ, रूपन छप में।
1: बढ़िया ही है।
0: तो एक गाना सुना दीजिए।
1: बता दीजिए।
0: तो बर्बाद करके जिए लू आराम से।
1: और गाना किसी को सुनाना है?
0: हाँ, सुनाना है एक।
1: बता दीजिए।
0: नाम नहीं बता सकते हैं
1: जी। चलिए कोई बात नहीं, समझना है वो समझ जाएगा।
0: हाँ, वो तो सुन रही है। उन्हीं को सुनाना है।
1: चलिए ठीक है, फिर गाना आपका प्ले करेंगे।
0: हाँ हाँ,
1: सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
0: चलिए ठीक।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: श्रोता लोगिन नमस्कार, रवा सभी सुनत बानी आपन बोली की पहचान, यानी कि रेडियो 90.4 FM फिर से रेडियो हो गलवानी लेके अपने सुगंध से सरोबोर कार्य भोजपुरी बिरहा। तो चलिए आज

0: चार लाइन भूमिका हो।
1: बा
0: ध्यान दिहन, पढ़े लिखे भाई जरा ध्यान देंगे कि कनक हीरा मोती, कनक मतलब सोना,
2: बा
0: कनक हीरा मोती और पन्ना जवाहर, पर भाई मनोता में समता नहीं है, जग में सब कुछ मिले
2: बाबा
0: पर न भाई मिले, भाई भरत शेष का नाम याते, रघुनाथ हंस करके आंसू बहाते, कि भाई ही भाई।

बताई ला कि बिरहा का मूल चीज कहानी होला। कहानी दिमाग से हट जाइए, ओम प्रकाश यादव का बिरहा सुनल व्यर्थ हो। और हमार बिरहा एकदम शीशा में जैसे सूरत लौकेला, साफ साफ सबके समझ में चलिए। कहानी बाके कर तनी और बढ़ के दाबिया।

किया रे कही द भौजी भैया से हा कही द भौ

इतना धुन बा ई कहानी हो कहाँ के यहीं से विरह का शुरुआत हो गल केकर विरह बा कहाँ से विरह लिहल गल कवि जी लिखलन हम कि ही

सेठ जिनके गोदी में भगवान दूटे फूल खिलौलन। आज जब दूटे फूल खिलल, दोनों लड़का के रूप में फूल खिलल बा, बड़का लड़कवा का नाम रखलन है रामू और छोटका लड़कवा का नाम रखलन सामू। रामू सामू दोनों लड़कन के नाम रखल गल, लेकिन खुदा न खास्ते बार भगवान का मंजूर ना भल, लड़कन के एक छे लड़का का 5 वर्ष उम्र बा, एक छे लड़का का 7 वर्ष उम्र बा। ये 5-7 वर्ष के लड़कान के छोड़ के आ एक दिन स्वर्गवासी हो गेलन हीरा लाल से। स्वर्गवासी हो गेलन गांव घर मिल के हीरा लाल सेठ का। बड़ा अच्छा तौर तरीका से लोग जन विधि विधान होला, अंतिम क्रिया कैले लोगन, लेकिन ए मौत के अपने पति के मौत के बर्दाश्त सेठानी ना कैलिन है। 3 महीना बीतत बीतत सेठानी भी ये दुनिया के छोड़ के चल दिए। गांव घर के लोग बड़ा अच्छा रहलन, कल जला कि पड़ोसी अगर निक होके ना तो सबसे बड़ा दौलत मिलेला, पड़ोसी अगर निक मिल गई तो। गांव घर के लोग अच्छा रहलन, 5-7 बरिस के ही माई भी मर गई, बाबू भी मर गेलन, लेकिन वो दोनों लड़कन के पूरा गांव घर मिल के पोष पाल के लोग धीरे धीरे जवान कर दिया। जब जवान कर दिलन गांव के लोग सोचलन कि लड़का धीरे धीरे कमाए खाए लायक हो गईलन, तो काहे ना बड़का लड़कवा के अगर शादी रामू के करा दिया जाये कहीं तो एक घर बस जाये। बगले के गांव में रामू का लोग शादी भी करा दिहलन। अब जब शादी भइले के नतीजा ही निकलल कि रामू के शरीर से रामू का दुल्ही का दुई बेटा भइलन। एक दिन बोलोलन रामू श्यामू के, कलन की सुनू, कलन श्यामू की हाँ बोला भैया का बात बा, कलन की देखा पहले हमन का दूठे भाई रह लीजा। भैया भैया कलन है की रामू कहलन की श्यामू एक काम बा, पहले 2 भाई रह ली जा, 2 भाई से जब हमार शादी भइल 3 भइली जा, 3 से 5 हो गई ली जा, दूठे लड़का भी हो गई लन। श्यामू कलस की मतलब, कलन की मतलब के मतलब यह बा कि अगर हम घरों रह तब घरे राला से काम धंधा ना चली, अब तू लैकन के मेहरारू के देखभाल करा, हम जात पानी बम्बई कमाई, कमा के पैसा भेजब, इज्जत अपरू घर का बचल रही। अच्छा तो कह के अपन मेहरारू लैका छोड़ के छोट भाई श्यामू पर पहुंचल गेलन बम्बई। आ बम्बई गेलन हर महीना में मेहनत मजदूरी करे, घर के परिवार के खर्चा भेजे। एक दिन शाम के वक्त बाद दोनों लड़का छोटे छोटे घर के दरवाजे पर खेलत हुवन, रामू के औरत सब्जी चीरत रहली ना घर के आंगन में बैठ के, तले चल गई श्यामू पहुंच गई। अब भौजी के लगवा बैठ के भौजी से मजाक करे लगल, भौजी से मजाक कही के कहले बा का कहले बा, ये तरज बा लेकिन तरज से सुंदर हमरे बिरहा का लाइन लिखल गई, कहलस की एक बेर हंसी दा, हे भौजी एक बेर हंसी दा तब फूल झरी है, एक बेर हंसी दा तब फूल झरी है, तोरे

0: भौजैया रामू के व्रत कलश की तार दिमाग खराब हो गई। भैया गइलन बम्बई जाके मेहनत मजदूरी करेलन, आ हर महीना खर्चा भेजलन तो घर का खर्चा चलेला। आ तू मजाक करत हुआ, शर्म नहीं खियावत तारा? यही से मजाक करत हुआ कि हम तुहार भौजाई लगब, तू हमार देवर लगबा? तो देवर भौजाई का संबंध का होला जानेला? बतावत पे हो जाइया कलश की सुना बतावत आने की देवर भौजाई का संबंध होला कैसन
1: बा?
0: का बतौले बे टेरी में कहले बे का? कलश की सीता के माने माई लक्ष्मणी, ए बबुआ सीता के माने माई लक्ष्मणी, पाके मस्त जवानी में गईला बहुराई। कलश की सीतो जी लक्ष्मण के भौजाई लगत रहली, लेकिन आज तक कबो भौजी कह के ना बोलन, माता जी ही कह के बोले। तो गीता या रामायण उठा के पढ़ा, का कहले बे? इहे तरज बा
2: कि ए बतिया कही गईला, अरे पहिला का पुरनिया कमाईला नोट बबुई, कमाईला नोट बबुई, जबल चमक

0: चल बबुआ, कलश की यही से मजाक करत हुआ कि तू हमार देवर लगवा, हम तुहार भौजाई लगब। शरम नहीं खे आवत ऐसा शरीर लेके कहीं मेहनत मजदूरी करता तो दो पैसा कमेता। जवानी चढ़ते तुहार दिमाग बदल गई तो आवेदा होत सवेरे तोरे भैया के पास चिट्ठी लिखब आ उनके बुलवाई आ बुलवा के तार पूरी हकीकत बताई उनसे भौजैया डरबौले में।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: कहले बे का कहले बे की चिट्ठी आके लिखी हम, चिट्ठी आके लिखी हम, अरे बम्बई पठाइबो, लेबे तोहरे भैया के

0: समैली आ पहले देला चिट्ठिया पठाई कहानी कहां से कहां तक मोड़ लेती है
1: बा
0: भैयावा के कई के डरवोलस की सवेरे होके द चिट्ठी लिखा भैया तोहर बुलवाई आ बुलवा के जवन तोहर कर्तृत्व सारी बता दे भौजैया तो कई के डरवोलस लेकिन सामू समझ गेल कि अब भौजी मानी ना भैया के बुलवाइबे करी हमार पूरी बात बताई भैया खीस में आके हमके अलगा कह दी हन अपन मेहरारू लेके बम्बई।

0: कलश की, धीरे हो भैया धीरे, चिट्ठी में लिख दिया कलश की, भैया का मालूम की तुहार मेहरारू अब हमारे बस में ना बे, तू बंबई से आवा अपने मेहरारू के समझावा बुझावा जो इज्जत हमन का रहल, इज्जत का पगड़ी माटी में मिला दिया, गुंडन के घरे बुलावे ले, मौज मस्ती ले ले, अगर हम कुछ बोले ले, कुछ बोली ला कही ला तो झाड़ू लेके दौड़े ले मारे खाती, तार मेहरारू हमारे बस का नाबे। अब ता चिट्ठी मिलल बा वही बड़का भैया रामू का बंबई में, आ जब चिट्ठी मिलल रामू चिट्ठी पढ़ के पुक्का फाड़ के रोए लगल, सोचत हुवन कि ओ हम सला यहाँ बंबई में आई के मेहनत मजदूरी कई के घरे खर्चा भेजल करीला, तो घर का इज्जत आबरू खाती कि हम अपन हमार इज्जत आबरू कैसे बचल रहे, हमार मेहरारू हमारी इज्जत का खटिया खड़ी कर दिया, दो दिन चार दिन पांच दिन के बाद रामू चिट्ठी लिखलन कि श्यामू का मालूम कि कल हम आवत माने तू स्टेशन पर आई लिया, ओ गरी फोन का जमाना ना रहे, लिखलन कि तू स्टेशन पर आई लिया, सामान वगैरह बांटे कुछ रहबा तो सहूलियत रही ले चले में, चिट्ठिया मिलल चिट्ठिया मिलल बटे श्यामू क, अब ते के और सुंदर मौका मिल गई, केहू से कुछ बतावत ना बाकी आज भैया आवत हुआ, न भौजी से बतावत बा न दोनों लैकन से बतावत बा, चार गुंडों को ठीक किया छोटा भाई श्यामू, चार गुंडों को ठीक किया और कहा कि देखो कुछ करना नहीं है, कल हमारे भैया आएंगे, जाएंगे हम स्टेशन पर भैया को लाने के लिए, और तुम लोगों को यही काम करना है कि हमारे घर के दरवाजे पर बैठ करके हमारे भाभी से मजाक करना है, जब हम लोगों को तुम लोग देखना दोनों भाई को तो उठ करके चल देना, इतने में हम काम बना लेंगे, तय के मुताबिक बात के मुताबिक चार गुंडन ठीक हो गई लन, गांव के आवारा लड़का, दूसरा दिन जाता स्टेशन पर श्यामू रामू को लाने के लिए, पत्र के अनुसार रामू स्टेशन से ट्रेन से उतरा है स्टेशन पर, लेकिन बड़ा मायूस बा बड़ा उदास बा, बुढ़िया बिस्तर श्यामू ठोले बा, श्यामू बुढ़िया बिस्तर उठा के चुपचाप आगे आगे श्यामू चलत बा घर की ओर, पीछे से रामू, रामू ये सोचत बा कि साला हमार मेहरारू हमार इज्जत का पगड़ी माटी में मिला दिया, कवन मुंह दिखाई गांव में केकरा दुआरे बैठब, दोनों भाई खैर चले आए घर पर बाबू, लेकिन घर से कुछ दूर ही थे कि चार गो गांव कैवारा लैकवा उकरे भौजी से रामू के औरत से बैठ के मजाक करत रहलन, आ जब देखलस श्यामू रामू से कलस की भैया देखला देखला तेरी औरत का यही काराधारा है, देखो भैया समझ गई कि हम घर पर नहीं थे, गुंडों को दरवाजे पर बुला करके और मौज मस्ती ले रही है, चारों आवारा लड़का जब गांव का देखला सन दोनों भाई के तो उठ के चल दिया सन, अब तर रामू का जो उन शंका भी रहे एकदम विश्वास में बदल गए,
1: बाबा
0: अलन हा दिन भर तो किसी तरह बीत गया बाबू, रात हुई, एक घर में रामू की औरत क्या जानती है, एक घर में श्यामू को सुला देती है खिला पिला कर, एक घर में दोनों बच्चे सो जाते हैं, ये अपने रूम में जाकर के रामू सोया है, खाट पर लेटा है,

नींद नहीं आ रही है, सबको खिला पिला करके मेहरारू का जात कटोरी में तेल ले लेबे, सोचलस के दिन भर का थकल बणन, दिन भर का थकल खेदाइल बणन, चल के तनी कुछ सेवा कह दी। आइल बे जो ही खटिया पर बैठ के पैर से मोजा निकालत बे, बारे राम उसीने में दया नाम की कोई चीज नहीं, खींच करके लात मारा है। अबला जात मेहरारू खाट से नीचे गिर जाती है, हाथ जोड़ के रोवे लगल कि पतिदेव आखिर हमसे कवन गलती भइल बा, जब से तू आइल हुआ हमसे कुछ बोलत ना हुआ, का बात बा। लेकिन रामू को केवल सर में कपार में उसके दिमाग में इतना कूड़ा भर गया था कि उठता है और बगल में कोने में एक डंडा रखा हुआ था, उठा लिया डंडा बाबू, लगा मारने जिस तरह जानवरों को मारा जाता है, मारत बड़ा डंडा से पीटत हुवन, मारते मारते मारते मारते रामू उस औरत के तन पर से साड़ी को उतरवा दिया, ब्लाउज को उतरवा दिया। अरे दया नाम की कोई चीज नहीं है, उस औरत के तन पर साए तक भी नहीं रहने दिया, नंग बदन करके डंडा से मार रहा है। रोवत भी औरत कल जाला बाबू की अबला जीवन हाय, अबला जीवन हाय, तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। औरत रो के एक बात कहले बे, का कहले बे, इहे रो के कहत बे कि केवनी

हाथ जोड़ के रोत भी कलश की पति देव, काम से गलती हो गल, जब से तू आइल बड़ा तब से बोलत ना हुआ, कौन कुछ बात तो बताओ, आखिर काहे मारत बड़ा, कवन हम गलती कह देले बाणी। लेकिन रामू केवल पीटने की धुन है, केवल मारने की धुन है रामू को, रामू केवल पीट रहा है। इतना तक बाबू पत्रिका में प्रमाण मिला कि रामू मारते मारते मारते नंगी बदन में औरत है, घर से बाहर निकाल देता है, अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। उस हालत में वो औरत कहां जाए, किसके दरवाजे पर जाए, सोच रही है कि मैं कहां जाऊं, इस हालत में नंगी बदन में मैं किसके दरवाजे पर चलूं। आखिरकार अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए वो औरत उसी गांव के बगल में नदी थी, नदी में जा करके डूब करके आत्महत्या कर ली, मर गई। और जब नदी में कूद करके मर गई, सुबह हुआ, दूठे लड़का हूं छोटे छोटे, हमार लड़का होके चाहे आपको लड़का हो कहे, छोट लड़का बच्चा जो बालन सन जगिया सन, तो सबसे पहले माई को खोजिया सन, माई कहाँ बिया, बाबू से पूछत बड़सन की बाबू माई कहाँ बिया, माई कहाँ बिया, बारे रामू कितना सुंदर बहाना बनोले बा, कलश की तहलो के माई गई बे, तहलो का ननियउरा आई घबरा जा मत, दो चार दिन में चली आई, लड़का तो लड़का होलन बाबू, रामू खिलावत माँ ओहन का झुटलावत बाटे,

0: लड़कन का धीरे धीरे बाप को प्यार मिले लगल, लेकिन दो दिन चार दिन दस दिन पंद्रह दिन रामू एक दिन शामू के बुलौलन कहलन की सुना, अब तजे हमने के इज्जत ताबरू लिहल, हमने के इज्जत का पगड़ी माटी में मिलाओल ए दुनिया में ना बा। हई दूठे हमार निशानी लड़का हुन, ए लैकन के तू देखत रहिया, और हम जात मानी फिर बम्बई पैसा भेजब कमा के, लैकन के भी घर का भी खर्चा चली। समझा बुझा करके रामू के ऊपर श्यामू के ऊपर रामू दोनों बच्चों को छोड़ करके चला गया बम्बई कमाने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए पटना और भागलपुर समेत 8 जिलों के लिए चेतावनी जारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेंगलुरु में बिहार महोत्सव का किया उद्घाटन, कहा विकसित भारत समृद्ध बिहार का लक्ष्य हासिल करना हरेक राज्यवासी की जिम्मेदारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फरक्का जल संधि मामले में बिहार के हितों का ध्यान रखने का दिया भरोसा, जल संधि पर जागरूकता के लिए जदयू शुरू करेगा नीतीश संवाद अभियान। और मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जल संसाधन विभाग ने गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए पटना समेत 8 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही तटबंधों का भी जायजा लिया। श्री चौधरी ने कहा कि भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उन्होंने कहा कि खरी कंचल की राघोपुर पंचायत में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है।
3: बैग डाले जा रहे हैं जिससे कि जो हमारा नेचुरल सॉइल लेवल है उसके किनारा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और जो भी वहाँ इधर चूंकि कुछ रिहायशी इलाका है इसलिए इस तटबंध मैंने ये जो कट रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और अभी फिलहाल इससे अगर कुछ पानी का घटाव बढ़ाव या पानी के बहाव में कोई चेंज नहीं हुआ तो अभी यहाँ की स्थिति नियंत्रण में अब दिख रही है जो कल तक बहुत खतरनाक।
1: उप मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड में हुई भारी बारिश के चलते पुनपुन और दरधा नदी के जलस्तर में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग के अभियंता स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
3: झारखंड में भी अत्यधिक वर्षा होने के कारण पुनपुन और दरधा नदी में भी जल प्रवाह काफी आ गया है, और वहां तो तटबंध को ओवरटॉप कर गया है। एक जगह जो स्थानीय लोगों ने तटबंध बनाया था उसमें टूटान ब्रीच भी हुआ था, लेकिन हमारे अधिकारियों ने उसको बंद कर दिया है। इसलिए स्थिति तो गंभीर है लेकिन अभी नियंत्रण में।
1: इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि विभिन्न नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। पटना, वैशाली, भागलपुर, कटिहार, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर और जहानाबाद समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हमारे पटना

0: संवाददाता ने बताया कि दियारा इलाकों से आए लोग जेपी गंगा पथ पर शरण लिए हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर की शुरुआत की गई है। पशु चारे और दवाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रदेश में बाढ़ की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर नेपाल के साथ उच्च स्तरीय बातचीत होनी चाहिए।
1: लगातार जो है बाढ़ का खतरा बिहार में, हमने कई बार बोला है इसका परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो होना चाहिए। केंद्र की सरकार, राज्य सरकार जो है पूरी तरीके से फ्लॉप है। 12 साल से भी ज्यादा जो है केंद्र में भाजपा की सरकार है और 20 साल से ज्यादा बिहार में सरकार है, लेकिन एक बार भी नेपाल से इंटरनेशनल मुद्दा है, एक बार भी गंभीर कोई योजना नहीं बनाई गई है, कोई बैठक नहीं की गई है, ये फेलियर है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद हैं। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से बिहार की समृद्धि का रास्ता खुलेगा।
2: आज बिहार के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग के प्रांगण में बिहार महोत्सव मनाने का काम किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम गुरु जी को प्रणाम भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आपने बिहार वासियों को अपने जहाँ जगह दिया। मैं पूरे कैंपस में भी घूमा, मैंने एहसास किया कि श्री श्री रविशंकर जी पूरे बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलना चाहते हैं।
0: विकसित भारत समृद्ध बिहार के संदेश के साथ आयोजित हो रहे इस महोत्सव में राज्य की समृद्ध विरासत, लोक कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। समारोह में आधुनिक और प्रगतिशील बिहार की झांकियां भी पेश की जाएंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फरक्का जल संधि को लेकर बिहार के हितों को ध्यान में रखने का भरोसा दिया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने संधि के नवीनीकरण में बिहार की जल जरूरतों को शामिल करने की मांग की थी। विदेश मंत्री ने कहा कि जल संधि के नवीनीकरण की प्रक्रिया में बिहार की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। भारत बांग्लादेश के बीच वर्ष 1996 में हुई फरक्का जल संधि की अवधि दिसंबर महीने में समाप्त हो रही है। जनता दल यूनाइटेड 5 सितंबर से नीतीश संवाद अभियान की शुरुआत करेगा। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि अभियान बक्सर से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत फरक्का बराज और फरक्का जल संधि से राज्य को होने वाले नुकसान के प्रति आम लोगों को जागरूक किया जाएगा।
3: इस कार्यक्रम का नाम नीतीश संवाद ही हम लोगों ने रखा है और उनको सारी जानकारी भी दी। परसों से मैं और उमेश कुशवाहा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग 12 जिला फेज बाइज हर एक मंथ में 4 जिला नवंबर तक वो प्लान कर रहे हैं। हम लोग परसों से जहां गंगा इन करती है बक्सर में, 12 जिला जो गंगा किनारे है, ये जन संग्रह के लिए जा रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज अवेयर करने के लिए जा रहे हैं कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था और ये ठीक होना चाहिए।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास विधि छात्रों के आचरण को नियंत्रित करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विद्यार्थियों पर किसी तरह की कार्रवाई शिक्षा संस्थान ही अपने विनियामक नियमों के अनुसार ले सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आज शिवहर में पूर्णिया प्रखंड में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने बसंत जगजीवन पंचायत में श्री कृष्ण प्रभात पुस्तकालय और अदौरी पंचायत में जीविका दीदियों के सिलाई घर का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने आज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर स्थित टाटा कैंसर अस्पताल में 12 बेड के आईसीयू का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अस्पताल को और विकसित किया जाएगा ताकि कैंसर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे स्थानों पर रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़े। बेगूसराय जिले में डिजिटल भुगतान का चलन तेजी से बढ़ा है। लीड बैंक के प्रबंधक प्रशांत मिश्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में डिजिटल माध्यमों से 20 करोड़ 40 लाख से अधिक लेन देन हुए, जिसकी कुल राशि 1,40,638 करोड़ रुपए से अधिक रही।
1: 30,236 लाख करोड़ फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे ट्रांजैक्शन से भीम यूपीआई से हुआ इस साल। उसी रेट से अगर बढ़ते हैं तो ये भी अभी के हिसाब से 20% पिछले साल से बढ़ के ही जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इस साल यहाँ बेगूसराय जिले में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो होंगे वो पिछले वित्तीय वर्ष से 30% ज्यादा हो, तो इस साल ये संभावना है कि 2 लाख करोड़ तक भी हम लोग पहुंच
0: सकते। प्रदेश में मानसून के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 98.6 मिलीमीटर बारिश पूर्णिया के भवानीपुर में दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिले में भारी बारिश की संभावना है।
2: दिनांक 4 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज एवं सिवान जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: जन्माष्टमी का त्योहार कल मनाया जाएगा, इसे लेकर प्रदेश भर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बक्सर जिले के डुमराव मध्य विद्यालय के 2 शिक्षकों को नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी इंद्र कुमार कर्ण ने बताया कि जिन 2 बच्चियों के साथ छेड़खानी हुई है वे संबंधित विद्यालय की छात्रा नहीं है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच का जिम्मा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा गया है। इधर गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने अनियमितता और कार्य निष्पादन में लापरवाही के आरोप में 4 प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया है। किशनगंज जिले के कलगलिया थाना क्षेत्र के ठीका टोली में पुलिस और एसएसबी की टीम ने छापेमारी कर एक तस्कर को 952 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन का बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए है। इधर मधुबनी जिले के लोखा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 11 लाख रुपए मूल्य के गांजा के साथ नेपाल के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर मादक पदार्थों और हथियारों के साथ 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र में बाघ के हमले में मृत एक महिला के परिजन को वन विभाग ने 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की है। सीवान जिले में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। अरवल जिले की 10 पंचायतों में आज संत रविदास विकास शिविर का आयोजन किया गया। शेखपुरा में एड्स रोगियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में एड्स जागरूकता रैली निकाली गई। कटिहार के 20 मॉडल विद्यालयों सरस्वती विद्यानिकेतन में बेहतर शिक्षा के लिए 20 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारी सप्ताह में एक दिन अपने अपने स्कूल के बच्चों की कक्षाएं लेंगे और उनके प्रदर्शन का आकलन करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए पटना और भागलपुर समेत 8 जिलों के लिए चेतावनी जारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेंगलुरु में बिहार महोत्सव का

उद्घाटन का विकसित भारत समृद्ध बिहार का लक्ष्य हासिल करना हर एक राज्यवासी की जिम्मेदारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फरक्का जल संधि मामले में बिहार के हितों का ध्यान रखने का दिया भरोसा। जल संधि पर जागरूकता के लिए जदयू शुरू करेगा नीतीश संवाद अभियान। और मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बाबूजी बीतल बा, लेकिन अब रामू का बम्बई में मन ना लगत बा। कबो मेहरारू का चेहरा यहाँ के सामने नाचे, तो कभी दोनों लड़कन के सूरत नाचे। चिट्ठी लिखलन कि श्यामू बम्बई में हमार मन ना लगत बा, हम आवत बने। श्यामू का जब चिट्ठी मिलल है बाबू, कल जला कि जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। श्यामू का दिमाग भग दे पलट गई, सोचे लगल कि अरे यार भैया अभी लगले गईलन आवे लगलन, एकर मतलब हमारे बारे में जानकारी मिल गल भैया के, सारी बात तू जान गईलन। अहन अपन दोनों लड़का लेके बम्बई चल जिहन, हम यहाँ गांव में घर में खैला बिना मरे लगब। इतनी दिमाग में पाप आ गई। रामू चिट्ठी में लिखले बा कि श्यामू अहे कल स्टेशन पर आज यह सामान वगैरह ले चले खातिर। दोनों लड़कवा दरवाजा पर खेलत हुवन सा, बाबूजी सुबह कबेला बा और दरवाजा पर खेलत हुवन, चिट्ठी देखला न तो पूछत हुआ कि चचा बाबू कह का, बाबू आवत हुआ का। अय है दोनों लड़कन के कलाई को पकड़ा है, बाह को पकड़ा है, घसीटते हुए घर के अंदर लेकर जाता है।
1: कब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
0: और रामू करता है क्या बाबू? कि दोनों लड़कन के लेके

अंदर से किवाड़ बंद कर देता है। बड़का भैया के पटक के छाती पर जब लात धैले बा सामू, छोटका जो लड़िका बा छोटका भाई होकर इतना डर गई कि वो घर के कोने में जाके दुबक के बैठल बा। देखत बाकी भैया के जान मारत हुए चचा। बड़का लड़का छटपटाता छाती पर लात धई के एगो बाई पकड़ के गर्दन लगल दबावे। छोड़ द चचा छोड़ द चचा, काहे मारत हुआ। बड़का लड़का रोत बा लेकिन बाहर श्यामू सीने में कोई दया नाम की चीज नहीं है। बड़े लड़का का गर्दन को दबा दिया, हाथ गोड़ पीटर छटपटात, बड़का लड़का शांत हो गई, लाश के रूप में पड़ गया। खीस में तना पागल बा सामू की दौड़ल बा वहां ले। बड़का लड़का का लाश छोड़ के जो कोनवा में छोटका भाई बैठल बा दबक के, वो छोटका लड़कवा के कलाई पकड़ के खींच के या फिर वही बड़का लड़का के ले आयल बा। पटक दिहलस, पटक के छाती पर जब ठेउना धैलस, गर्दन में हाथ लगवलस, तो छोटका लड़कवा हाथ जोड़ के रोत बा कलस की चचा मत मारा, चचा मत मारा, अब तो हमें ही घर का एक ही चिराग बानी चचा। हम बाबू से कुछ ना बताई चचा, तू हमार जान मत मारा, हमके छोड़ दा। लेकिन बाहरे निर्दयी श्यामू सीने में कोई दया नाम की चीज नहीं है। गर्दन को दबा दिया, हाथ पैर पीटते पीटते छोटा लड़का भी इस दुनिया को छोड़कर चल पड़ा। आज जब दोनों लड़का लाश के रूप में पड़ गिलन, तब श्यामू कहले कबा कि बिचावा कोठरिया में, बिचावा कोठरिया में, अरे लसिया के तो पी के हो, ए भैया पहुंचल तिसनावा पे जा, उसी समय वो घर में गढ़ा खुल ले बा, वही घर में आ दोनों लैकन के लाश वही गढ़ा में तोप दिलस। ऊपर ले माटी भर के वो रूम के लीप पोत के एकदम चिकन कह दिलस। पहुंचल बा स्टेशन पर, भैया के कहले के मुताबिक भैया उतरल वालन रामू ट्रेन से उतरा है, श्यामू बुढ़िया बिस्तर उठाया है, चल दिया तो चल दिया है, आगे आगे श्यामू पीछे से रामू। लेकिन घरवाए होते चारों तरफ नजर दौड़ावत हूं रामू की, सब लोकत बा दोनों लड़कवा ना लोकत हूं, दोनों लड़कवा रहे तब न लोके। श्यामू से पुछलन कि अरे भाई श्यामू दोनों बाबू ना लोकत हूं, अरे दोनों मुन्ना कहां हुआ, कितना सुंदर बहाना बनावत बा। कल जला की एगो गलती छिपावे खाती सोई गो, एगो झूठ छिपावे खाती सोई गो झूठ बोले के परेला, तबो ना छिपेला। रामू कलन की दोनों मुन्ना दोनों बाबू कहां हुन। श्यामू कलस की भैया का करी, हम तो बहुत मना करत रहली, लेकिन काल तार बड़का सार आई रहलन, लाख हम मना करत रह गए लेकिन नाम मनलन दोनों लेकिन के लेके चल गेलन। रामू सीधा साधा मजदूर आदमी सोचलस कि ठीक है, कहत बा देखले हुई सरवा आई हुई टूअर टापर देखले हुई लेकिन के लेके चल गेल हुई। रात होता है बाबू, अब देखें घटना, रात होता है, रात जब भइल बटे खिया पिया के श्यामू अपना भैया रामू के ओही घर में सुतौले बा, जेवना घर में दोनों लैकन के लाश गड़ले बा, ओही लाश के ऊपर खटिया बिछौलस, आ खटिया के ऊपर बिस्तर लगौलस, आ बिस्तर लगा के कहलस कि भैया आप आराम कीजिए, दिन भर के ट्रेन के थके हैं, आप आराम कीजिए। रात भइल बा बाबू, वास्तव में दिन भर का थका हुआ ट्रेन का आदमी खाट पर लेटा तो लेटते ही नींद आ गई। और रामू जब नींद आईल बाटे सुतल बा, पहली नींद में सुतल बा,
ठीक घड़ी में 12 बजत बा रात के, 12 बजल बा तो बड़का लड़िकवा लगल रोए, वही खटिया के नीचे बड़का लड़का रोवत बा। आ बड़का लड़का रो के एक बात अपना बाबू से कहत बा, का कहले बा, है तरजबा माई बहन अक्सर यही टाइम में भोरहरी में गावे लेनी, गंगा स्नान करे बदे जी हन, तब गई हन

0: ओपे बैठे भगवान। लेकिन बड़का लड़िकवा रोए लगल और रो के सपना दिखावत बा का
1: कि बाबू जहां खटिया, अरे बाबू जहां खटिया बिछावा लानू, बाबू जहां

बाबू आपके विश्वास नहीं खे ना, सुतल बड़ा चैन से, लेकिन हमार लाश तोरे खटिया के नीचे पड़ल बा। विश्वास नहीं के हम ही नहीं खी, रोत बा बड़का लड़कवा बाबू के सपना देखावत बा। का कहले बा कि संगवा में बाणे मोरा।

बाबू तो के विश्वास नहीं के हो, हमन के दोनों भाई कला से ही खटिया के नीचे पड़ल बा तोरे। अचानक बाबू जब इतनी सपना देखौलस बड़का लड़का, रामू चिहूक के खाट पर उठ के बैठ गए, सोचे लगलन कि अरे यार हम का देखत बानी। लेकिन सीधा साधा इंसान रामू सोच गया कि ये सपना देखत रही, सपना कौन सांच ना हो कहे। रामू फिर चद्दर तान करके और सो जाता है। अब चद्दर तान करके फिर सोया है, तब तक ज्यों नींद लगल छोटका लड़कवा रोवे लगल। आ छोटका लड़कवा रो के कहत बाकी बाबू तो के भैया के कहले पर विश्वास ना होता, सुतल हुआ तो जो न ले आई लुआ मन खाती बम्बई से उका हुई। रोत बा का कहता कि बम्बई के बेला बाटम, बम्बई के बेला

0: इतनी जब बात, छोटा सा दूसरा लड़का रोने लगा, सपना दिखावे लगल, रामू के नीज टूटल बा, चिहू के खाट पर उठ के बैठ गई लन। सोचे लगलन कि आखिर बात का बा कि हम एक ही सपना बार बार देखत पानी, कारण क्या है? प्रेशर बनावे लगलन दिमाग पर, और प्रेशर बनावत बनावत बनावत बनावत प्रेशर बना लियलन उनके सपने की पहली लाइन याद आ गई रामू को कि बाबू जहां खटिया बिछवलन हो नीचे लसिया हमारा। सपने की पहली लाइन याद आई है। खाट से तुरंत नौजवान रामू उठ जाता है, खाट को हटाता है और सपने के मुताबिक बगल में फोड़ा कुदार रखा हुआ था कोने में, कुदार को उठाया और लगा कोड़ने। कोड़ने लगा तो नीचे भुरभुर की मिठाई, नीचे भुरभुर की मिट्टी दिखाई देने लगी। अब उसको शंका होने लगा, दिल धड़कने लगा कि अरे यार कहीं सही बात ना हो जाए। और जब बाबू कोड़ते कोड़ते पहुंचा है, जब कुछ दूर कोड़ा है तो क्या देखता है कि दोनों उसके बेटे मुंह से खून दे करके,
1: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
2: रुको रुको बेटा, आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: और पड़े हुए हैं लाश के रूप में, चेहरा जो है धूल में सनी हुई है, मिट्टी में सनी हुई है। कौन बाप पागल ना हो जाए भैया। इतना आदमी विराह सुनत हुन, हर इंसान के भगवान बेटा बेटी जेके देले हुई हैं। एक बेटी वाला बाप, एक बेटा वाला बाप ये बात के सोच सकता कि एक बाप के सामने दूदू को बेटा के लाश परल बा। बाप अपनी आंख से देखत बा, उसे में बाप को कलेजा का कही। गमछी लेके दोनों लड़कन के चेहरा साफ कैलन, गड्ढा से ऊपर निकलन दोनों लाश, आ गोदी में लेके लड़कन के चेहरा साफ करत हूं। और रोक एक थे बात कहलन, का रोके कहलन, ये कहलन कि लसिया के लेके रोवे भरी ससिया हो, अटप टप बरी सला दोनों रे।

0: हम वाला पके दी
1: बचवा
0: हमके बचवा पिंड दाना कहा बेटा
1: है है है
0: छोड़ के चल दिया ला लोग तहनो लोग हमारे गलती से तहन लोग कमाई ये दुनिया को छोड़ दिया ला आई हो हमारे गलती कहल जाए कि हमारे गलती से तहनो लोग दोनों जना हमें छोड़ के चल दिया ला लोग लेकिन बारे भाई रामू ऐलन हा श्यामू जमना घरवा में सुतल बा ओकरे घरवा के केवाड़ी खटखटावत हुन का कहलन कि आब श्यामू भैया एक बेरी गरवा से मिली लेता से या

कलन की श्यामू के बाड़ी खोला कहत रहला ना कि दोनों बबुआ गैल बड़ा सन ननियौरा दोनों लड़का ननियौरा से आ गेले सन बाबू के बाड़ी खोला बारे बारे भाई भाई हो तो ऐसा श्यामू समझ गेलन सारी बात समझ गेलन कि अब भैया के हमके जानकारी हो गई बाप के बाड़ी खोल के आके रामू के पैर पर गिर पड़लन कि भैया सब हमरे गलती है। रामू रोत हुआ और रामू रो के एक बात कहलन अपने छोट भाई श्यामू से का कहलन बड़के दा कहलन कि ननियौरा से आ गईले अरे ननियौरा से आ गईले सुगनवा मोर बिरनवा हो आयाम प्रेम से कहिले ता

0: कलन की श्यामो तू भाई हुआ और हम तुहार भाई है ही। माई बाबू के मर गईले के बात तो के बेटा से कम ना जन ले रहे, लेकिन हमारे एक ठे कहना कदा भैया बारे भाई कलन के एक ठे कहना कदा हमरे अंदर उस शक्ति नहीं है कि हम दू दू गो लाश एक बेर उठा पाई। दोनों लड़कियन के लाश वही घर में पड़ल बा, ते गो काम कर भैया का कहलन कहलन कि एक लसिया के अपने कानी पर उठाओ, एक हम उठाई बे चला चली के दफनाओ। कहलन के हमरे अंदर उस शक्ति ना बा भैया हम बाप हैं टूट गई बानी, ते गो लाश के अपने हमरे कहल कह दे एगो लैका के लाश तू ले ला, एगो लैका के लाश हम ले लेते, यही रात के चल के दफना दिया जाए बांस रही न बसुरी बाजी न तो सबेर होई गांव के लोग जनियन दुनिया जानी थाना पुलिस आई। हमरे आखी के सोजा जब तोरे हाथ में हथकड़ी लगा के ले जाए लगी भैया तो हम तो हर भाई है, हमसे बर्दाश्त न हुई हम जियत मर जा छाती फाट जाई। बारे भाई यही से हम कहली बाबू कि जग में सब कुछ मिले जग में सब कुछ मिले पर न भाई मिले। माई के बेटी मिल जाई, बाप के बेटा मिल जाई, मामा के भैने मिल जाई हन, भैने के मामा मिल जाई हन, लेकिन बाबू ए दुनिया में बड़ा भाग से एक लाद का सहोदर भाई मिलेला। जिसके पास एक लाद का सहोदर भाई नहीं है जरा उस इंसान से आप जा करके पूछिएगा कि वो भाई के लिए उसका दिल क्या कहता है। भाई हो तो ऐसा जरिए कल गए कि भाई मिले भी तो भाई भरत जैसा, भाई मिले तो भरत जैसा, नहीं तो लगवे कल गई बाकी भाई जैसन हित न भाई जैसन दुश्मन। आज बाबूजी रोवत हूँ रामू और भाई के समझावत हूँ कलन की भैया बर्दाश्त न हो, एक लाश के अपने तू उठावे एक लाश के हम उठाई आ चल के राते राते दफना दिहल जाए बांस रही न बसुरी बाजी। का कहलन है का कहलन है
1: ना
0: कि इहे बाटा अंतिमा इहे बाटा अंतिमा मिला नवा मोरा बिरा नवा हो फिर तो से हो जाइबे सपना।

उसी रात को बाबू एक लाश को श्यामू उठाया, एक लाश को रामू उठाया है और ले करके जा करके नदी के तट पर दोनों लाश का अंतिम दाह संस्कार रामू करता है। लेकिन सोचा लगलन बैठ के वही अरार पर नदी के कि ये दुनिया में अब हमार के बा, मेहरारू रहल मेहरारू भी मर गल, दूठे लड़का रहलन उहो मर गिलन, तब हमार दुनिया में बा के हम जी के का करब। प्रमाण मिला बाबू कि उसी रात को रामू भी उसी नदी में कूद करके आत्महत्या कर लिया, इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। कुछ दिन पहले तक श्यामू अभी जिंदा था, कुछ दिन पहले तक बंबई में दिखाई पड़ता था, बंबई की गलियों में दादर जो कामगार स्टेडियम है, हम लोग जाते थे गाने के लिए, तो कामगार स्टेडियम के बगल में सब्जी मंडी, उसी मंडी पर रोडों पर कूड़ा करकट बटोरते हुए, दाढ़ी बड़ी हुई है, बार बड़े हुए हैं, पागलों की तरह इधर उधर भटकता हुआ मिलता था श्यामू। दिमागी हालत उसकी खराब हो चुकी थी, अब भगवान जाने वो जिंदा है भी कि नहीं है। तो एक भाई कैसा निकला और एक भाई कैसा निकला, यही से कहल गई बा कि भाई जैसन हित न भाई जैसन दुश्मन। कहत हुआ गाना के अंतिम लाइन में बतवलन है रामू, आ रामू ये दुनिया के छोड़ के चल गए, मतलब एक भाई के चलते एक भाई का पूरा परिवार खत्म हो गया। हमरे गाना के अंतिम लाइन हो कहल गई का, ठीक लागल अभी गाना ठीक लगल हा? हाँ तो चला ठीक लगल है, तो इहे गवैया खाती सबसे बड़ा दौलत होला, इनाम सबसे बड़ा दौलत होला। गवैयन के गवैया गवलस गाना निक लग गई पब्लिक के, ओके अच्छा लग गई, तो ई गवैयन खाती सबसे बड़ा दौलत होला। कवि जी लिखलन है का, तो कवि जी लिखलन है का, फिर जिंदगी रही आप लोगों से मुलाकात होगी। गाना का अंतिम लाइन में बतावल गई, जय जखार गुरु जद्दू लौटन लालता स्वर्ग में डोले, श्री नारायण शिव दयाल संग मितवा जय जय बोले, अरे सीता के माने माई लक्ष्मण लिखता श्री नारायण ओम प्रकाश।

0: तो श्रोता लोगिन ई रहल रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के बिरहा रवा सभी के बहुते अच्छा लागल होई। तो अगर रवा सभी चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी तक पहुंचावे के तो हमनी के व्हाट्सएप नंबर बा 98527888291 और ईमेल आईडी बा radiorimjhim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज पिन कोड 84 14 28। रोज सभी कोनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। तो चलिए अब हमके जाए के दी इजाजत, नमस्कार और इस सुनत रहे अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने

0: की गारंटी। S2 बाजार होलसेल मार्ट, यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
3: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान हिसार आमंत्रित कर रहा है कार्यालय अधीक्षक अराजपत्रित लेवल 6 के एक पद के लिए आवेदन। पात्रता शर्तों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं दिनांक 29 अगस्त से 4 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। इसके अतिरिक्त इस वेबसाइट पर भी ये जानकारी उपलब्ध है www.agricoop.nic.in। CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आमंत्रित कर रहा है इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। कनिष्ठ आशुलिपिक, जूनियर सचिवालय सहायक और जूनियर हिंदी अनुवादक। विस्तृत विज्ञापन के लिए आप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट www.neist.res.in। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। सहायक प्रबंधक सिविल तथा सहायक प्रबंधक सिविल E2, इनमें से एक पद अनारक्षित है। पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र, पदों के संबंध में विवरण, चयन प्रक्रिया, संशोधन आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की वेबसाइट www.ncrtc.in। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की ओर से NIII कोलकाता और दिल्ली में अनुबंध आधार पर इन पदों को भरने के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित हैं। पद हैं सहायक प्रोफेसर केस टेकिंग और रेपर्टरी, सहायक प्रोफेसर तथा कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। ये नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर की जानी है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की वेबसाइट nih.ayush.gov.in। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता का एक पद रिक्त है। इसे भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन वॉक इन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान की वेबसाइट www.cswcrtiweb.org। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत श्री गुरु गोविंद सिंह वाणिज्य महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभागों के नाम हैं वाणिज्य, जिसमें 3 रिक्तियां उपलब्ध हैं, पंजाबी भाषा 1 रिक्ति, गणित 1 और पर्यावरण अध्ययन EVS 1 रिक्ति। इन पदों के संबंध में शैक्षिक योग्यता, आरक्षण, वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.sggscc.ac.in। आवेदन के लिए ये वेब लिंक भी देख सकते हैं rec.uod.ac.in। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के पात्र अधिकारियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के एक स्वीकृत पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद के लिए वेतन, अपेक्षित अर्हताएं, अन्य पात्रता मानदंड तथा आवेदन पत्र आप देख सकते हैं अकादमी की इस वेबसाइट पर www.svpnpa.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
4: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
5: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
4: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
8: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
9: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में MSME के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
12: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
13: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
14: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
15: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
16: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
15: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
16: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
15: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
16: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
15: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
16: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
17: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
18: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
15: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
16: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
16: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
16: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
16: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
19: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है?
20: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
19: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
20: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
19: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
20: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
19: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
15: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
21: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम का होगा आयोजन, तैयारी शुरू। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की गुणवत्ता की गई जांच। 4 प्रधानाध्यापकों को किया गया निलंबित। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज की गई प्रेस वार्ता और बाढ़ से पूर्व तैयारियों की गई समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 सितंबर को आयोजित होने वाले हिंदी दिवस के कार्यक्रम को लेकर आज बैठक की गई, जिसमें सभी आवश्यक तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने इस बैठक का नेतृत्व किया और इस बैठक में हिंदी दिवस को व्यापक और प्रभावी तरीके से मनाने और आम लोगों, विद्यार्थियों और सरकारी कर्मियों के बीच हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि हिंदी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जन संचार की महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी दिवस का उद्देश्य केवल एक दिन हिंदी का उत्सव मनाना नहीं, बल्कि दैनिक जीवन, शिक्षा एवं सरकारी कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने हिंदी के प्रति विद्यार्थियों और युवाओं में रुचि विकसित करने और उन्हें रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया। इस दौरान बताया गया कि सभी विद्यालयों में हिंदी दिवस के अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होगा। साथ ही जिले में सभी सरकारी कर्मियों को हिंदी दिवस के अवसर पर एक टिप्पणी लिखने का निर्देश दिया गया। इनमें से जिन कर्मियों की टिप्पणी सबसे बेहतर होगी, उसमें हिंदी की भाषा, लेखनी इत्यादि के आधार पर इसमें बेहतर टिप्पणी करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा और वाद विवाद प्रतियोगिता में भी जो छात्र बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने अलग अलग मामलों में 4 प्रधानाध्यापकों को निलंबित किया है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि डीएलएड प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण उपस्थिति में गड़बड़ी के आरोप में प्रधान शिक्षिका सना रियाज को निलंबित किया गया। प्रशिक्षण से जुड़े अभिलेखों और उपस्थिति में अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया और जांच में प्रशिक्षण अवधि में अनुपस्थिति के बावजूद उपस्थिति दर्ज कराने, बिना अनुमति विदेश यात्रा और गलत उपस्थिति के आधार पर वेतन लेने समेत कई गंभीर आरोप सामने आए। इस मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कुचायकोट प्रखंड संसाधन केंद्र निर्धारित किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने इसकी जानकारी दी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की प्रगति और निर्माण गुणवत्ता की विशेष जांच की गई। इस दौरान अभियान चलाकर भवन निर्माण और स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा कराए जा रहे पंचायत सरकार भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बैरागी टोला फुलवरिया थावे कुचायकोट इत्यादि क्षेत्रों में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की जांच की गई। इस दौरान भवन निर्माण की प्रगति, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य तथा निर्माण की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। इधर बरौली के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरफरा बालक के प्रधानाध्यापक विनय किशोर मांझी को भी शिक्षा सेवक चयन में गड़बड़ी को लेकर निलंबित किया गया। ये भी यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी के आरोप में तत्काल प्रभाव से इन्हें भी निलंबित किया गया और जांच में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आने के बाद पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई। डीओ ने कर्तव्यहीनता, लापरवाही और विभागीय नियमों की अवहेलना को लेकर यह कार्रवाई की है। साथ ही फर्जी उपस्थिति और एमडीएम में अनियमितता मिलने पर बैकुंठपुर के राजकीय मध्य विद्यालय साफियाबाद के प्रधानाध्यापक गयासुद्दीन साई को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। औचक निरीक्षण में 185 छात्रों की उपस्थिति दर्ज थी, जबकि मौके पर सिर्फ 100 छात्र मिले। एमडीएम व्यवस्था, पंजी संधारण और वित्तीय प्रबंधन में भी अनियमितता पाई गई। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर डीओ ने निलंबन के साथ ही विभागीय कार्रवाई का आदेश भी दिया है। साथ ही बैकुंठपुर प्रखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय एकडेरवा के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार सिंह को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। औचक निरीक्षण में दर्ज उपस्थिति और वास्तविक छात्रों की संख्या में बड़ा अंतर मिला। एमडीएम के चावल में 350 किलो की कमी, पंजी में छेड़छाड़ और कैशबुक उपलब्ध नहीं कराने समेत कई अनियमितता सामने आई। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने के बाद डीओ ने निलंबन की कार्रवाई का आदेश दिया और विभागीय जांच का भी आदेश दिया गया है। 12 सितंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने प्रेस वार्ता की और आम जनता से भी निवेदन किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक वादों का निष्पादन करवाएं और राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। इस बार परिवहन विभाग और ट्रैफिक चालान का भी काफी बेहतर तरीके से राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन किया जाएगा। ट्रैफिक चालान में 50% की छूट दी जाएगी। इसको लेकर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जो जानकारी दी उसके अनुसार
1: 12 तारीख को नेशनल लोक अदालत लग रहा है, इस बार क्या कुछ कहेंगे?
2: मैं अनुप कुमार उपाध्याय, सचिव जिला विधिक संघ विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज। आप मीडिया के माध्यम से गोपालगंज की जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस साल की यह तीसरी लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में दो तरह के मामलों का निष्पादन किया जाता है। पहला होता है प्री लिटिगेशन और दूसरा होता है पोस्ट लिटिगेशन। प्री लिटिगेशन में वे मामले आते हैं जो न्यायालय में अभी पंजीकृत नहीं हुए हैं और पोस्ट लिटिगेशन में वे मामले आते हैं जो न्यायालय में पंजीकृत कर दिए गए हैं। प्री लिटिगेशन में जैसे बैंक से संबंधित मामले, महिला हेल्पलाइन से संबंधित मामले, ग्राम कचहरी से संबंधित मामले और ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले आते हैं। पोस्ट लिटिगेशन में कंपाउंडेबल नेचर के मामले आते हैं। कंपाउंडेबल नेचर जो है सीआरपीसी के धारा 320 में और बीएनएसएस के धारा 359 में बताए गए हैं। इस बार दो हेल्प डेस्क 5 सितंबर से ही आयोजित की जा रही हैं। एक हेल्प डेस्क जो है लोक अदालत के पास लगाया गया है और दूसरा हेल्प डेस्क नई कोर्ट बिल्डिंग में लिटिगेंट और एडवोकेट साइड जिधर से आते हैं और सीढ़ी के पास वहीं हेल्प डेस्क लगाया गया है। हेल्प डेस्क में जो है कोई भी व्यक्ति आएगा और अपने मामले को बताएगा, वहां पीएलबी बैठा रहेगा, वो मामले को नोट कर लेगा और उस कोर्ट से या मेरे पास आएगा और उस मामले को लोक अदालत में निष्पादित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले जो हैं, ट्रैफिक चालान के संबंध में भी डीटीओ ऑफिस में एक हेल्प डेस्क लगाया गया है और एक ट्रैफिक थाना में हेल्प डेस्क जो सोमवार से चालू हो जाएगा। यहाँ पे जो भी पीड़ित पक्षकार होंगे जिनका मामला 90 दिन से पुराना होगा वे लोग आएंगे और अगर उनके मामले में जुर्माना राशि 50% से कम होने वाला रहेगा तो कोशिश ये की जाएगी कि इसी दौरान उनका कागजी कार्रवाई पूरा कर लिया जाए और लोक अदालत के दिन उस मामले को निष्पादित कर दिया जाएगा। इस बार जो है प्री लिटिगेशन के संबंध में भी शनिवार से लिटिगेंट नई कोर्ट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे जिधर से लिटिगेंट और एडवोकेट आते हैं वहीं पे आयोजित की जा रही है। प्री सिटिंग में कुछ पीओ भी आएंगे, कुछ पीएलबी बैठे रहेंगे, वो मामले को वहां नोट किया जाएगा और उनका निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से करने की कोशिश की जाएगी। इस बार जो है प्री लिटिगेशन में 20,000 नोटिस जारी की गई है और संभावना है कि 1500 मामलों का निष्पादन किया जाएगा और कोर्ट केसेस में 4200 नोटिस जारी की गई है और जो 2000 मामले संबंधित है इसमें भी संभावना है कि 1000 मामलों का निष्पादन किया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने मामले के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो वो लोक अदालत में या संबंधित न्यायालय में आके लोक अदालत से पहले अपने मामले को वहां बता सकता है और उसको निष्पादित किया जाएगा।
3: संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू की हैं। इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी की गई जिसकी अध्यक्षता बिहार विधान परिषद की आपदा प्रबंधन पुनर्वास समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने की। बैठक में जिले में बाढ़ की स्थिति, प्रभावित क्षेत्रों, राहत बचाव कार्य, स्वास्थ्य सुविधाओं, तटबंधों की सुरक्षा तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में हथुआ के विधायक राम सेवक सिंह, बरौली के विधायक मंजीत सिंह, जिलाधिकारी समीर सौरभ, उप विकास आयुक्त गौरव कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि जिले के 14 अंचलों में से 6 अंचल बैकुंठपुर, सिधौलिया, बरौली, माझा, गोपालगंज और कुचायकोट जल जमाव और बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। गंडक नदी को जिले में बाढ़ का प्रमुख कारण बताया गया। गंडक नदी उत्तर प्रदेश सीमा से अहिरौली दान से प्रवेश कर बैकुंठपुर अंचल के मटियारी तक करीब 80 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में प्रभावित होती है। अधिकारियों ने बताया कि नेपाल की तराई में अत्यधिक वर्षा के कारण नदी में पानी बढ़ने और वाल्मीकि नगर बराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसको देखते हुए तटबंधों की निगरानी और संवेदनशील स्थलों पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। राहत और बचाव के लिए जरूरी संसाधनों को भी अलर्ट किया गया है और इसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। बाढ़ प्रभावित अंचलों के लिए पर्याप्त पॉलिथीन शीट, ईसी बैग और अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही सारण तटबंध की 72 किलोमीटर लंबाई और छरकियों की करीब 85.84 किलोमीटर लंबाई की सतत निगरानी हो रही है। फ्रंट लाइन पर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर श्रमिकों के द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। स्लुइस गेट की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सभी प्रखंडों में चिकित्सा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। शहर के प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजीव दयाल को आज असहाय और जरूरतमंद मरीजों के प्रति उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा और मानवीय संवेदनाओं के लिए छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट के द्वारा सम्मानित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय और शिक्षक सह पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश के साथ संयुक्त रूप से डॉक्टर संजीव दयाल को अंगवस्त्र और शिवाजी का मोमेंटो और पौधा भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर राजीव दयाल ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान वास्तव में उन मरीजों के आशीर्वाद का प्रतिफल है जो आर्थिक अभाव के कारण बेहतर इलाज कराने में असमर्थ होते हैं, जिन्हें मैं सेवा भाव से ठीक करने का प्रयास करता हूं। उन्होंने कहा कि समाज के जरूरतमंद असहाय मरीजों की सेवा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। गोपालगंज शहर के VM फील्ड के पास एक छात्र को अज्ञात बदमाशों ने चाकू गोद दिया। छात्र के गर्दन में छुरी लगी, युवक लहूलुहान होकर गिर गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां इसका इलाज चल रहा है। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि घायल युवक माझा प्रखंड के भैंसही गांव का संतोष सिंह का पुत्र सागर सुजल सिंह बताया जा रहा है। यह VM फील्ड के पास ही किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता है और इसी बीच VM फील्ड के तरफ निकला था, तभी अज्ञात बदमाशों ने इस पर हमला कर दिया और चाकू से कूद कर इसको जख्मी कर दिया। फिलहाल घायल के बयान पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अंकिता होटल में हुई पुलिस की छापेमारी के बाद आज पुलिस की तरफ से भी बयान जारी किया गया। इसको लेकर सदर SDPO 2 ने इस कार्रवाई के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया,
5: दिनांक 2/9/26 को समय करीब 11:35 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि यादवपुर मेन रोड स्थित एक होटल है, नाम है अंकिता, इसमें देह व्यापार का धंधा कराया जाता है। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में गोपालगंज नगर थाना के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम में महिला पुलिस पदाधिकारी और महिला कर्मी को भी शामिल किया गया और सत्यापन एवं कार्रवाई हेतु पूरी टीम जब अंकिता होटल के पास गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष वहां पर जांच किया गया और कार्रवाई की गई तो कुछ लड़के लड़कियों को बरामद किया गया। कुछ लड़के लड़कियों को रूम से और कुछ लड़के लड़कियों को हॉल में भी पाया गया। वहां पर स्टाफ को खोजा गया तो मैनेजर देख के

0: मैनेजर और जो स्टाफ पकड़ाया है उन पर भी विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और उन लोगों को पकड़ने हेतु अग्रिम कार्रवाई छापामारी चल रही है।
1: जिला प्रशासन के द्वारा आपदा से पूर्व तैयारी, जन जागरूकता और सुरक्षित समुदाय के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर माझा के माधव हाई स्कूल में NDRF की 9P टीम के द्वारा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान सुरक्षित रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। NDRF टीम के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी जानकारियां दी, विशेष रूप से प्राथमिक उपचार, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, रक्तस्राव को नियंत्रित करने, CPR, सर्पदंश की स्थिति में आवश्यक सावधानियां, आंधी तूफान और वज्रपात से बचाव तथा बाढ़ के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा नियमों को लेकर विशेष रूप से बच्चों को जानकारी दी गई। सरकार के निर्देशानुसार आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासन गंभीर है। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में DM ग्रीवांश सेल की महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भू अर्जन पदाधिकारी सहित तमाम संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने आम जनों से प्राप्त शिकायतों, आवेदनों तथा उनके निष्पादन की स्थिति में विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों की जल्द से जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और लापरवाह कर्मियों को फटकार लगाई गई। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का निष्पादन सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, ऐसे में इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम का होगा आयोजन, तैयारी शुरू। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की गुणवत्ता की गई जांच। 4 प्रधानाध्यापकों को किया गया निलंबित। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज की गई प्रेस वार्ता और बाढ़ से पूर्व तैयारियों की गई समीक्षा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
6: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक

0: से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, Jio, Airtel, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू, सो SMS फरमाइश के साथ समय 9:27 हो रहे हमारे स्टूडियो गिटी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277165696। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। यदि पुराने गाने आप पसंद करते हैं तो बिल्कुल आप अभी गाने की फरमाइश करें, हम आपकी फरमाइश कुछ ही समय में पूरी करेंगे। और ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश आप सभी को करना है तो पुराने गाने होने चाहिए। और आपके मैसेज में नाम, पता, कहां से मैसेज कर रहे हैं और गाने की शुद्ध नाम बतानी है, ताकि आप जो कहे उस गाने की फरमाइश पूरी की जाए। ऐसे वैसे गाने की फरमाइश बीच में से आप लोग नाम बताते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कि पता ना ये गाने हम तो प्ले कर दें, और प्ले करने के बाद से पता चले कि ये तो गाने दूसरे हैं, तो हमारा समय बहुत अनमोल है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि कई श्रोतागण इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं और गाने की फरमाइश करते हैं, अपने गाने को लेकर इंतज़ार में लगे रहते हैं, और इसमें इधर उधर होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है कि समय बर्बाद हो गया और जिनकी फरमाइश थी उनकी फरमाइश भी पूरी ना हो पाई। तो आप लोग से कहना यही है कि सीधी सी बात, आप गाने की फरमाइश जब भी करें तो पूरा जांच पड़ताल करके नाम बताएं, ताकि आपकी फरमाइश आपकी च्वाइस के अनुसार पूरी की जा सके। तो फिलहाल बढ़ते आगे, कुछ मैसेज पहुंचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आप लोग भी अपना कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का।

यहाँ पे मेरे पास पहला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि आई एम सम्मी आजम फ्रॉम कपलपुरा थावे गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और गाने के फरमाइश करते हैं, कहते हैं कि मैं गाना सुनना चाहता हूँ मन मेरा, तो वर्जन 2 सुनना चाहते हैं। तो वर्जन 2 तो नहीं सुनाएंगे, ओल्ड गाने की फरमाइश हम पूरी करेंगे। यदि आप सुन रहे हैं तो ज़रूर बताएं कि आप ओल्ड गाने सुनना चाहेंगे कि नहीं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते भाई, कैसे हैं? ठीक है। सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक है। मुझे गाना सुनना है, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। सबसे पहले आपको और सभी दोस्तों के साथ इस मैसेज को करती हैं सविता चौहान भोज छपरा से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि नमस्ते सोनो भैया जी, रंजीत कुशवाहा महुआ वैशाली से, और हमें गाना सुनना है, कृपया गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, मैं कमलेश जी ब्लेज सबिया फील्ड गोपालगंज से, और मैं भी जुड़ चुका हूँ, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय, कैसे हैं आप सर? और सॉन्ग प्यार तो इससे करती हूँ, देख मेरे आँखों में तेरे बिंद नींद नहीं आती है रातों में। डेडिकेट सिस्टर काजल, पिंकी, श्रेया, सनम और सभी दोस्तों को। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा। मनीषा फ्रॉम अमो मोजम से मैसेज किए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और तो बिल्कुल एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी की जाएगी। अभी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तो पहले गाने की फरमाइश हम पूरी करते हैं और सुनते हैं सविता चौहान की फरमाइश। हम सभी रेडियो रेमझिम 90.4 FM पे।

काफी प्यारा शो है। रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यदि आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गाने तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कौन से गाने सुनने हैं, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, इतना ही सारी बातें टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 7277-1665 पे। और कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, कुछ तो देखा जाए। आगे लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, और उससे पहले लिखती हैं, हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए और मुझे भी आज सॉन्ग सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से। और आगे मैसेज, सर नमस्ते, मैं गनाथ माझी जी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बन रहे हमारे साथ, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कि मेरा गाना बजाइएगा प्लीज़ सर। बिल्कुल बजेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सोनू बाबू, हम भी साथ में जुड़ गए हैं, तो बिल्कुल जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया खिखरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगले गाने की फरमाइश किए हुए हैं रंजीत जी, तो इनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। यह मैसेज वैशाली से पहुंचाए हुए हैं। गाने का बोल देते हैं, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगी। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
7: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: Excuse me boss, you have a text message.
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
12: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
12: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
12: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
11: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
9: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।
13: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 90.4 FM पे। सुचल रहा है SMS फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया कि काफ़ी प्यारा शम, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया है कि जो आगे मैसेज करते हैं उन लोगों को नहीं सुनाते हैं और जो बाद में मैसेज करते हैं उन लोगों को सुनाते हैं, ऐसा नहीं है। मैसेज हमारे पास जैसे जैसे पहुँचे रहते हैं वैसे वैसे फरमाइश पूरी की जाती है और कभी कभार इधर उधर हो जाता है, और आपकी फरमाइश है तो आपकी फरमाइश हम अभी प्ले करने ही वाले थे, तब तक आपका मैसेज पहुँचा हुआ है तो आप नाराज ना हो, एक एक करके सब की फरमाइश पूरा करने का मेरा प्रयास रहता है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनो भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैं गयनाथ माझी जी मैसेज किए हुए हैं, तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुँची है तो आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज है और अगले गाने की फरमाइश हम, चलिए मैसेज को रोकते हैं, गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं इनकी फरमाइश। एक और मैसेज पहुंचा, लिखा गया है कि चूड़ी मजा ना देगी, चूड़ी मजा दे या ना दे, पर हमें रिमझिम का ये गीत, ये हिट कार्यक्रम और सोनू बाबू का प्रस्तुति मज़ा ज़रूर देता है, शुक्रिया। मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। आगे बढ़ते हैं, अब गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और गाने की फरमाइश करती हैं मनीषा अमा मौजम से और गाने का बोल देती हैं, प्यार तुझसे करती हूँ देख मेरी आंखों में।

रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे इस कमाल के शौक को सुन रहे हैं और बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ पे मैसेज भी पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा गाना नहीं बजेगा क्या। बिल्कुल आप ही के गाने अभी बजने ही वाले हैं और तैयारी पूरी कर ली गई है आपके गाने प्ले करने की। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक सॉन्ग सुनाने के लिए, चलिए आपको भी धन्यवाद है। एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया कि धन्यवाद सुनो भैया गाना सुनाने के लिए। मैसेज करते हैं रंजीत जी, तो चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। आगे भी बने रहे हमारे साथ, आगे गाने की फरमाइश हमारे पास मिंगनाथ माझी जी किए हुए हैं, तो इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इनकी तरफ से फरमाइश है तो प्ले करते हैं और सुनते हैं

गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, ए

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब। और छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और अभी ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम के कार्यक्रम एसएमएस फरमाइश में। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि रात में चीनी के साथ रोटी लपेट कर रख दी, अब घर वाले रिपोर्ट लिखवाने गए हैं कि घर से चीनी चोरी हो गई है। 100 ग्राम चीनी खाई थी, घर वाले आधी बोरी बता रहे हैं। बड़रिया थाना क्षेत्र बालापुर से सनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं। तो बात यह है कि चीनी की रेट बढ़ गई, जिसके वजह से सब कोई उसको एकदम सुरक्षित अपने निगरानी में रख रहा है। और आजकल तो जानते ही हैं कि सब कोई सुबह सुबह उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह चाय गरम गरम सबको चाहिए, तो चीनी तो रखना पड़ेगा ही। इसलिए शायद उन्होंने ये सभी किया होगा। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि और इस मैसेज को करती हैं रोशनी और कहती हैं कि मेरी भी एक फरमाइश है, और गाने की फरमाइश करती हैं, फूल मांगो ना बहार मांगो, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगो। डेडिकेट आपको एंड मेरी सिस्टर हैं सब प्रियांशी पूजा एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे।

रेडियो रेमझिम 90.4 एफएम पे इस प्यारे से सॉन्ग को सुन रहे थे हम सभी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स सॉन्ग प्ले करने के लिए। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग रहा। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं अजीत कुमार बिदबेरवा से, और मुझे सॉन्ग सुनना है। और सॉन्ग का बोल देते हैं, जाए चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़ी मोरे जान। भोजपुरी गाने के फरमाइश किए हुए हैं रितेश पांडे जी की आवाज़ में, तो इसलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं। आप भी सुने, एंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रेमझिम 90.4 एफएम पे।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सुबह और एक कार्यक्रम चल रहा है। इसमें इस फरमाइश का और दर्द भरी गाने की फरमाइश अजीत जी के तरफ से पहुंचा हुआ था और हम सभी ने सुना और इनके तरफ से भी मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक्स, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, मैं निखिल कुमार पुरानी चौक से और आज मैं पहली बार मैसेज किया हूँ, मुझे सॉन्ग सुनना है और सॉन्ग का बोल दिया गया है घूंघट की आड़ में दिलबर का श्रृंगार अधूरा रहता है। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और डेडिकेट करते हैं ऑल रेडियो रिमझिम लिसनर को। तो आपसे कहना यही है कि जब भी आप कार्यक्रम में अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं सप्ताह में एक बार। इसके लिए टेक्स्ट मैसेज तो आप तो किए हैं, ये तो मालूम हो ही गया है, बशर्ते आप पुराने गाने की फरमाइश करेंगे हमेशा जैसे कि आज किए हुए। तो फरमाइश प्ले करने की फुल कोशिश रहेगी। जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उन सभी से कहना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो पुराने गाने का फरमाइश करें। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया कि काफ़ी दर्द भरा सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी, बिल्कुल दर्द भरी गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ था। आगे मैसेज है और तो मैसेज को हम शामिल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो भी मैसेज आते हैं सब शामिल करने योग्य नहीं रहते हैं। तो फिलहाल कार्यक्रम को यहीं पे अंतिम रूप देते हैं और अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहता है लेकिन क्या ही करें, मेरे पास जितना समय है उतना ही मैं कुछ करना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें रेडियो एमसीएम 94 एफएम जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं हो सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉ जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. India and Belgium today exchanged several agreements including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes including cybercrime and diplomatic training. In his press statement, Prime Minister Modi emphasised that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He highlighted that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.
1: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
3: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today lauded the small and medium enterprises industries for playing a pivotal role in achieving 7.8% GDP growth in the first quarter of the current fiscal year. While chairing a national workshop on leveraging FTA's outreach program in New Delhi, Mr. Goyal expressed confidence that free trade agreements signed with various countries will pave a steadfast pathway in becoming a major exporter. In Uttar Pradesh, heavy rain and the release of water from barrages have affected 23 districts from flood. Prime Minister Narendra Modi today spoke to District Magistrate Satyendra Kumar of his parliamentary constituency Varanasi over the phone to inquire about the flood situation. Prime Minister inquired about the water levels of rivers in Kashi and the arrangements being made in relief camps. Chief Minister Yogi Adityanath also conducted an aerial survey of flood-affected areas in Farukhabad. He reviewed rescue and relief operations. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Kyiv and discussed on approaches to end the ongoing conflict. He also met his Ukrainian counterpart Andriy Sybiha. Dr. S. Jaishankar said that India has consistently maintained that this is not an era of war. Dr. Jaishankar also highlighted attacks on commercial shipping during such conflicts and said that it impacts many nations of the global south in a variety of ways, leading to fuel, fertilizer and food shortages. Describing India as a global power, Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha said his country welcomes Prime Minister Narendra Modi's call to attend the ongoing conflict between Ukraine and Russia. President Draupadi Murmu has extended greetings to the citizens on the eve of Janmashtami. In her message, the president said that the life and teachings of Lord Krishna breathe a new life into cultural and philosophical heritage of India. Meanwhile, the city of Lord Krishna, Mathura, Vrindavan, is decked up for the grand celebration tomorrow on the occasion of Janmashtami. According to our correspondent, preparations are in full swing at Mathura, Vrindavan ahead of Janmashtami, with over 5 lakh devotees expected to visit the city. In badminton, India's ace shuttler Kidambi Srikanth will face Hong Kong's Lee Shuk Yui tomorrow in the men's singles quarterfinals at the China Masters Super 750 in Shenzhen. Srikanth beat Canada's world number 9 Victor Lai 21-18-21-19 in pre-quarterfinals today. In women's cricket, India women defeated Hong Kong by 137 runs. India had set a target of 194 for Hong Kong in their second Group A match in the 2020 Asia Cup at Dubai International Stadium in UAE tonight. And that's the end of this news bulletin.

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: सलाम मैम। जी सलाम।
2: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी धन्यवाद कॉल उठा करने का। मैम
2: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी अच्छे हैं मैम। हमको हमारा नाम बता सकती हूँ मैम?
2: जी शकूर अली।
1: जी मैम।
2: गोपालगंज से।
1: जी मैम, गोपालगंज से रहने वाले हैं, आज तो से बोल रहे हैं।
2: तो कौन सा गाना सुनना है आपको बता दीजिए।
1: आज हमको उससे भी अच्छा गाना सुनना है, देखेंगे वाला वैसा है कि नहीं। मैम एक नंबर वाला कॉल है ना?
2: आपका एक नंबर कॉल है, आज फर्स्ट बार में लग गया है।
1: हाँ, आज मेहनत सफल हुआ, 2 मिनट पहले से लगा रहे थे। जी मैम, आज तो मेरा फरमाइश है, ये गाना है अरे इस में पागल हो गया दीवाना से। अरे
2: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सुनवाना है आपको, सभी आर्य को, खास कर मनोरमा जी को, क्योंकि वो मेरा नहीं बजाती है गाना।
2: अच्छा, गाना नहीं बजाती है इसलिए
1: आज भी अच्छा फरमाइश कर रहा हूँ कि आज तो बजा दे अच्छा समझ।
2: नहीं ऐसा नहीं है,
1: क्योंकि हम पुराने हैं इसलिए हमको लगा लोग भूल जाते हैं।
2: नहीं नहीं, भूलते तो किसी को नहीं है।
1: आपका कोई लिसनर था, बहुत ज्यादा देर तक बात किया इसी शो में।
2: इसी शो में?
1: हाँ हेलो माय चॉइस।
2: हाँ वो
1: रानी का नाम था।
2: हाँ हाँ रानी।
1: जी मैम, तो आज कितने बजे बजेगा?
2: आज आपका तो मतलब शाम को बजेगा, नहीं तो अगर मनोरमा जी रिकॉर्ड करेंगे उनका कॉल बजेगा तो कल बजेगा शाम।
1: जी मैम, वाला जरूर चलाइएगा, पहले वाला जो फरमाइश किए हैं।
2: अच्छा जी, बिल्कुल चलाएंगे।
1: क्यों क्यों नहीं चलाए, आप लोग मानिए एक बार।
2: हाँ जी, उसको भी देख रहे हैं।
1: जी मैम, तो धन्यवाद बोलेंगे। और खाना वाना हो गया आपका?
2: हाँ हाँ, खाना हो गया है
1: जी। और पानी का बोतल साथ में रखिए।
2: जी बिल्कुल।

0: आपको अभी से लेकर के मतलब योर वॉइस चलाना हो ना, चलिए तो एडवांस में धन्यवाद।
1: ओके, फिर गाना आपका प्ले कर रहा है, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
0: ओके मैम, बाय
1: बाय।

0: अगर पानी हो मंजिल खुद पे रहनुमा बनो, अगर पानी हो मंजिल खुद पे रहनुमा बनो, अक्सर वही लोग भटकते हैं जिनको सहारा नहीं मिलता। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो।

0: 94 FM में।
1: जी कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं कमरान नसीब, विलेज पकड़ी सुल्तान, डिस्ट्रिक्ट सिवान, ठीक हूँ। इधर का मौसम कैसा है?
0: इधर का तो मौसम काफी सुहाना बना हुआ है।
1: अच्छा, इधर तो धूप है, हल्का बारिश हुआ था दिल्ली में, अब धूप हो गया।
0: अच्छा,
1: घर परिवार सब बंद?
0: सब कोई ठीक है।
1: कल तो मेरा कॉल लग गया था यूरोपन भी, क्या बहुत दिन हो गया, तो मैंने कर दिया कॉल। आज मैं बोला की चलो मैं चॉइस में कॉल कर लूँ, थोड़ा लेट हो गया।
0: नहीं है टाइमिंग आपका?
1: सब तो सही है, और बाकी सब ठीक ठाक है, चल रहा है बढ़िया। सोनू भाई वाला आपका शो चलता है?
0: हाँ चलता है।
1: अच्छा चलता है ना, आप लोग सुन नहीं पाते है ना, और तो हमको आज सुना दीजिए।
0: बता दीजिए
1: कौन सा गाना सुनो आज? हाँ आज हमको सुना दीजिए, मैं गा के सुनाता हूँ, ठीक है?

0: यही वाला सॉन्ग सुनना है।
1: ओके, और गाना किसी को सुनाना है?
0: सबसे पहले तो आपको आयशा सबनम सिद्दीकी सबीना सबा सिद्दीकी सेना हाजरा रोशनी कुमारी निशा सुकुनवा शाहजहाँ सजदा अंसारी और हरकुआ दिलीप राम भास्कर गर्जू मुकेश उत्तम सोनी दिवेंदर और अहमद अली अख्तारी गुड़िया परमीन हनीमता जी आयशा की जितने लोग सुन रहे सबको सुना दीजिएगा। रेडियो रिंग हिंग तो हमेशा नंबर वन रहता है, नंबर वन है क्योंकि रेडियो रिंग हिंग के जो डायरेक्टर सर है वो भाई मत फोन मत करनी है। जब रिंग हिंग का जब मालिकर मत हो तो रिंग हिंग मत रहेगा, हम उसके आगे कैसे नहीं मस्त रहेंगे। ओके नमस्कार।
1: ओके नमस्कार। गाना प्ले कर रहे हैं।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो
5: हेलो हेलो हेलो हेलो।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: रेडियो 90.4 FM। जी जी, क्या हाल चाल है?
7: ठीक है, आप बताएं।
6: जी हम सब भी ठीक हैं।
7: नहीं, ये नकबंदी वाला गाना भी सुनना है।
6: कौन सा?
7: नकबंदी, नकबंदी वाला।
6: अच्छा अच्छा, नकबंदी।
7: जी जी।
6: और गाना किसी को सुनाना भी है?
7: अमन अशीर पौ राधे तलरा।
6: और गाना तब प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

chaka maka maka naka maka naka jing jing chaka chaka.

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो FM 94 FM में।
0: थैंक यू मैडम जी, हमको गाना सुना दीजिए।
1: जी बिल्कुल सुनाएंगे, नाम बता दीजिए।
0: ये दुनिया ये महफिल मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: बस जी, जितना ये फिल्म सुनते हैं गोपालगंज या इंडिया में जितने भी हमारे दो साथी जो है, सब किसी को सुनाना है। फिल्म के जितने प्रेमी आदमी है उन सबको।
1: तो आप अपना नाम भी बता दीजिए ताकि लोगों को पता चले।
0: मेरा नाम अरुण है, ठीक है।
1: ओके, फिर गाना आपका प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
0: मैडम जी, ये गाना कब से कब तक ये मतलब सुनने को मिल जाता है?
1: ये शाम को बजता है 5 से 7 के बीच।
0: सुबह में चांस है क्या?
1: हाँ, सुबह में बजता है, सेम रिपीट चलता है 9 से 11
0: जी,
1: और शाम को 5।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
1: hello, hello, hello, hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है रेडियो 3.4 FM में।
6: जी योगेश जांगरे बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
5: जी क्या हाल चाल है आपका?
6: बढ़िया है। अच्छा
5: तो और बताइए क्या हो रहा है अभी?
6: अभी तो फिलहाल घर ही में है।
5: तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: फिल्म संजोग से सुनवा दीजिए यशोदा का नंदलाला।
5: जी जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
6: कुछ मित्र है, श्रीपाल गोयल जी है, लोकेन वर्मा जी है, दिलीप पहुजा जी है, रोशन देवांगन जी है और सभी साथी।
5: जी तो गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
6: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
5: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा, जिला गुना।
1: जी, तो कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, अभी तो घर पर है क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है अभी तो।
1: अच्छा जी,
0: और क्या,
1: जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है?
0: हाँ, तैयारी चल रही है।
1: चलिए बढ़िया है। तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
0: वो कृष्ण भगवान का सुनवा दीजिए, या सोमती मैया से बोले नंदलाल, राधा क्यों गोरी में पूछा जी वाला।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ, डेडी कह रहे हमारे सुनील साहू जी हैं, ज्योति साहू जी हैं, मकसूदगढ़ से, और जीतेन दागड़ जी हैं, और आपके लिए भी है डेडी कह गाना।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए। ठीक
0: है जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो
2: हेलो
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 29 94 911। जी हाँ, 80 29 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है।
6: जी नमस्ते दी और राधे राधे।
5: नमस्ते राधे राधे,
6: कैसी हैं?
5: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए रानी जी कैसे हैं?
6: बिल्कुल मस्त हूँ और पहचानने के लिए दिल से शुक्रिया आपको। आपको लग रहा है कि अब बड़ी देर नहीं होगा पहचानने में?
5: नहीं, आपको बिल्कुल देर लगेगा।
6: और बताए, नाश्ता वास्ता कराई है कि नहीं?
5: जी हम नाश्ता वास्ता कराते हैं।
6: जी, और नाश्ता में क्या हुआ?
5: रोटी सब है इस समय।
6: अच्छा, रोटी पसंद है?
5: हाँ हेलो बोलिए।
6: हाँ बोलिए। और मौसम कैसा है दी?
5: मौसम तो काफी सुहाना बना हुआ है, स्वच्छ है और हल्की
6: धूप है और जो हवाएं चल रही है बड़ी मस्त चल रही है।
5: जी जी बिल्कुल ठंडा ठंडा।
6: और हम लोग सुबह में खेत में गए थे तो इतना अच्छा लग रहा था, धान में इतना पानी लग गया था और सुबह सुबह आज खेत में खादर छिट के आई बन।
5: बहुत अच्छा लगता है घूमने पे।
6: जी जी, पापा गए थे ना छिटने तो हम भी गए थे, तो एक खेत में वो छिट रहे थे और एक खेत में मैं। हम लोग कर लेते हैं लोग खेती की काम।
5: नहीं, सब करना चाहिए, सब सीखना चाहिए, कब क्या करते हो।
6: और आजकल में थोड़ी सी मुझे एक मिनट की भी टाइम नहीं मिलता था और आज मुझे पहली बार मोबाइल दो बार आपसे मौका करने मिल गया बात करने के लिए। जी, और आज पापा नहीं गए हैं, घर पर हैं, तो आज मेरी सिस्टर कॉल कर रही थी मगिन लाग नहीं रही थी।
5: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
6: जी, और आज मुझे फिर से एक हिंदी सॉन्ग सुनना है, बजा दीजिए।
5: बता दीजिए।
6: जी, मूवी के नाम है जोश और उसमें गाना है हारे हारे हारे हारे दिल से हारे।
5: अच्छा जी, और गाना बहुत ही खूबसूरत है, हम भी सुने हुए हैं।
6: जी, और ये गाना के हम लोग जितनी तारीफ करें बहुत करेगा कि भीतर से कम पड़ जाए।
5: तो गाना किसी को सुनाना भी है?
6: जी जी, सबसे पहले आपको और शो के तो होस्ट आप हैं तो आपको तो सुनाना बनता है ना। और फिलहाल लाइव शो कर रहे हैं सोनू सर, उनको भी, मुरमना दी को भी और दिव्या दी को भी और सोनी दी को भी और जितने रेडियो दोस्त हैं। और कल कमरान जी भी कॉल किए थे आपकी शो में और अच्छा है, वो भी आपकी चैनल के पुराना लिसनर हैं और बहुत सीधा सा बात करते हैं।
5: तो मैं आपको मिस कर रहे हैं।
6: और मैंने सुन रही थी, बाकी हुआ था क्या, जब बड़ा फोन मेरे पास आया तो मैं जब आपकी रेडियो रिमझिम को व्हाट्सएप वाला को व्हाट्सएप बनाई तब तक फोन हाथ से चला गया, तो मैंने बोला कि अब मैं किस तरफ आप लोग के जवाब दूं, बाकी व्हाट्सएप बन चुका है और होगा मोबाइल से जरूर जुड़ूंगी अब। जी जी, और आगे भी कॉल लीजिए, आगे भी, आज मौसम बहुत प्यारा है और उन सभी को रेडियो दोस्तों को मेरे जितने मेरे से जान पहचान है उन सभी को रानी की तरफ से।
5: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
6: जी, बाय दी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैम, हम रेडियो रिमझिम बहुत सुनते हैं हम लोग।
0: अच्छा जी, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: हमारा जिया नाम है, जिया यादव।
0: कहाँ से हैं आप जिया जी?
1: गोपालगंज में रेडियो रिमझिम।
0: हाँ हाँ,
1: वहीं से।
0: और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है कबो कबो प्यार में बिछड़ना जरूरी है।
0: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ, फैमिली लोग है सबके घर का।
0: जी जी, और सब कोई ठीक है ना फैमिली में?
1: हाँ सब।
0: ओके, तो फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कॉल देने के लिए। हम 10:59 से लेके अभी टाइम क्या हो रहा है, 10:11:37 हो गया, अब जाके लगी है।
6: अच्छा,
5: और भाती जी का हाल चल रहा है?
6: हमारे तो ठीक बार हुआ, बताए रहुआ कैसन बानी।
5: बस जैसे आवाज टनाटन हमने से आवाज टनाटन तो समझे कि दोनों तरफ घर बराबर बा। काहे कि अपने के बोलिया बहुत मीठ नीक लागेला ना, और काम करत रही आगे बढ़त रही, ये ऊपर वाला से काम ना बा। आप पहले पहले जन इंसान काम पर जाला ओकरा थोड़ा दिक्कत होती करेला, बाद में धीरे धीरे सब कुछ।
6: हेलो
5: जी, बोला जाए
6: तो बता दे कौन सा गाना सुनम?
5: गाना तो सुनने पड़ जाये, बाकी आप बताई पहले मौसम कैसा होगा
6: यहाँ के? तो मौसम काफी सब सुहाना बनल हुए, हल्का हल्का हवा चलता हुए और ठंडा हवा बा, और धूप भी हल्का हल्का निकल।
5: लेकिन सवेरे तो यहाँ दिल्ली में थोड़ा बारिश हो गई, चारों तरफ से काली बदरी छा गए बैठे। बारिश आज होते के संभावना मैंने रुक रुक के बा।
6: अच्छा,
5: तो यही से कौन है की उन्हें मौसम पूछ लिया, काहे की उन्होंने बारिश बहुत जरूरी नहीं बात, ए सी में बोलते जानी
6: बढ़िया मौसम बावे।
5: तो मान लेनी की सबके होके नो ए सी होके चाहिए, मौसम के मजा लेवे के चाहिए ना,
6: काहे ना बिल्कुल लेवे के चाहिए।
5: तो मनोरमा जी नहीं आये का आज?
6: आई बनी होके
5: तारा तू सुनो है आये ना रलन जी?
6: होके हमने शायद फसल होके उन्हें के बताए।
5: बताई इतना दिन देर से प्रतीक्षा करत करत और बुझा तक यहाँ का लड्डू बना के इंजिन पे हमारा चढ़ावे के पड़े।
6: अच्छा, ना ऐसे कोनो बात नहीं है, वो लावत रहेला लगातार तो थोड़ा टाइम लगबे करेला।
5: तो आज एक भोजपुरी गाना हम लेके आए बानी, शादी होते जान भूल जाये बुका हो खेसारी लाल के।
6: और गाना की
5: रानी जी कुछ वो नाम ले रही थी ना, वो मनोरमा जी का काफी नाम ले रही थी, वो काफी देर तक आप लोगों को बात हुआ था ना, मैं कल सुना था। 15-12 मिनट कम से कम बात हुआ।
6: हाँ, 12 मिनट का कॉल केवल उनका ही था।
5: हाँ, इतनी लंबी यही बात है, खाने की अगर बोलिया बहुत निक लगता। जैसे की वहाँ का पुराना श्रोता लिसनर बानी वहाँ का, लेकिन हमी का अनादर रेडियो पर बहुत कोई अच्छा से जाना था ना, तो गाना में रानियों जी डेडिकेट बनी और सविता बबीता निशा गुड़िया सफक गजाला संतरा जी हैं, अहमद भाई है, रवि जी हैं, और उसके बाद कौरान भाई हैं, समीर आलम जी हैं, मुस्तफा आलम जी हैं, आजाद भाई हैं, रोजादीन भाई हैं, और उपेंद्र भैया जी हैं, उसके बाद सोनू भाई हैं, और अफसर भाई हैं, और बाकी जो हम सबकी सहेली छूटा तारे लोग सबको के गानों में डेडिकेट बा, बाकी अपने के नमस्कार बा।
6: जी नमस्कार, फिर गाना प्ले कर।
5: गाना प्ले कर ही बाकी लोग इंतजार बा।
6: सुनत रहे रेडियो 90.4 FM।
5: जी नमस्कार, आपका दिन
6: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
0: प्रणाम। कैसन बानी?
1: हम ठीक बानी, रहुआ बताई रहुआ कैसन बानी।
0: ठीक है बानी। देखिए हमार सार क्या कहता
1: है। क्या कहता
0: है? कहता है कि हम 15 मिनट से लागल बानी तो हमार ना लागल।
1: अच्छा,
0: हाँ लगाते लगाते लाग गए।
1: ऐसा टाइम पे कहीं नहीं है, जैसे कॉल कटल है तैसे और आ गई है, वैसे लाग गई
0: है। 90 बार कह देते वो 11 बजे ट्राई करता है, हम अब गए लगाई नहीं है, दू बेर से तीन बार लगाने तो लग गए।
1: तरीका मालूम बावे की लगावा
0: तरीका के मालूम थोड़े बा, दिलों के दिल से मेल बा। और कहता हम ना लगाए
1: दोनों बात ना कह दी, जैसे हम कॉल काटे नहीं हुए तो लगा लिया तो लग जाए कहीं।
0: यही होत रहे तो उन्हें सोनी मैम का कर तो लिखी, उन्हें कर तो आप ही कर देते थे। यही और लड़े लगी तब आप सब सुनाई ठीक बा।
1: हाँ हाँ, और ये सब तो ठीक है
0: बा। मनोरमा जी के
1: वो के ठीक बा,
0: दोनों नहीं आए बनी लोन।
1: हाँ हाँ, दोनों जानी आए बनी।
0: तो ये जो आज फरमाइशी बा,
1: बता दे
0: कि गा के भी सुनाई।
1: गा के सुनाई बताई मत।
0: अच्छा, तो जमाना के अनुसार गीत बा, आजकल के जो जमाना चला तो वही तो बा, बहुत बढ़िया सॉन्ग बा, एकरा के कोशिश करम ढूंढ के बजाए के बढ़िया से। अमित उपाध्याय के है ठीक बा। गाना ऐसे बा, माई बाप घर के बार हो गई, माई बाप घर के बार हो गई, भाई से बढ़ के अपन तार हो गई, कैसन कलयुग के पुतारे जन्म कपूर ससुराल हो गई। ये बजा दम
1: गाना
0: की सुना हूँ के बाद। यही सार सुन ली, जैसन आज के जमाना में ऐसा जो कर मार्गदर्शन मिली, जैसा ना करे के ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डिंग काटे मत
1: ना काटे,
0: हम मैंने ज्यादा से ज्यादा जो सही लगे वो काटे, ताकि जमाना के अनुसार मार्गदर्शन दिया जाता है। गाना बहुत सुंदर बा, थोड़ी सी सार के लफ्ज बा, सार के लफ्ज बा तो सार मैंने संसार भी होला। चलिए ठीक बा, गाना सुना दू।
1: ठीक बाहो बात कह ले तो बैंकुन ससुराल हो गई।
0: हाँ, बैंकुन ससुराल हो गई। हाँ, बहुत बढ़िया गाना बा, काटे मत।
1: जी जी बिल्कुल,
0: निमन से सुना है। ऐसे पूरा हम गाना सुनले ना रही है, राते सुन नहीं, ऐसे तो गाना तो पुरान है लेकिन रात हम सुन ले बनी, उतना ढंग से याद नहीं थे भइल, पूरा काम में आदमी बिजी रहेला तो ढंग से गा ना पावेला, बस को टेंशन रहेला। हाँ, तो ऐसे तनी निमन से ढूंढ के बेशक अगला हफ्ता चलाएं, लेकिन गाना ये चलाए।
1: गाना प्ले करता नहीं, सुनत रही रेडियो 90.4।
0: नाम ना पूछे हम
1: धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
0: हाँ हाँ, चलिए ठीक है, सुना दे।
1: ओके, भाई से बढ़ के अपन

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
6: नमस्ते दीदी।
5: नमस्ते,
6: क्या हाल है?
5: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: मेरा भी बिल्कुल बढ़िया है।
5: तो क्या हो रहा है अभी?
6: क्या कॉल लगा रहे हैं?
5: अच्छा, तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनिएगा।
6: गाना
5: तो गाने की बोल बता दीजिए।
6: गाने की बोल सॉन्ग बजा दीजिए। गुनाह सॉन्ग बजा दीजिए।
5: गुनाह
6: जी? नहीं, पवन सिंह का नहीं है, नीलकमल सिंह का है।
5: नीलकमल का है? हाँ।
6: मनोरमा दीदी कहाँ पे है?
5: जी वो भी इधर ही अपने काम में लगी हुई है।
6: और सब बताइए, गोपालगंज का मौसम कहा?
5: गोपालगंज में तो अभी मौसम सुहाना बना हुआ है, हवा खूब अच्छा चल रहा है।
6: इधर भी हवा तेज चल रहा है, धूप भी नहीं निकला है। इधर खाना में खा कर आए हैं कि नहीं?
5: आए हैं।
6: और सब बताइए।
5: और सब ठीक है। तो करिश्मा जी कहाँ है?
6: करिश्मा जी अभी सो रही है।
5: छुआ है
6: थोड़ा, तबियत खराब है ना, बुखार खा हो जाता है।
5: हाँ, मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम असर दिख रहा है थोड़ा बच के।
6: सोई है करिश्मा जी, तबियत उसका थोड़ा सही नहीं हो रहा है ना।
5: तो गाना किसी को सुनाना भी है?
6: गाना डेडिकेट करना चाहते हैं सबसे पहले आपको, मनोरमा दीदी को, सोनी दीदी को, दिव्या दीदी को और पूरा रेडियो रिमझिम को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
5: जी जी, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
6: ठीक है, नमस्ते।
5: नमस्ते।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, क्या हाल चाल है करिश्मा जी?
1: ठीक हुआ आपका कहें?
0: हमियों के ठीक बने सन लगातार, और तो तबीयत खराब बा,
1: हाँ
0: तो मौसम में थोड़ा बच के रही, कहे कि मौसम चेंज होता है तो तबीयत बहुत खराब हुई।
1: मौसम में तो बस के रहता है वाणी चंद। खाना वाना हो गया?
0: हाँ खाना हो गई बा।
1: मनोरमा दीदी क्या है वाणी?
0: मनोरमा दीदी यही दीवानी हूँ कि अपना काम ले वाली।
1: तो
0: हाँ हाँ चलिए, बता दी रोवा कौन सा गाना सुने?
1: गाना कौन सा के सुना दी?
0: गाना के बोल बता दे,
1: कौनो भी बजा दी।
0: कौनो भी
1: हाँ
0: आज रोवा ना बताए। अच्छा,
1: ना आज रघुआ अपना पसंद बजा दी।
0: और गाना के उनके सुनाए भी।
1: हाँ सबसे पहले रघुआ के, मनोरमा दीदी के, सोनिया दीदी के, जितना सुनते हैं लोग हैं लड़के, हम सुने गणेश जी सुनी है, दिव्या दीदी बनी सुने
0: ठीक बात, अब अपन ख्याल रखी
1: जरूर रखी। अब हम क्या रघु तबियत खराब रहा
0: ना,
1: सर
0: हम ठीक बानी अब।
1: चला एक बार रघुआ तो ठीक से रहा हूँ। हाँ नहीं ये कौन सा चला हम खाली जूर जुए के बाटे।
0: ना फिर भी नहीं चला के वही से तबियत खराब थोड़ी रखेंगे। चलिए ठीक बा, आराम करी तब हम गाना प्ले करते नहीं,
1: ठीक है
0: सुनते हैं रेडियो 90.4 एफएम।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: नमस्कार मैडम
7: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
6: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं चंडीगढ़।
7: हाँ जी, क्या हालचाल है?
6: बढ़िया।
7: चलिए, बढ़िया होना चाहिए। और बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: फिलिप जानवर का सुना दीजिए।
7: गाने की बोल बता दीजिए।
6: मेरे कौन सा गाना है वही सुनवा दीजिए। कोई भी गाना सुनवा दीजिए जानवर का।
7: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
6: हाँ, रेडियो का सुनेंगे, सारे आदमी जितना सुनते हैं।
7: ओके, तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: नमस्कार।
7: नमस्कार।

0: हेलो जी,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका
0: रेडियो रेमडेम गोपालगंज पाई। हाँ सोनी बेटा, प्यार अते सत्कार परी सत श्री अकाल पाई। बेटा जी, मैं पिंड मौड़ खुर्द जिला बठिंडा पंजाब तो जगजीत मटू बोल रहा पाई।
1: कैसे हैं?
0: ठीक ठाक पाई, तुसी दसो पाई, थोड़ी मम्मी पापा थोड़ी सेहत वीर भैन भरा थोड़े ठीक ठाक है पाई?
1: जी जी बिलकुल ठीक है सब कुछ।
0: चंगा ते पाई बेटा, मौसम थोड़े किवें आ गोपालगंज?
1: इधर का मौसम ना हुआ
0: वार चाई है।
1: अच्छा नहीं, बारिश तो नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही मौसम बना हुआ है, पता है।
0: अच्छा भाई, चलो ठीक है भाई। बेटा आज एक मुझे पंजाबी सॉन्ग सुना दो। सिंगर का नाम है कुलदीप मानक। एक गीत हैगा वीर बेटा, कबीर दई वीर बाड़ा ही चित कर, एक ही सुना दो भाई।
1: और गाना किसी को सुनाना।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone ring, de bajti hai, to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीन 90.4 FM में।
5: नमस्कार मैम, क्या समाचार है मैम?
6: जी मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: भारती मैम बोल रही है। आज मनोरमा मैम का रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है
6: जी, उनका भी चलेगा लेकिन अभी कुछ देर बाद।
5: और सब सुनाइए, खाना वाना हो गया?
6: जी हो गया, आप सबका हो गया है?
5: मेरा भी हो गया मैम।
6: वैसे आपका नाम?
5: मैं सुरेश कुशवाहा बोल रहा हूँ।
6: अच्छा,
5: श्यामपुर से।
6: गाना सुनना है आपको?
5: हाँ जी, गाना सुनना है। दुनिया बनाने वाले का तेरे नमाई साहे को दुनिया बनाई।
6: अच्छा, और गाना किसी को?
5: सभी रेडियो श्रोता को
6: गाना आपका प्ले करते रहिए रेडियो 90.4 FM।
5: थैंक्स।

0: हेलो
1: जी,
0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, फोन तो लगाते लगाते हमारा ऑन हो गया है।
1: अच्छा,
0: 300 कॉल लगाए हैं।
1: हाँ,
0: क्या कोई दुश्मनी है क्या?
1: नहीं नहीं, आपसे मेरी क्यों दुश्मनी होगी? कॉल अब आ ही जाते हैं, जिनके तो उठाना ही पड़ता है।
0: बताइए, दो एक दो बार क्या ही कर रहे हैं, उसका लग जा रहा है।
1: और सब ठीक है? आप ठीक है ना?
0: ठीक ही है।
1: वैसे तो मैं धनेश जी को जानती हूँ वो सब, लेकिन आप क्या करते हैं?
0: हम भी इन्हीं के साथ में काम करते हैं।
1: अच्छा जी।
0: हम तो आपका पास ही के हैं।
1: आपका भी घर यही पे है?
0: हाँ, रुपन छप में।
1: बढ़िया ही है।
0: तो एक गाना सुना दीजिए।
1: बता दीजिए।
0: तो बर्बाद करके जिए लू आराम से।
1: और गाना किसी को सुनाना है?
0: हाँ, सुनाना है एको।
1: बता दीजिए।
0: नाम नहीं बता सकते हैं।
1: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं। समझना है वो, समझ जाएगा।
0: हाँ, वो तो सुनते ही है। उन्हीं को सुनाना है।
1: चलिए ठीक है, फिर गाना आपका प्ले करेंगे।
0: हाँ हाँ,
1: सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: फिल्मी गाने से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें।

0: to enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones. Subscribe to Filmi Gaane channel.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।